अब सेकंड स्टेप में क्या था, जो नाइट्राइट आयन बन गया ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, ये क्विकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट आयन में हो जाता है और वहां पर एनर्जी रिलीज होते हैं। दैट मीन टू स्टेट प्रोसेस हो गया, अमोनियम से नाइट्राइट पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में नाइट्राइट से नाइट्रेट। तो जो पहला स्टेप होता है अमोनियम से नाइट्राइट में जो कन्वर्ट होता है वो किससे कैरियड होता है, नाइट्रोसोमनास, माइक्रोकोकस, नाइट्रोस्पाइला, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोगेला बैक्टीरिया जो होता है ये सब कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेप किसके लिए होगा, नाइट्रोसोमनास एंड माइक्रोकोकस जो अमोनियम से नाइट्राइट कन्वर्ट करेगा। सेकेंड स्टेप प्रोसेस में जो नाइट्रोस्पाइरा नाइट्रोगेला बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसको ओवरऑल जो जो ओवरऑल नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करता है उसको नाइट्रोबैक्टीरियम कहते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं आपको इसका बैरियस ट्रांसफॉर्मेशन में, हमने कहा है इसका हमारा जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आएंगे इसके बाद मिनरलाइजेशन, मैंने बताया फिक्सेशन भी होते हैं नाइट्रोजन का, जो मैंने फेट आपको ऑलरेडी बता दिया, जो अमोनिकल नाइट्रोजन फॉर्मेशन होते हैं उसका सॉइल क्लोराइड में फिक्स हो जाता है, वहाँ एक फिक्सेशन भी ऑल्सो इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ फेट और वी कैन सी पाथवे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन इन सॉइल। नाउ वेलकम टू द दिस नाइट्रोजन के लॉसेज, नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं सॉइल में, वो लॉसेज के प्रोसेस क्या आता है, पहला तो आपको लीचिंग लॉसेज के होते हैं एंड देन इसके लॉसेज के अदर चांसेस हो सकते हैं, इमोबिलाइजेशन भी हो जाते हैं जो क्योंकि वो मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट प्लांट कैन नॉट टेक अप द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, ये भी एक काइंड ऑफ हमारे लॉसेज हैं। फर्टिलाइजेशन लॉस हो जाते हैं और लीचिंग लॉसेज बेसिकली उसी के उसी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर बोल लो या जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर में जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है या जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस हो तो उसके लीचिंग लॉसेज ज़्यादा होते हैं। ये मतलब जो भी वाटर होता है वाटर में सोल्यूबल नेचर के होने के कारण वाटर से ये क्या है सॉइल वाटर के साथ घुलने के कारण वाटर से ये वाटर के साथ साथ मूवमेंट ऑफ वाटर के साथ ये लॉस हो जाते हैं। और इसका जो लीचिंग लॉस ऑफ नाइट्रोजन का मेनली आपका नेचर किस पे डिपेंड करता है, ज़्यादा इसकी डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पर हो जाती है, रेनफॉल की इंटेंसिटीज क्या है, जो सोर्सेज ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन हम अप्लाई करें वो क्या सोर्सेज है, वेदर अगर वो नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर हो या नहीं तो अदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर होता है जिसका बहुत क्विकली इसका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है तो उसके चांसेज होते हैं लीचिंग लॉसेज के। एंड देन अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए, जो लीचिंग लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करता है जो होता है सी एन रेशियो, टोटल कार्बन इज टू टोटल नाइट्रोजन का रेशियो, जो क्लास में आपको बताई गई थी सी एन रेशियो का, सी एन रेशियो का मैंने आपको एक रेशियो दिया था किसके किसके बीच में क्या होता है कौन सा प्रोसेस ऑपरेट होता है। अगर सी एन रेशियो को आप क्रिटिकल एक लिमिट बोले ना क्रिटिकल रेंज की अगर बात करते हैं तो क्या होता है 20-30:1, क्या होता है 20-30:1 सी एन रेशियो। अगर यही सी एन रेशियो नैरो हो, नैरो किसको बोलते हैं 20:1 से अगर कम होता है तो कौन सी प्रोसेस ऑपरेट होती है, मिनरलाइजेशन होती है। दैट मीन्स क्या होती है हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रोजन से इनऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। अब यही जब सी एन रेशियो आपको 20-30:1 के बीच में अगर रहती है तो क्या था नाइदर हमारा नेट मिनरलाइजेशन होता है नो नेट इमोबिलाइजेशन होता है, मींस ना मिनरलाइजेशन होगा ना इमोबिलाइजेशन होता है अगर इस रेशियो के बीच में इसकी रेंज आती है तो। अब यही जब सी एन रेशियो हमारी वाइडर हो जाती है तो वाइडर किसको बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही रेंज बताया क्या है 20-30:1, क्लियर। तो वाइडर हो जाने का मतलब दैट मीन्स वो 30:1 से ग्रेटर हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वाइडर सी एन रेशियो। इस केस में यहाँ पर क्या होता है इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है, इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या किसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। मिनरलाइजेशन क्या होता था ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इमोबिलाइजेशन क्या होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हो जाता है, दैट्स इट। ये होता हमारा सी एन रेशियो, सी एन रेशियो क्या क्या हमारे सी एन रेशियो क्या इंडिकेट करता है, सी एन रेशियो वैल्यू जो आती है वो क्या इंडिकेट करता है। नाउ आपको मैंने जैसे बताया था कि जो नाइट्रोजन हमारा सॉइल कैसे गेन करता है तो मैंने इसके लिए वेरियस प्रोसेस बताया था बहुत सारे, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, उसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में सिम्बायोटिक होते नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, देन नाइट्रोजन का जो एडिशन प्रिसिपिटेशन होता है या नाइट्रोजन का एडिशन आपको मैन्योर से हो, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करो, कंपोस्ट डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो, ग्रीन मैन्योर, दीज आर द वे हाउ सॉइल गेन द नाइट्रोजन फ्रॉम द लाइक एटमोस्फेयर और फ्रॉम द सराउंडिंग्स वन, ओके। तो ये आपको BNF स्पेशली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को अच्छे से आप पढ़ लेना जैसे क्लास में बताया गया था। थ्री नाउ देन अभी थोड़ी हम डिस्कस कर लेंगे

0: इमोबिलाइजेशन के लिए, जैसा मैंने बताया था इमोबिलाइजेशन जस्ट अपोजिट ऑफ मिनरलाइजेशन है। इस प्रोसेस में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए भी ये भी इमोबिलाइजेशन जो है किस टाइप की प्रोसेस है, ये भी सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उससे ऑपरेटेड प्रोसेस है, ये भी सॉइल माइक्रोजन को ही इंड्यूस करता है इस प्रोसेस को। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, जो मिनरल नाइट्रोजन होते हैं उस किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में बाय द सॉइल माइक्रोनिज्म के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं इमोबिलाइजेशन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट डिफरेंट जेनरा और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सॉइल माइक्रोनिज्म आर देयर, तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले करता है इमोबिलाइजेशन में, तो होता है पहला एक्टिनोमाइसिट्स, देन उसके बाद आता है आपको फंजाई, देन उसके बाद आता है बैक्टीरिया। क्या आता है एक्टिनोमाइसिट, क्या इसके लिए आप अगर कोड बोले तो क्या बोलेंगे, इमोबिलाइजेशन के कोड हमेशा याद रखना AFB मीन्स ए और बी के बीच में क्या आता है एफ आता है, ए फॉर एक्टिनोमाइसिट्स, बी फॉर बैक्टीरिया, और इन दोनों के बीच में क्या आता है एफ आता है, एफ क्या होता है फंजाई होता है। तो इमोबिलाइजेशन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिनोमाइसिट, फंजाई, बैक्टीरिया, ए बी, ए इसका कोड याद रखना है ए बी, नहीं याद रखे तो याद रखना है ए बी के बीच में क्या आता है एफ आता है, दैट्स इट। और एक मैंने भी एक प्रोसेस और बताया था जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जो जो सबसे ज्यादा मतलब बहुत सारे डिटेल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन में, बट सबसे ज्यादा जो लाइक नटसेल में मुझे अगर बताना पड़े तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे ज्यादा इम्पैसिस देनी चाहिए, तो उसको ही मैं ज्यादा मेजरली यहाँ पर दे रही हूँ। देन डीनाइट्रिफिकेशन आपको बताया था, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस आपको पता है क्या है, इसमें माइक्रोबियल रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है डीनाइट्रिफिकेशन, माइक्रोबियल रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है, जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बना था ना नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से क्या हमारा बना था नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बना था, उसी का यहाँ पर माइक्रोबियल रिडक्शन होता है, माइक्रोबियल रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट विद द रिलीज एंड लॉस ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। इन सर्कमस्टेंसेस में ये भी देखा गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है। इस प्रोसेस में नाइट्रेट एंड नाइट्राइट का माइक्रोबियल रिडक्शन होता है, किसमें होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, नहीं तो समटाइम्स ये भी देखा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, और ये प्रोसेस का समटाइम ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, इसलिए इसको इस प्रोसेस को समटाइम्स आपको एक सिनोनिम्स बोलो तो क्या इसको बोला जाता है नाइट्रेट रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस में यहाँ पर क्या होता है जो नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट किसको बोलते हैं NO3- को बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, तो क्या होता है वहां पर जहां ऑक्सीजन कमी आती है तो जो भी हमारा सॉइल माइक्रोनिज्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रेट को ही एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में लेना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट वहां पर माइक्रोबियल रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन का, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में आपको कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, और जनरली जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है ये आपको एनएलवी सॉइल कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, एनएलवी सॉइल कंडीशन बोले तो समर सॉइल कंडीशन। इसमें जो एनरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं अपने ऑक्सीजन कहाँ से डेराइव करते हैं, तो जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट मैंने आपको बताया नाइट्रेट एंड नाइट्राइट ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है नाइट्रोजन का, तो वहां से ऑक्सीजन डेराइव करने लगते हैं और नाइट्रोजन को वहां पर ही उसका नाइट्रेट एंड नाइट्राइट का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो कन्वर्ट रिड्यूस होते होते वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बोलो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसका इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैं बता रही हूँ इसका, जितने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करा, जो भी हमारे वेरियस पाथवेज हैं नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस सब की इक्वेशन आप याद रखना, और कौन से माइक्रोनिज्म किस कौन से प्रोसेस के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ज्यादा उसको डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं उस प्रोसेस के लिए। डीनाइट्रिफिकेशन में बात करो तो देखोगे जो नाइट्रेट ग्रुप होता है उसका रिडक्शन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा नाइट्रेट का नाइट्राइट में, देन नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड देन वो किसमें कन्वर्ट होता है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, देन फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है मोलिकुलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। और जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रोब्स है हमारा फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कर जाता है। कौन सा माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, वो कौन से जेनरा से बिलोंग करते हैं, उसका जेनरा है स्यूडोमोनास होता है, बैसिलस होता है एंड पैराकोकस होता है, ये सब जो जनरा होते हैं जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा और भी स्पीसीज होते हैं जो मैंने क्लास में भी बताया था, क्रोमोबैक्टीरियम है, हाइपोमाइक्रोबियम है, सेरेटिया, दीज आर द ऑल्सो लाइक अनदर ग्रुप ऑफ जनरा ऑफ बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ आई विल कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस। आपका फॉस्फोरस का मैंने पहले ही बताया दिया था, जैसे मैंने नाइट्रोजन के बताया था नाइट्रोजन का सोर्स क्या था, मेजरली इसका सोर्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, बट फॉस्फोरस का सोर्स दोनों होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल्स हैं लाइक वेरीसाइट है, एस्ट्रेंजाइट है, फ्लोरहेपेटाइट है, हाइड्रोक्सीहेपेटाइट है, कार्बोनेटोहेपेटाइट है, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, क्लियर, जिसके दोनों सोर्स होते हैं। ये सब इसको अच्छे से आप देख लोगे। एंड देन लाइक वाइज जैसे हमने सीएन रेसिओ पढ़ा, उसे सीपी रेसिओ होते हैं जो डिसाइड कर देगा फॉस्फोरस का क्या कौन सा इसका प्रोसेस होगा, फॉस्फोरस का कौन सा प्रोसेस ऑपरेट होगा। तो सीपी रेसिओ का रेंज क्या था, 200 से 300:1 के बीच में। अगर सीपी रेसिओ मतलब लो रहा, बस नैरो रहा, 200:1 रहा, इसे कम रहा, तो क्या होता है मिनरलाइजेशन होगा। 200:1 से 300:1 के बीच में अगर आता तो ना मिनरलाइजेशन होता है ना इमोबिलाइजेशन होगा। 300:1 हुआ या इससे ज्यादा तो इमोबिलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस हो जाता है। क्लियर। अब इसके पूल्स की बात करें, इसके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पूल्स होते हैं। जो एक सॉल्यूशन जो सॉइल सॉल्यूशन में रहते हैं उसको इमीडिएटली जो अवेलेबल होता है उसको सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस पूल बोलते हैं। देन सरफेस एडजर्ट फॉस्फोरस पूल होता है जो रेडली अवेलेबल होता है प्लांट को और हाईली एक्सेसिबल भी होता है, अगर बोले तो एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो। देन स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड एंड एब्जॉर्ब फॉस्फोरस होता है जिसकी एबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी एक्टिविटी भी इसकी कम होती है। देन हमारा था वेरी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड और इनएक्सेसिबल और मिनरल और प्रेसिपिटेड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस जो होता है जिसको नॉन लेबाइल पूल में आता है, ये इसकी एबिलिटी प्लांट को बहुत कम होती है। तो मतलब इसकी चार पूल्स हो गए। अब इस चार पूल को डिवाइड करोगे तो पहला जो सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस पूल हो गया, देन सरफेस एडजॉर्ब एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होता है, ये वो लबाइल पूल के अंदर आता है। तीसरा जो होता है जो मिनरल्स या प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस पूल होता है नॉन लबाइल पूल में आता है। ये फॉस्फोरस के चार पूल्स हो गए। इसके अलावा जो मैंने आपको फॉस्फोरस का आपका स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन बनाया था ट्रांसफॉर्मेशन सॉइल में कैसे क्या होता है, बायोलॉजिकल फॉर्म से होते हैं, केमिकल्स फॉर्म आता है, तो बायोलॉजिकल फॉर्म इसके कैसे सॉइल फॉस्फोरस ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, दे केमिकल में के लिए रिस्पॉन्सिबल जॉब्सन होता है, जॉब्सन ऑफ आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड देन क्रिमिनस हो सकता है, देन प्रेसिपिटेशन इसका होता है, ये आपको अच्छे से देखने हैं, इसको पढ़ लेने हैं। ये जो मैंने आपको फॉस्फोरस में पढ़ाया था फॉस्फोरस का, एंड देन फॉस्फोरस का आपको एक चीज़ और बताया, फॉस्फोरस का फिक्सेशन सॉइल में कैसे होता है, इस पर आप ज़्यादा इम्फेसिस देना है। फॉस्फोरस का फिक्सेशन कौन से सॉइल में, किस टाइप के सॉइल में ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटेरिटिक सॉइल है, मिक्स रेड ब्लैक सॉइल में, इसके वहाँ पर जहाँ पर है होता है सॉइल इससे बिट हायर फॉस्फोरस फिक्सेशन हुआ है देन कंपेरिजन टू आपको एलुवियल सॉइल, रे ग्रे ब्राउन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, अदर सॉइल, ये सब सॉइल के कंपेरिजन वहाँ पर फॉस्फेट का फिक्सेशन ब्लैक रेड लैटेरिटिक सॉइल में ज़्यादा होता है। इसको आप अच्छे से देखना, ये फॉस्फोरस का ट्रांसफॉर्मेशन में से आते हैं। फॉस्फोरस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको अच्छे से देख लेना है। नाउ वेलकम टू द पोटेशियम का, जितने में बता रही जो भी मैं न्यूट्रिएंट का नाम ले रही हूँ सबका आपको पहले प्लांट में इसके रोल, इसे प्लांट में प्लांट न्यूट्रिशन में इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का पर्टिकुलर एलिमेंट का रोल क्या है वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। देन पोटासियम के अगर उसका रोल क्या है, देन डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या, तो अच्छे से आपको देख लेने हैं। और पोटासियम की बात करूँ तो पोटासियम का कंटेनिंग मिनरल्स भी होते हैं, आपको पता है पोटासियम कंटेनिंग मिनरल्स क्या आता है, बहुत सारे पोटासियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं, जैसे माइकाइज कहीं ले लो, उसमें मस्कोबाइट आता है, ग्लूकोनाइट होता है, इलाइट होता है, बायोटाइट होता है, फ्लोगोपाइट होता है, फेल्सपार होता है, सैनिडाइन होता है, ऑर्थोक्लेज, दिज ऑल आर तो पोटासियम कंटेनिंग मिनरल्स ये सब हो गए। पोटासियम का भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था कैसे कैसे पोटासियम का कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या क्या पाथवेज हैं। तो पोटासिक अगर मान लो तो पोटासियम है, इसका क्या क्या कितने सारे पूल्स हैं, पूल्स की अगर हमने पढ़ा तो इसका भी चार पूल्स हमने मेजरली पढ़ा था, जो सॉइल सॉल्यूशन पोटासियम होता है, एक्सचेंजेबल पोटासियम होता है, फिक्स्ड और नॉन एक्सचेंजेबल पोटासियम होता है, एंड जो पोटासियम लैटिस जो प्राइमरी मिनरल का लैटिस उसमें जो फिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं लैटिस पोटासियम। वो चार पूल्स हमने पढ़ा था, उन सारे पूल्स क्या क्या कहते हैं, क्या सॉइल सॉल्यूशन पोटासियम, क्या एक्सचेंजेबल, वो सबको अच्छे से आप देख लेना। देन हमने पढ़ाया था आपको इसका कैसे इसका जो डिफरेंट फॉर्म्स पूल्स है ना, डिफरेंट फॉर्म्स है पोटासियम है, इसके बीच में कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और पोटासियम एबिलिटी को वो मेंटेन करता है। तो जैसे आप लोग मान लो मिनरल पोटासियम अगर बात कर लेते हो, तो मिनरल पोटासियम एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ फेल्सपार होता है, माइकाज होता है, इसका वेदरिंग होगा, वेदरिंग होगा किसमें, नॉन एक्सचेंजेबल पोटासियम में जिसको जो सॉइल क्लोराइड्स में स्ट्रांगली एडजॉर्ब होता है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। और यही जो नॉन एक्सचेंजेबल पोटासियम होता है किससे डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, या मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में किसके साथ रहता है, एक्सचेंजेबल पोटासियम के साथ। और एक्सचेंजेबल पोटासियम किसके साथ रहता है, रिवर्सिबल इक्वेशन या डायनेमिक इक्विलिब्रियम सॉइल सॉल्यूशन पोटासियम के साथ। दैट मीन जो सॉइल सॉल्यूशन पोटासियम है, एक्सचेंजेबल पोटासियम है और नॉन एक्सचेंजेबल पोटासियम, ये तीनों पूल जो होता है क्या एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, दैट मीन रिवर्सिबल इक्वेशन में, मतलब एक दूसरे में जहां जिसमें कमी आती है उसको रिप्लेनिश करता है। ये तीन पूल्स सॉइल सॉल्यूशन एक्सचेंजेबल और नॉन एक्सचेंजेबल। और जो सॉइल सॉल्यूशन में पूल में जो फॉर्म पोटासियम जो सॉइल सॉल्यूशन पोटासियम तो इसी को प्लांट ऑब्जर्व करता है, प्लांट टू टू उसको वहां से ऑब्जर्व करता है। ये चार पूल्स की हो गए, पोटासियम की हो गए। पोटासियम आपको मैंने बताया था क्यू बाई आई रिलेशनशिप, क्वांटिटी बाई इंटेंसिटी रिलेशनशिप जो मैंने पढ़ाया था उसको बहुत अच्छे से आपको देख लेने, क्वांटिटी बाई इंटेंसिटी रिलेशनशिप क्या है पोटासियम की, देन पोटासियम के लॉसेज मैंने बताया था, पोटासियम लॉस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोटासियम की जरूरत, जैसी बात है पोटासियम भी लीचिंग लॉस होते हैं, सोयलेजोर में इसके लॉसेज होते हैं, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो लॉसेज होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक है टर्म्स है लग्जरी कंजप्शन। तो लग्जरी कंजप्शन में क्या होता है ना, इसमें जो कुछ क्रॉप्स होते हैं ना वो टेंड्स टू ऑब्जर्व या एक्युमुलेट पोटासियम फार इन एक्सेस ऑफ देयर नीड्स। समझे, इसमें क्या होता है जो पोटासियम जिस कोई प्लांट्स बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसको जितनी पोटासियम चाहिए नहीं अपने नीड से ज्यादा, वो क्या होता है प्लांट पोटासियम को ऑब्जर्व या एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में फ्रॉम सॉइल से। इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। लग्जरी कंजप्शन किससे पहले तो रिलेटेड आपको टर्म्स याद है पोटासियम से रिलेटेड होता है। और इसमें क्या होता है जो क्रॉप्स होते हैं कुछ क्रॉप्स अपने रिक्वायरमेंट अपने नीड से ज्यादा पोटासियम को ऑब्जर्व या एक्यूमुलेट करते हैं अपने प्लांट्स पार्ट में, उसको ही लग्जरी कंजप्शन कहते हैं। ओके, ये आपके पोटासियम के ट्रांसफॉर्मेशन के हो गए हैं। अभी हम थोड़े थोड़े आपको ब्रश अप करते हैं, लाइक कैल्शियम जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आते हैं, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है। कैल्शियम का भी आप मैग्नीशियम का दोनों का आप क्या क्या फॉर्म्स हैं, कौन सा फॉर्म्स प्लांट उसको अपटेक करता है वो आपको देख लेना है। जैसे लाइक आपको पता है प्लांट्स कैल्शियम को किस फॉर्म में लेता है, कैल्शियम आयन के फॉर्म लेता है, Ca2+ आयन के फॉर्म में लेता है। इसका रोल क्या है, इसके डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या प्लांट में, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। देन सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम आप देख लेना अच्छे से, क्या इसके सोर्सेज है, क्या कैसे इसके प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके कैल्शियम का फॉर्म्स क्या है सॉइल में, लाइक इसका मिनरल पार्टिकल्स फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, साल्ट्स के फॉर्म में है, एक्सचेंजेबल कैल्शियम का फॉर्म होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एंड देन जो जो प्लांट फैक्टर के बेसिस पे अगर बोले तो दो टाइप के प्लांट स्पीसीज होते हैं कैल्शियम के रिस्पॉन्ड में, अगर बात करें कैल्शियम के पर्सपेक्टिव में बात करें तो दो होते हैं, कैल्सिकॉल होते हैं, कैल्सिफ्यूजर्स होते हैं। कैल्सिकॉल किसको बोलते हैं, कैल्शियम लविंग प्लांट्स को बोलते हैं, एंड कैल्सिफ्यूजर्स को बोलते हैं कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट को बोलते हैं। मतलब कैल्सिकॉल्स को बोले जो प्लांट कैल्क्रियस सॉइल में ग्रो अच्छे से करता है, दैट मीन कैल्शियम लविंग प्लांट है, उसको कैल्सिकॉल्स बोलते हैं। एंड कैल्सिफ्यूज को बोलते हैं जो कैल्शियम सेंसिटिव हो, जो प्लांट जहाँ लाइक जो प्लांट ग्रो करता है एसिड कंटेनिंग, जहाँ वेरी स्मॉल या लो क्वांटिटी में कैल्शियम प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कैल्सिफ्यूज बोलते हैं। देन नाउ वेलकम टू द मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम भी ऐसा ही कैल्शियम जैसा ही है। तो मैग्नीशियम ही प्लांट किस रूप में फॉर्म में रहता है, तो मैग्नीशियम आयन के फॉर्म रहता है, मैग्नीशियम 2+ आयन के फॉर्म में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सोर्सेज आप पढ़ लेना, और इसका फॉर्म्स ऑफ मैग्नीशियम की अगर बात करें सॉइल में क्या है, तो जैसे पोटासियम होता है वैसे ही मैग्नीशियम भी सॉइल में प्रेजेंट रहता है, लाइक वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, एक्सचेंजेबल फॉर्म में, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे पोटासियम सॉइल में प्रेजेंट रहता है वैसे ही मैग्नीशियम भी सॉइल में प्रेजेंट रहता है। देन इसके भी आप प्लांट्स में प्लांट न्यूट्रिशन इसका रोल क्या है, डिफिशिएंसी सिम्टम सारे अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी मैग्नीशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं लाइक इप्सम साल्ट है, किसराइट है, मैग्नीशियम नाइट्राइट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका पढ़ लेना कौन कौन से मैग्नीशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर है और उसमें मैग्नीशियम कंटेंट का कितना परसेंटेज होता है प्रेजेंट रहता है वो उसको आपको देख लेने हैं। ये आपके होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम। और इसमें थोड़े जो ब्रोड में आते हैं आपको वो होता है आपको सल्फर है आपका, तो सल्फर का भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको देखेंगे जैसे जैसा मिलेगा नाइट्रोजन में, जैसे नाइट्रोजन भी क्या मेजरली सोर्स क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, वैसे ही सल्फर का भी सोर्स मेजरली सोर्स आप देखोगे ऑर्गेनिक मैटर है, बट ऑल्दो इसका इनऑर्गेनिक सोर्स भी है, बहुत सारे से मिनरल्स जो सल्फर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाइक आपको पता है सोर्स ऑफ सल्फर जब ऑर्गेनिक के अलावा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर के अलावा जिप्सम है, एनहाइड्राइट है, इप्सोमाइट है, ये सब इसके सोर्सेज हो जाते हैं, और भी बहुत सारे आयरन पाइराइट है, चालकोपाइराइट है, गैलेना है। और सल्फर की अगर बात करें तो टोटल सल्फर जो हमारा है इसका डोमिनेंट फ्रैक्शन क्या है, डोमिनेंट फ्रैक्शन वही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन ही होता है। देन इसकी आपकी अगर बात करते हैं तो इसका ऑर्गेनिक फॉर्म जो सल्फर है उसके कितने, दो फॉर्म मैंने बताया था, एक नॉन कार्बन बॉन्डेड सल्फर होता है, कार्बन बॉन्डेड सल्फर होता है, उसको आप देख लेना अच्छे से क्या, मैंने अच्छे से लिखवाया था, इसका नोट्स दिया था आपको क्लास में प्रॉपरली पढ़ाया था। देन आपको इनऑर्गेनिक सल्फर की बात करें तो इनऑर्गेनिक सल्फर में इसके इनऑर्गेनिक सल्फर के क्या कैसा है, जो इनऑर्गेनिक सल्फर है उसका कैसा ट्रांसफॉर्म होता है। जो इनऑर्गेनिक सल्फर आपको है तो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल सल्फेट सल्फर है, एडजॉर्ब सल्फेट सल्फर है, देन एलिमेंटल एंड सल्फाइड सल्फर होता है, इसके इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर के हैं फॉर्म्स हैं। देन जो आपको इसके क्या होते हैं, जो एलिमेंटल सल्फर होता है एंड सल्फाइड्स आपको अब ये देखने को मिलेगा, जो एलिमेंटल सल्फर या सल्फाइड्स आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा ही प्रेजेंट रहते हैं, जनरली ये वाटर लॉर्ड सॉइल में ही प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये वाटर लॉर्ड सॉइल में फाइंड होंगे जिसमें बैक्टीरिया का इसका रिडक्शन बैक्टीरियल रिडक्शन होता है, और रिड्यूस होते होते फाइनली ये किस में कन्वर्ट होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही इसका रिडक्शन स्टार्ट होता है। देन ऑर्गेनिक सल्फर का मैंने पाथवेज बताया था, बायोलॉजिकल इसका सल्फर साइकिल क्या है, इसके कैसे क्या क्या इसके लिए पाथवेज है जो मैंने लिखवाया था पाथ 1-2, इसको अच्छे से आप देखना कौन कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर मैं अगर बात करूँ तो जो मान लो ये जो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का क्या का नाम था, डी सल्फो बेबरी होता है, डी सल्फो मैकुलम होता है, देन कौन से बैक्टीरिया जो सल्फर से सल्फाइड रिड्यूस करते हैं, सल्फुरोन मोनास होता है, ये सारे जो भी ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो किस कौन से प्रोसेस के लिए, कौन से प्रोसेस को ऑपरेट करता है, किसके लिए रिस्पॉन्स, उसको आप अच्छे से देख लोगे। देन आपको आते हैं थोड़ी सी, अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन बताया, ऑलमोस्ट सबका मैंने आपको एक जैसा बताया था, जैसे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेदर आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, बोरन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, सबका मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया था क्या क्या इसके लिए ज्यादा है। मेजरली में आप देखोगे इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वेदर उसका क्या वेदरिंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन होगा, चिलेशन होगा, सबके ऑलमोस्ट में एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। इसके मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस क्या है, तो ही आपको डिजोल्यूशन दिखा होगा, प्रेसिपिटेशन दिखाने को मिलेगा, एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्शन होगा, मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना, इसको अच्छे से देख लोगे। कुछ टीमें जैसे टर्म्स मैंने आपको बताया, टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करने, जैसे चिलेशन मैंने बताया था, चिलेशन क्या है, उसमें चिलेशन इज नथिंग बट, इसका अगर डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, चिलेशन इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डैट कैन बाउंड टू द मेटल, यूजुअली क्या होता है, जो आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर, ETC, बाई मोर देन वन बॉन्ड और फॉर्म अ रिंग और साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर बाई डैट बॉन्डिंग, दैट इज नोन एज चिलेशन। ये चिलेशन का डेफिनेशन आप जरूर देखना, चिलेशन क्या होता है। देन जो भी हम मैंने आपको उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बताए थे, उसका मिनरल्स फॉर्म क्या है, अगर जिंक की बात करते हैं, जिंक का मिनरल्स का फॉर्म क्या है, एस्पेलराइट होता है, एस्मिसोनाइट, जो भी मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट का उसका कौन सा मिनरल्स फॉर्म, उसके एटलीस्ट 3 से 4 आपको एग्जांपल्स बताने चाहिए, उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से में लाइक वेदरिंग ऑपरेट होगा, कहाँ जॉसन डिजॉसन होगा, कहाँ प्रेसिपिटेशन होगा, कॉम्प्लेक्शन होगा, चिलेशन, कौन जो जो प्रोसेस ऑपरेट होता है उसको अच्छे से आप देख लोगे। क्लियर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया बात। तो यहीं पर हमने जितना चीज़ पढ़ा था यहीं पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम नटसेल में बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आयरन की बात करो तो आयरन सबसे ज़्यादा क्या होता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन में, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, चिलेशन, प्रेसिपिटेशन होता है। मैंगनीज की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडजॉर्प्शन होगा। जिंक की बात कर लेते हैं, एडजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन होगा, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर ही होता है। वैसे ही कॉपर, बोरन की मान लो तो एडजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन होता है, लीचिंग होता है, मिनरलाइजेशन होता है, ऑलमोस्ट समझेगा एक जैसा आपको देखने को मिलेगा, बहुत टफ नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा। एक को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत दूसरे तीसरों को माइक्रोन्यूट्रिएंट के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से कोरिलेट कर लोगे। तो अपनी रेडियो रिविजन को ACS 1 to 1 की मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच मैम। स्टूडेंट्स, ये सोनल मैम के पोर्शन का रिवीजन था, आइए अब निशा मैम के पोर्शन का रिवीजन करते हैं। वेलकम करते हैं निशा मैम को हमारे स्टूडियो में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में।
2: नमस्कार स्टूडेंट, आज आप सुन रहे हैं रेडियो रिवीजन प्रोग्राम। आज मैं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का रेडियो रिवीजन कर रही हूँ। प्लान न्यूट्रिएंट से लेकर नैनो फर्टिलाइजर और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तक, तो अपनी पेन कॉपी तैयार कर रखिए और सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये रिवीजन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कोई भी एलिमेंट प्लांट न्यूट्रिएंट कब कहलाता है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्राइटेरिया दिए थे अर्नोन स्टॉट ने 1939 में। ये प्लांट न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। पहली कंडीशन है, उस एलिमेंट के बिना प्लांट अपना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन है, उसकी डिफिशियंसी स्पेसिफिक होती है और सिर्फ वही एलिमेंट देकर ठीक की जा सकती है, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता है। और तीसरी कंडीशन है, वो एलिमेंट सीधे तौर पर प्लांट के मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ए प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दैट एलिमेंट। सेकेंड क्राइटेरिया इज द डिफिशियंसी ऑफ द एलिमेंट इज स्पेसिफिक एंड कैन बी करेक्टेड ओनली बाय सप्लाइंग द एलिमेंट। The element is directly involved in plant metabolism or physiological functions. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस नहीं ले सकता है, और अगर जिंक की डिफिशियंसी है तो सिर्फ जिंक देने से ही वो ठीक होगी, कोई और एलिमेंट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है। ना आई विल कम टू इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब याद कीजिए, प्लांट्स को टोटल कितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आंसर है 17। ये 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, और एयर और वाटर से मिलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन्हें हम NPK भी कहते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। एक सिंपल तरीका याद रखने का है, प्राइमरी 3 है, सेकेंडरी 3 है और बाकी 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। 3 + 3 + 8 टोटल 17। अब आते हैं रोल, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे हर न्यूट्रिएंट्स के रोल और उसकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन और क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। इसकी डिफिशेंसी में पुरानी पत्ती पीली हो जाती है और अगर ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी में प्लांट डार्क ग्रीन हो जाता है और लॉजिंग हो जाता है, मतलब प्लांट गिर जाता है। फास्फोरस रूट ग्रोथ और एनर्जी ट्रांसफर के लिए जरूरी है। डिफिशेंसी में लीव्स पर्पल हो जाती है और मैच्योरिटी डिले हो जाती है। टॉक्सिसिटी में जिंक डिफिशेंसी इंड्यूस हो जाती है। पोटेशियम एंजाइम एक्टिवेशन और वाटर लॉग रेगुलेशन में हेल्प करता है। डिफिशेंसी में लीफ स्कॉर्चिंग होती है, मतलब पत्तों के किनारे जल जाते हैं। टॉक्सिसिटी में मैग्नीशियम डिफिशेंसी इंड्यूस होती है। कैल्शियम सेल वॉल बनाने में रोल प्ले करता है। इसकी डिफिशेंसी में ग्रोइंग टिप्स मर जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए जरूरी है। डिफिशेंसी में पुरानी पत्तियां में इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। सल्फर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। डिफिशेंसी में यंग लीव्स पीली हो जाती है और टॉक्सिसिटी में लीफ बर्न हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए चाहिए। डिफिशेंसी में यंग लीव्स इंटरवेनियल क्लोरोसिस दिखाते हैं और टॉक्सिसिटी में ब्रॉन्जिंग होती है। जिंक ऑक्सीजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिफिशेंसी में राइस में खैरा डिजीज होती है और टॉक्सिसिटी में क्लोरोसिस होती है। आते हैं अब बोरोन। बोरोन सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। डिफिशेंसी में होलो स्टेम और पुअर फ्रूट सेट होता है। इसकी टॉक्सिसिटी से लीफ बर्न होता है। कॉपर एंजाइम एक्टिविटी में रोल है। इसकी डिफिशेंसी से डायपेक होता है तथा टॉक्सिसिटी से के कारण मेन रूट इनहिबिशन होती है। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके डिफिशेंसी में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है और इसके टॉक्सिसिटी में ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। डिफिशेंसी में कॉलीफ्लावर में ह्यूपिटल डिजीज होती है। क्लोरीन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। डिफिशेंसी में विल्टिंग होती है और निकेल यूरिएज एंजाइम के लिए जरूरी है। इसकी डिफिशेंसी में सीड जर्मिनेशन खराब होती है और ज़्यादा कंसंट्रेशन टॉक्सिक होता है। मैग्नीज फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके डिफिशेंसी से मेन इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है और टॉक्सिसिटी में ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसके डिफिशेंसी में कॉलीफ्लावर में ह्यूपिटल डिजीज होती है। नाउ आई विल कम टू द मैन्योर्स पार्ट्स। व्हाट इज द मैन्योर? मैन्योर वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव के लिए मिट्टी में ऐड किए जाते हैं। इसके टाइप्स हैं FOM फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, भर्मी कंपोस्ट एंड पोल्ट्री मैन्योर। इनके एडवांटेज है सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्हांस होती है, माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव होता है। लेकिन लिमिटेशन भी है, इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, ये बल्की होते हैं और न्यूट्रिएंट रिलीज स्लो होती है। फर्टिलाइजर्स इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉमर्शियल मटेरियल होते हैं और जो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। इनके एडवांटेज है ये हाई न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन होती है, क्विक अवेलेबिलिटी, इजी ट्रांसपोर्टेशन और हायर क्रॉप यील्ड। लिमिटेशन है ये एक्सपेंसिव होते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं और कंटिन्यूस यूज से सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो सकती है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पर और न्यूट्रिएंट टाइप के बेसिस पे। नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पर हम स्टेट फर्टिलाइजर जिसमें ये सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जैसे एनपीके के कोई एक न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मतलब ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एनपीके में कोई एक ये सप्लाई ओनली वन न्यूट्रिएंट्स करेंगे, जैसे कि यूरिया हुआ, MOP, SSP। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% पोटेशियम एंड SSP 16% फॉस्फोरस। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि एक साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये एक साथ दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं, जैसे DAP, NPK। DAP में नाइट्रोजन 18% नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, 46% P2O5। मिक्स फर्टिलाइजर फिजिकल मिक्सर होते हैं, ये दो प्राइमरी दो स्टेट फर्टिलाइजर को मिला के इसे फिजिकली मिक्स किया जाता है। जैसे ग्रोमर 15-15-15 इसमें होते हैं NPK न्यूट्रिएंट्स टाइप के बेसिस पर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में आते हैं यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है और अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.6% तक नाइट्रोजन होता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में SSP DAP TSP ये आते हैं। फॉस्फोटासिक फर्टिलाइजर में MOP जिसमें 60% K2O होता है और SOP में सल्फेट में 50% K2O होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स याद कर लीजिए, जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन और 24% सल्फर होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम किसान खाद भी कहते हैं उसमें 26% नाइट्रोजन होते हैं। SSP 16% P2O5 एंड 12% सल्फर। DAP में 18% नाइट्रोजन एंड 46% P2O5 होते हैं। TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में 46% P2O5। म्यूरेट ऑफ पोटास 60% K2O होते हैं और SOP पोटेशियम सल्फेट में 50% K2O एंड 18% सल्फर होते हैं। याद रखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया में होता है और सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस TSP में होता है और सबसे ज़्यादा पोटेशियम MOP में होता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, कैल्शियम के लिए हम लाइम और जिप्सम यूज करते हैं, मैग्नीशियम के लिए डोलोमाइट और मैग्नीशियम सल्फेट यूज होता है और सल्फर के लिए जिप्सम और एलिमेंटल सल्फर यूज किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, जिंक के लिए जिंक सल्फेट दिया जाता है, आयरन के लिए फेरस सल्फेट दे सकते हैं, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट, बोरोन के लिए बोरेक्स, मोलिब्डेनम के लिए सोडियम मोलिब्डेट और मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नैनो फर्टिलाइजर। ये वो फर्टिलाइजर है जिनमें न्यूट्रिएंट्स नैनो स्केल में होते हैं, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, जिससे न्यूट्रिएंट डिलीवरी बहुत इफिशियंट तरीके से होती है। इनकी एडवांटेज है हायर न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट रिलीज, रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, लेस न्यूट्रिएंट लॉस, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं नैनो यूरिया, नैनो DAP, नैनो जिंक, नैनो कॉपर एंड नैनो सल्फर। लेकिन लिमिटेशन भी है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म फील्ड स्टडी अभी लिमिटेड है और सेफ्टी कंसर्न्स को इवेलुएट करना जरूरी है। नाउ कम टू द सॉइल अमेंडमेंट्स। सॉइल अमेंडमेंट्स वो मटेरियल है जो सॉइल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करने के लिए ऐड किए जाते हैं। एसिड सॉइल के लिए लाइम एंड डोलोमाइट यूज होता है, सोडिक सॉइल के लिए जिप्सम यूज होता है, सेलाइन सॉइल के लिए गुड क्वालिटी वाटर से लीचिंग की जाती है और ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स के रूप में FYM, कंपोस्ट और बायोचार यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर स्टोर करते, नाउ वी विल कम टू द फर्टिलाइजर स्टोरेज। फर्टिलाइजर स्टोर करते वक्त कुछ प्रिकॉशन जरूर लीजिए। फर्टिलाइजर को ड्राई प्लेस में स्टोर कीजिए, मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, वुडन पैलेट्स पर स्टेक करना चाहिए, सनलाइट से बचना चाहिए, इनकम्पेटेबल फर्टिलाइजर को अलग रखना चाहिए और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी FIFO प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स है जैसे फर्टिलाइजर क्वालिटी इंश्योर करना, अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना, मैन्युफैक्चर और सेल को रेगुलेट करना, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना और फर्टिलाइजर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मेथड्स, फर्टिलाइजर रिकमेंड करने के 5 इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स यानी HTCR, जो सॉइल टेस्ट और टारगेट यील्ड का बेसिस पर रिकमेंडेशन देते हैं। दूसरा है जनरल रिकमेंडेशन जो एक रीजन के लिए कॉमन डोज होता है। तीसरा है क्रॉप रिमूवल मेथड जो क्रॉप द्वारा न्यूट्रिएंट रिमूवल का के बेसिस पर होता है। चौथा है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी SNM जो फील्ड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देते हैं। और पांचवा है प्रिसीजन फार्मिंग जिसमें GPS और सेंसर बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होती है। सॉइल एनालिसिस का पर्पस है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करना, फर्टिलाइजर रिकमेंड करना और सॉइल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। इसके कॉमन पैरामीटर्स है पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस, अवेलेबल पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सब के बेसिस पे हम सॉइल को एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं प्लांट एनालिसिस पे। प्लांट एनालिसिस में प्लांट टिश्यू में न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन डिटरमाइन की जाती है। इसके यूजेज है जैसे कि हिडन हंगर डिटेक्ट करना, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को कंफर्म करना और फर्टिलाइजर शेड्यूल करेक्ट करना। Now we will come to the rapid plant tissue test. ये फील्ड में क्विक टेस्ट होते हैं न्यूट्रिएंट डायग्नोस के लिए। नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम के लिए टेस्ट अवेलेबल है। इनके एडवांटेज है कि ये फास्ट होते हैं, सिंपल होते हैं और इमीडिएट फर्टिलाइजर करेक्शन पॉसिबल बनाते हैं। हाँ, अब आते हैं इंडिकेटर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स स्पेसिफिक डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाते हैं। राइस में जिंक डिफिशियंसी से खैरा डायग्नोस होता है। कॉलीफ्लावर में मोलिब्डेनम डिफिशियंसी से व्हिपटेल होता है। शुगर बीट में बोरोन डिफिशियंसी दिखती है। सिट्रस में जिंक डिफिशियंसी होती है और मेज में नाइट्रोजन डिफिशियंसी दिखती है। इसके एडवांटेज है ये फास्ट होती है, सिंपल होती है एंड इमीडिएट फर्टिलाइजर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे सॉइल पीएच, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर, ऑर्गेनिक मेटल, सॉइल टेक्सचर, इरीगेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटी, न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस, रूट ग्रोथ और फर्टिलाइजर प्लेसमेंट पर। अब बात करते हैं आज का रिवीजन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का इंटीग्रेटेड यूज, ताकि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे और क्रॉप प्रोडक्टिविटी सस्टेन हो। इसके कंपोनेंट्स है केमिकल फर्टिलाइजर्स, FYM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रेसिड्यू, बायो फर्टिलाइजर्स और नैनो फर्टिलाइजर्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करना और एग्रीकल्चर को सस्टेन करना। और इसके एडवांटेज है बैलेंस न्यूट्रिशन, बेटर सॉइल हेल्थ, हायर माइक्रोबियल एक्टिविटी, रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर कॉस्ट और सस्टेनेबल प्रोडक्शन। चलिए अब एग्जाम से पहले एक रैपिड फायर रिविजन कर लेते हैं। मैं क्विकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँ क्विकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगी, आप मेंटली रिपीट कीजिए। इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया, लाइफ साइकिल कंप्लीशन, स्पेसिफिक एक्शन और डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल। टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 17, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल। हाइएस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूरिया 46% नाइट्रोजन। हाइएस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर टोटल ट्रिपल सुपर फॉस्फेट 46% PTO5। हाइएस्ट पोटेशियम फर्टिलाइजर MOP 60% K2O। नैनो फर्टिलाइजर साइज 1-200 नैनोमीटर। FCO इंट्रोड्यूस 1985 में। बेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मेथड सॉइल टेस्ट, क्रॉप रिस्पॉन्स, खैरा डिजीज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी इन राइस, व्हिपटेल ड्यू टू बोरोन डिफिशियंसी इन कॉलीफ्लावर। एसिड सॉइल के लिए अमेंडमेंट्स हम यूज करते लाइम, सोडिक सॉइल के लिए अमेंडमेंट जिप्सम और आइनम। केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर और नैनो फर्टिलाइजर का कम्बाइंड यूज सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट, आज हमने कवर किया प्लांट न्यूट्रिएंट्स की सेंसिटिविटी, उनके रोल्स, डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, मैन्यूस और फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, नैनो फर्टिलाइजर सॉइल अमेंडमेंट्स स्टोरेज, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, रिकमेंडेशन मेथड्स, सॉइल और प्लांट एनालिसिस, इंडिकेटर प्लांट्स और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट्स। अपने नोट्स एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए और डायग्राम के साथ टेबल भी देख लीजिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। एग्जाम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का रेडियो रिवीजन। तो अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, कल बिल्कुल अच्छे से बिना किसी परेशानी के एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं, इसके बारे में आप पहले बताइए।
1: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनके प्रमुख कीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं, जिनको कि पत्तियां एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालुनालिस है। और उसके बाद एक गॉल मक्खी आती है जिसको तिल की मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ हॉपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं। इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफ़ेद मक्खी, बिहार हेरी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
0: तो मैम, अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
1: देखिए, अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं, सामान्य बात जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है ये बहुत छोटा होता है और इनके जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं और इनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं, जिससे कि क्या होती है, एक गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये काफ़ी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो पत्तों पौधों की जो कोमल सतहों हैं उन सतह होती हैं उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफ़ेद मक्खी जो है वो बेमेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफ़ी सफ़ेद होते हैं और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती है। सफ़ेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है। तो पत्ती फुदका और ये सफ़ेद मक्खी, ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
0: मैम, कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुँचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुँचे हैं, उनका लक्षण क्या होता है?
1: जी ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए ये लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी, जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधों की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वाड़ बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बीज की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है, इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है, वो कम बनती है फलियाँ, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफ़ी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तेनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूस कर उसे बिल्कुल कमज़ोर बना देते हैं। एवं इसमें क्या होता है, सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है, जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर ये बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
0: तो मैम, जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है, बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए, और इसके अलावा जो फसल चक्र हैं उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुआई भी बहुत ज़रूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूँगी। इसमें हम करते क्या हैं कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं, और जो खेतों में इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक सबसे ज़रूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये खेतों में ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं, तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफ़ेद मक्खी एवं माहू को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं, इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है, और नीम बीज खली अर्क 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे, ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% SC 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लुबेंडामाइट 480% SC 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से, एवं इसके अलावा क्लोरेन ट्रेनली प्रॉल 18.5% SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला,

MR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है। और लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज़ हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी थी, लेकिन एन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन में, ये किसी बदले की कहानी नहीं है। वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज़ हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियाँ किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर अपना परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है। और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी है। और ये इतनी कमाल की कहानी है, वाकई आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है। 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म पिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी, श्रीदेवी की बहुत ही कमाल की फिल्म, एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है। क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं, और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ज़रूर देखिए। और हम आगे बढ़ें तो द ग्रेट इंडियन किचन, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जो जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है। ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी, और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस इतना बताऊँगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप बहुत चक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना जरूरी होता है, और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपकी उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई, कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज हुई थी, थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। थप्पड़ 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर, एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़, लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। ये फिल्म हर महिला को ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कम बैक करती है और सारी चीज़ें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस मैं यहाँ देने बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज हुई थी फिल्म लापता लेडीज़। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है, अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को समझने को मिलेगा, इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे तो ये फिल्में आप ज़रूर देखें अभी के लिए। तो लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दे इजाज़त। नमस्कार। लेडीज़ फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताए 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है. और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे. तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं. इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें.
0: जी बिल्कुल सर. सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
1: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं. ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं. और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में.
0: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों, चूँकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा. तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है. फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है. और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है. तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं, तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके, उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है. अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए. क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी. किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं. तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है. और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है. मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है. तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्य दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजीम है, कार्बेंडाजीम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुप जाते हैं और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पे आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छी दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश मेमो ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश मेमो रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
0: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
1: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है, तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है, और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं, तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गोंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड शूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए, तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है, और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है, और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मल मूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येल्लो वेन मोज़ेइक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सम 25 WG इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सम 25 WG एक टारा के नाम से भी आता है एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है, तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में किकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है, और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्जम या इमिडाक्लोप्रिड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है, लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन भले रेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है ये तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 mg की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके खास कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो उसमें सब्जियों की खेती आय बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया होता है, लेकिन मौसम की मार, खरपतवार, रोग और कीट अक्सर मुनाफे में बड़ी बाधा बन जाते हैं। ऐसे में मल्चिंग विधि किसानों के लिए एक आधुनिक और कारगर तकनीक बनकर उभरी है। मल्चिंग क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाए, किस तरीके के मल्चिंग का चुनाव किया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर शिरीन अख्तर से। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम, आप है उद्यान सब्जी विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद।
6: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि मल्चिंग क्या है?
7: धन्यवाद उमा। आज की जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सब्जियों की खेती जो है किसानों की आय बढ़ाने की बहुत अच्छा जरिया है, और इसमें लेकिन बहुत सारा खरपतवार लगते हैं, रोग लगते हैं, जो कि अक्सर मुनाफे को बहुत हद तक घटा देते हैं। तो मल्चिंग एक ऐसी विधि है जिससे हम लोग मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग वो तकनीक है जिसमें खेत में मिट्टी की सतह को किसी आवरण से ढक दिया जाता है। ये आवरण जैविक भी हो सकता है, जैसे कि सूखी घास हो सकता है, पुआल हो सकता है, फसल की अवशेष हो सकता है, या अजैविक भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा प्लास्टिक मल्च लगाते हैं, काली शीट या सिल्वर शीट, ये सब लगाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी में नमी बनाए रखना, खरपतवार को रोकना और फसल को अनुकूल वातावरण देना। तो सब्जी की खेती में आय बढ़ाना हर किसान का लक्ष्य होता है, लेकिन मौसम, रोग, कीट और खरपतवार जो है अक्सर मुनाफे को बाधा डालते हैं, और मल्चिंग विधि एक आधुनिक खेती की कारगर तकनीक बनकर उभरी हुई है। और ये जो है खरपतवार कीटों से सब्जी फसल को बचाती है और फसल की पैदावार भी जो है 20-40% तक बढ़ा सकती है। और टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज या खरबूजा जैसे सब्जियों में मल्चिंग अपनाकर किसान कम लागत और कम सिंचाई में अधिक मुनाफा बहुत कमा सकते हैं।
6: तो मैम, जैसे कि आप बता रहे थे पैदावार बढ़ाई जा सकती है और मुनाफा कमा सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदा होता है मल्चिंग का?
7: मल्च के जो फ़ायदे हैं वो सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है वो मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तो जैसे गर्मी होती है तो उस समय पे जो है तापमात्रा भी ज़्यादा होता है और पानी की भी कमी होती है, तो उस समय क्या देखते हैं हम लोग, फसल जो है सूखने लगता है, मिट्टी सूख जाती है, तो उस समय पे सिंचाई भी ज़्यादा नहीं मिलता है, पानी का थोड़ा सा कमी भी हो जाता है। तो उस समय पे अगर हम लोग मल्च दे के रखते हैं तो मिट्टी की नमी सतह बनी रहती है और साथ साथ में जो है सब्जी फसल में खरपतवार की बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखता है और वो फसल को बहुत सारा हानि भी पहुंचाती है। खरपतवार की वजह से रोग भी काफ़ी होता रहता है। तो खरपतवार को हम लोग अगर घटाना चाहते हैं तो उसमें जो काफ़ी सारा लागत लग जाता है, बहुत सारा लेबर इंटेंसिव हो जाता है सब्जी की खेती, उसमें रेगुलरली लेबर निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो उससे जो है हमारा जो है फसल उगाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग अगर मल्चिंग की उपयोग करते हैं तो खरपतवार की वृद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर हम लोग काले रंग की पॉलिथीन मल्च लगाते हैं खास करके, तो उसमें जो है खरपतवार काफ़ी घटते हैं। और तीसरा चीज़ जो है मिट्टी का जो तापमान है वो भी मल्च से नियंत्रित रहता है। खास करके अगर हम लोग इसमें पुआल वगैरह की मल्चिंग करते हैं गर्मियों के समय पे, तो उसमें जो है मिट्टी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है कम रहता है, तापमान कम रहता है। यहीं पे अगर हम लोग ठंडे में पॉलीथीन मल्च लगाते हैं, प्लास्टिक के मल्चेस लगाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। और साथ साथ में जो है जैविक मल्च अगर हम लोग लगाते हैं, घास हो सकता है, पुआल हो सकता है या कंपोस्ट भी हो सकता है, तो वो आखिर में लास्ट में जो है मिट्टी में मिलके मिट्टी का उपजाऊ जो क्षमता है उसका भी सुधार करता है। तो टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब्जियों में ज़्यादातर मल्च हम लोग लगाते हैं और उससे बेहतरीन परिणाम मिलते हैं और तापमान वगैरह जो है इसका जो है संतुलित रहता है। इसके अलावा जो है नमी क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो सिंचाई का भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो पानी जो है उसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसमें कम हो जाती है। और साथ साथ में जो है मिट्टी से जो पत्तियों पे कीचड़ उछल के आते हैं तो वो समस्या भी कम रहती है। और मिट्टी कहीं ना कहीं पौधे में उछल के आती है तभी जो है पौधे में फफूंद और जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उसका खतरा आ जाता है। तो मल्चिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये खतरा भी टलता है, तो रोग की प्रकोप भी कम होती है। साथ साथ में जो है फल की क्वालिटी भी अच्छा होता है क्योंकि फल डायरेक्ट ज़मीन के या मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है, मिट्टी के संपर्क में रहता है तो बहुत सारा फफूंद उसमें लग सकता है, उसका क्वालिटी भी खराब हो सकता है, उसमें सड़न आ सकती है। लेकिन मिट्टी से डायरेक्ट अगर वो संपर्क में नहीं रहता है, मल्च के ऊपर रहता है, तो वो जो फल रहता है कद्दू वगैरह खास करके हम लोग देखते हैं या टमाटर भी देखते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। साथ साथ में जो है कुछ प्लास्टिक मल्च जैसे सिल्वर कलर के मल्च होते हैं, तो उन मल्च से जो है अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें कीड़ा भी कम होता है, सफ़ेद मक्खी वगैरह जो है या फिर माहू होता है इनका प्रकोप भी घटता है।
6: मैम, अभी आप अलग अलग प्रकार के मल्च के बारे में बता रहे थे, तो कितने प्रकार के मल्च होते हैं?
7: मुख्यतः मल्च जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक है जो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी में पोषक तत्व देते हैं, जैसे कि सूखी पत्तियां हो गया, भूसा हो गया या कंपोस्ट हो गया, और दूसरा है अजैविक या इनऑर्गेनिक जो टिकाऊ होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मल्च हुआ या फिर ग्रेवल या पत्थर जो होते हैं इनका भी मल्चिंग हम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक या जैविक मल्च में जो है पत्तियां घास आती है जो कि आसानी से उपलब्ध है और कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाते हैं मिट्टी का, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं या कोई पेड़ की छाल हो सकते हैं जो ज़्यादातर बड़े पेड़ों और झाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। भूसा भी हो सकते हैं, हम लोग खास करके सब्जियों की बगीचे में जो है भूसा को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है और मिट्टी को नमी वगैरह भी अच्छे से मेंटेन करके रख सकता है। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, तो कंपोस्ट से जो है मिट्टी का उर्वरता जो है वो अच्छे से सुधार हो सकता है। अजैविक मल्च में जो है प्लास्टिक शीट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सब्जियों में खास करके टमाटर और मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो प्लास्टिक मल्च लगाने से जो है ठंडे में जो फसल होता है उसमें मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ा देता है, साथ साथ में नमी को भी बरकरार रखता है, तो उसमें सिंचाई का ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं ही पड़ता है। साथ साथ में टमाटर और मिर्च में हम लोग देखते हैं कुकड़ी का प्रकोप होता है सफ़ेद मक्खी से, थ्रिप्स से, एफिड से, तो जो प्लास्टिक या सिल्वर मल्चिंग अगर हम लोग इसमें लगाते हैं, खास करके मिर्च में हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सिल्वर मल्चिंग का, तो वो जो है इसको ये जो सकिंग पेस्ट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी हो गया या एफिड हो गया या माहू हो गया, इनको ये दूर रखते हैं और जो कुकड़ी जातीय रोग होते हैं उनको वो दूर रखते हैं। इसके अलावा ग्रेवल या स्टोन जो है ये भी देखते हैं, ये सजावटी जो बगीचे होते हैं उनके लिए उपयोग ज़्यादा होता है। और एक मल्च है जो लैंडस्केप फेब्रिक, तो ये फैब्रिक क्या है, ये जैसे हम लोग शेड नेट वगैरह रख देखते हैं वैसे टाइप का ही होता है, तो इसमें जो है पानी गुजरने देता है ये मल्च, लेकिन उसमें खरपतवार नहीं उग सकता।
8: जी मैम, तो इतने प्रकार के मल्च में एक सही मल्च का कैसे चुनाव करें?
7: तो हम लोग जो है सही मल्च के लिए सब्जी वाले बगीचे में अगर हम चयन करते हैं मल्च का, तो उसमें हम लोग जैविक मल्च उपयोग कर सकते हैं या फिर जो है प्लास्टिक मल्च में जो है सिल्वर मल्च का उपयोग बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर हमको मूल हमारा लक्ष्य है खरपतवार को नियंत्रण करना, तो काले रंग की मल्च, पॉलिथीन मल्च जो है वो बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण भी करती है। और अगर हमारा सजावटी कोई क्यारिया हो तो उसमें हम लोग लकड़ी के टुकड़े या फिर जो है पत्थर या बजरी जो है उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए अगर हम देखते हैं तो टिकाऊ होता है प्लास्टिक मल्च, तो ये अधिकतर उपयोग होता है सब्जी की खेती में।
8: तो मैम, मल्चिंग कैसे अपना सकते हैं?
7: खेत को हम लोग पहले अच्छे तरह से बेड बना लेंगे, उसको पहले निराई गुड़ाई करेंगे, उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर जो है निराई गुड़ाई करके अच्छे से उसका बेड तैयार कर लेंगे, फिर जो है मल्च हम जब करते हैं तो उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाना ज़रूरी होता है, खास करके प्लास्टिक मल्च के लिए। तो प्लास्टिक मल्च शीट जो है ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में प्लास्टिक मल्च के शीट उसमें लगाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पौधा लगेगा उसका जो विधि अनुसार जो दूरी होता है जिसको हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस प्लास्टिक मल्च के ऊपर छेद बना लेंगे। छेद बनाने के बाद में जो है हम लोग बाद में पौधे को रोपण करेंगे, पहले मल्च डल जाएगा उसके बाद में जो है पौधा रोपण होगा जो छेद बनाने के बाद में। और अगर हम लोग जैविक मल्च लगाते हैं तो पहले हम लोग जो है पौधा लगा सकते हैं, उसके बाद में पौधा थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाने के बाद में हम लोग जो पुआल हो या फिर सूखे घास हो उसको मिट्टी के ऊपर बिछा के उसको उपयोग कर सकते हैं।
8: और मैम, इससे उत्पादन कैसे बढ़ता है और मुनाफा कैसे इससे ज़्यादा होता है?
7: मल्चिंग अगर हम अपनाते हैं तो सब्जी की पैदावार में हम लोग देखते हैं कि 20-40% की बढ़त हो सकती है, तो ये काफ़ी हद तक बढ़त है। और साथ साथ में जो है फसल जल्दी तैयार हो जाता है, तो जल्दी तैयार होने के लिए अर्ली फसल होता है तो किसान को जो है मुनाफा ज़्यादा मिलता है, बाज़ार में जो भाव मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। साथ साथ में क्योंकि मिट्टी से डायरेक्ट जो है संपर्क में नहीं रहता है, तो उसका जो फल होता है, फसल होता है, उसका गुणवत्ता भी ज़्यादा होता है, तो गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा होने के कारण से जो है बाज़ार में कीमत भी अच्छा मिलता है। और शुरुआती लागत हो सकता है थोड़ा सा लगे, क्योंकि पॉलीथीन मल्च या प्लास्टिक मल्च अगर खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा लागत लगता है, लेकिन अल्टीमेटली सिंचाई भी कम पड़ता है तो, और जैसे आपको निराई गुड़ाई करने का लेबर भी कम पड़ता है, रोग प्रकोप जो है वो भी कम होता है, इसलिए उसका दवाई भी कम पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो है आपका जो खर्चा होता है खेती का वो कम ही होता है।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले

किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओं, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
0: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी

0: ये हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
5: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
5: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
5: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
5: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
5: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
5: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
5: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
3: अच्छा
5: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
3: डॉक्टर नमिता
4: जी,
3: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
4: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है।
5: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
4: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
5: जी,
4: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
3: अच्छा,
4: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
3: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
5: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
3: बिल्कुल,
4: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
5: जी,
4: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
3: बिल्कुल,
4: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
5: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
3: जी,
5: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
3: जी,
5: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
3: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
4: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
3: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
5: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
4: बिल्कुल,
5: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
4: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
5: जी,
4: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
3: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
4: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
5: जी
3: बिल्कुल,
5: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
3: जी,
5: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
5: जी,
4: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
3: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
5: जी,
3: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
0: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं, वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने अपने किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ
2: जी।
1: चलो शाबाश। हाँ गोपाल इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक है बैठो, पीछे
4: आइए। अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: एकम पांच, पांच दूनी दस।
6: नमस्ते
7: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
7: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
8: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
7: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
7: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
7: हाँ ये भी ठीक है।
9: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
7: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
7: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
7: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर।
7: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
10: दीदी।
11: बोलो मालती।
10: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
11: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
10: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
11: ठीक।
10: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
11: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
10: जी।
11: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
10: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
11: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
6: नमस्ते दीदी।
12: नमस्ते
6: दीदी।
12: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते
11: दीदी। ये अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
6: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
11: अच्छा
9: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
11: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
2: गुलाब।
11: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
6: दीदी मैं बताऊँगी।
11: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
2: गुलाब, गेंदा,
11: हाँ
2: चमेली,
11: और हाँ
2: चमेली,
11: चमेली,
2: सूरजमुखी।
11: सूरजमुखी, शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ तेंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
11: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
4: जी जी।
11: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
4: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
11: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
4: बहुत अच्छे।
11: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
4: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
11: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
4: जी।
11: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
4: हल्के नीले रंग के?
11: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
4: अच्छा।
11: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
4: काहे की लिस्ट?
11: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं, इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है।
11: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
4: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
11: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
4: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?

0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
0: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खास तौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में. और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह. सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी.
0: सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
1: देखिए सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है. जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना. इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है. अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है उसकी तुलना में 40% कम होगा, अर्थात 2/3 से भी बरसात कम होगा. तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी. प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं. तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में असिंचित अवस्था में. जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा. तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं. 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं. तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं. आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे. ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है. तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी कम चाहिए. जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं. तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सावा भी शामिल है. इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे. और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी. तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है. तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं.
0: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न और खास तौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
1: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए, सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में, लगभग 85 दिन में पक कर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आपके कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए, इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है, और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए, इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है। अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए, सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान फेंक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं। तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा कर रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है, और गहराई जो बीज का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 1 इंच से ज्यादा गहराई पर बुआई इसकी नहीं करना है, अर्थात जो गहराई है बुआई की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है, और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच पर

0: ना है किसी कंडीशन में हम 25 सेंटीमीटर अर्थात 10 इंच की 9 से 10 इंच तक हम इसको कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका पौधा उत्पन्न होता है और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात आता है इसमें जो है बोने की विधि का, तो बोने की हमारी कई विधियां हैं, जैसे हम कतारों में बोएं फ्लैट बेड पर, और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहाँ आजकल हम लोग क्या करते हैं चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर चार लाइन समा की जाती है जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और वहाँ भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड हम बेड बनाते हैं तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो जो बरसात ज़्यादा होगा तो बेड पर का पानी फरो में जाते हुए कतार कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20-25% बढ़ जाती है और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां कल सिलेक्शन करें। तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, एक साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है जिसको हम बोलते हैं RAU 3, और अगला प्रजाति है RAU 9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक, तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की VL 207, VL 172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL 29 भी एक सावा की अच्छी प्रजाति है जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10 से 11 क्विंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है, इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं, तो VL 29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ और ये पककर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सांवा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं, और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: देखिए सांवा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राईलैंड की फसल है, वर्षा आधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां बहुत सी विधियां हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें, अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7-8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं बहुवर्षीय खरपतवार हैं उनकी जो जड़ें हैं सकर्स हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें, और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ है, आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन इसका उपयोग करते हैं, उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है। 30 ml पेंडीमेथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है और 1 एकड़ में करीब 8 से 9 टंकी पानी या 8 से 10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर अर्थात आपने बुआई कर दिया उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमेथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए तो अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D। 2,4-D 3 ग्रुप में आती है, जो है एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला तो है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से तो उसका करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है और बुआई के 20 से 22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें 2-4 लेबर लगा करके मैनुअली निराई करनी होती है। क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है, इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं, बचा खुचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज़्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा, फिर इनके महत्वों को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें सब एक ही है, लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं न कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग 1 बोरी यूरिया 1 बोरी DAP और 0.5 बोरी पोटाश प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटाश एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिलाकर के जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम 2 भाग में स्प्लिट करेंगे, 2 भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, जैसे हमने बोला 1 बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं, बालियां निकलने करीब 1 महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम 2 बार में बांटना है। तो किसान भाइयों आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो 1 बोरा यूरिया 1 बोरा DAP और 0.5 बोरा पोटाश प्रति एकड़ आपको देना है। पोटाश और DAP की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको 25 किलोग्राम से प्रति एकड़ देना है बुआई के 20 से 22 दिन पर। इससे देने से कल्ले और टीलर अच्छे निकलते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा डोज देना है जब बालियां निकलने लगे, मतलब बुआई के लगभग 50-52 दिन पर, तो अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छी होती है। और मैं किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सावा की जो अच्छी प्रजाति है DHBM 23-3 इसका बीज उपलब्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़, मात्र 85 दिन में पक्के तैयार होने वाली प्रजाति है DHBM 23-3। इसका बीज यथाशीघ्र हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और ये बीज हम प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क देंगे। दूसरी प्रजाति हमारे पास VL 29 भी है, इसका सीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद।
1: जी सर, सर आप

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती

सकते हैं। उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत है लेकिन सही जानकारी अभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। आज हम बात करने वाले हैं टीबी रोग के बारे में यानी क्षय रोग के बारे में। आज हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं टीबी मुक्त भारत, इस बारे में हम बातें करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों पास के ना एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश भाई जी को कई हफ्तों से खांसी थी। पहले उन्होंने सोचा मौसम बदल गया होगा, फिर पड़ोसियों ने कहा कि पुरानी खांसी है ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, बुखार आने लगा, रात में पसीना आने लगा, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने जांच ही नहीं करवाई। जब हालात ज्यादा बिगड़ गई तब आशा दीदी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तब पता चला कि टीबी है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई? इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मुफ्त मिली, पोषण सहायता मिली और आज रमेश पूरी तरह स्वस्थ है। यानी सच यही है कि टीबी लाइलाज नहीं है बल्कि पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अपनी प्रिय टीकन देवी। स्वागत है आपका टीकन देवी जी।
1: धन्यवाद आरजे जी। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी टीबी से डरने की नहीं समझने की जरूरत है। जी हाँ, टीबी को समझने की जरूरत है। टीबी को हम समझेंगे तभी उससे हम लड़ पाएंगे। श्रोताओं, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलती है, और जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, टीबी का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ये पूरी तरह मुफ्त है। और भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से टीबी को पूरी तरीके से देश से खत्म कर दिया जा सके।
0: टीकन देवी जी, आपने बताया कि देश में टीबी खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, क्या कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं?
1: बिल्कुल आरजी जी, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साफ और समयबद्ध लक्ष्य तय किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी हो सके टीबी मरीजों की पहचान की जाए, क्योंकि अक्सर लोग महीनों तक खांसी को सामान्य समझते रहते हैं, जांच नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम के बदलने की वजह से हो गया है, या फिर किसी भी वजह से वो जांच नहीं करवाते, जिससे टीबी जैसी बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। इसलिए अब सरकार की कोशिश ये है कि हर संदिग्ध व्यक्ति तक जांच की सुविधा पहुंचे और बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान हो। और दूसरा लक्ष्य है टीबी से होने वाली मौतों को कम करना। देखिए, जब मरीज समय पर इलाज शुरू करता है और दवाइयां नियमित लेता है तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज देर करता है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मरीज का इलाज बीच में ना छूटे। इसलिए मरीजों के लिए ज़रूरी होता है कि वो नियमित और पूरी दवाई ले। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा है हमारे भारत सरकार ने कि समुदाय में नए टीबी मामले कम से कम मिले या बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। यानी सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी ज़रूरी है। इसके लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। श्रोताओं, दरअसल ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। जैसा अभियान का संदेश भी कहता है, टुगेदर वी कैन स्टॉप टीवी, योर वॉइस, योर अवेयरनेस एंड योर एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर टीबी मुक्त भारत। यानी हम सबकी आवाज और भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत संभव है।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब सरकार अपना काम कर रही है लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी साथ आएगा। टीकन देवी जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टीबी के लक्षण पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य खांसी या कमजोरी है। ऐसे में लोग कैसे समझें कि जांच करवाने का समय आ गया है?
1: आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को दो हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है और कुछ मामलों में खून भी दिखाई दे सकता है। और ये गंभीर संकेत होते हैं अगर आपको बलगम के साथ खून दिखाई दे। इसके अलावा अगर बार बार बुखार आता रहे, खासकर शाम या रात के समय और रात में अधिक पसीना आए, तो ये भी टीबी का लक्षण हो सकता है। कई मरीजों में धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, भूख कम लगती है और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है, और कुछ लोग सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ भी महसूस करते हैं। इसलिए रोजमर्रा के काम करते हुए जल्दी थक जाना भी एक संकेत हो सकता है आरजे जी। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो जांच करवाने में देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी।
0: यानी शरीर संकेत देता है, बस हमें समझने की जरूरत

0: होती है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। एक सवाल और, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं?
1: देखिए, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों को पहले कभी टीबी हो चुकी है, उनमें दोबारा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरह अगर घर में किसी सदस्य को टीबी है, तो बाकी परिवार के लोगों की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे लंबे समय तक एक मरीज के संपर्क में रहते हैं, तो हो सकता है कि उनमें भी संक्रमण फैल जाए। और एक और बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। जिसे कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कुपोषण और टीबी का क्या रिश्ता होगा? है, जिन लोगों का शरीर कमजोर होता है या जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो टीबी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जिन्हें डायबिटीज है और HIV से प्रभावित है, उन व्यक्तियों में भी संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है RJ बाबू। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि धूम्रपान और शराब का सेवन फेफड़ों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे टीबी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए धूम्रपान शराब से बिल्कुल बचा कर रखें खुद को, और जो भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, उन सभी की नियमित स्क्रीनिंग बहुत जरूरी मानी जाती है, ताकि बीमारी समय रहते पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके।
0: मतलब जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है, उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने और समय समय पर जांच करवाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, और यही जागरूकता टीबी मुक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
0: अब तक हमने लक्षणों और जोखिम वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है जल्दी जांच और जल्दी इलाज। आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: देखिए RJ जी, टीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पहला कदम हमें क्या उठाना है? बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना है, और जब किसी व्यक्ति की समय पर जाँच हो जाती है तो संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचानना, दूसरा कदम है तुरंत इलाज शुरू करना। कई बार लोग जांच तो करवा लेते हैं, लेकिन दवा शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं, या फिर वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप दवा शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज स्वस्थ होगा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा इलाज पूरा करना। टीबी की दवाइयाँ बीच में छोड़ देने से बीमारी वापस आ सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आप टीबी का इलाज बीच में छोड़ेंगे, तो उसके बाद मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा हो जाता है RJ बाबू। इसलिए ये तीन कदम बहुत जरूरी होते हैं। पहला कदम, बीमारी को जल्दी पहचान लीजिए। दूसरा कदम, कि तुरंत इलाज शुरू कीजिए। और इलाज शुरू करने के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, इलाज पूरा कीजिए। डरना नहीं है, इलाज करवाना है, नियमित और पूरी दवाई खानी है और पौष्टिक आहार लेना है। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, खर्चा बहुत होगा, और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है टीबी को लेकर। इसलिए अब सरकार सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रही है कि टीबी मरीज अस्पताल आएंगे, बल्कि अस्पतालों में, विशेष OPD में और हाई रिस्क समूहों में स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि बीमारी की पहचान खुद लोगों तक पहुँच कर की जा सके। इससे क्या होगा कि बीमारी की पहचान हो जाएगी, उनका इलाज जल्दी शुरू होगा, और उनका इलाज जल्दी शुरू होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी।
0: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि लोगों तक खुद पहुंच रही है। ये सच में बहुत अच्छी पहल है। टीकन देवी जी, कई श्रोता ये सोचते हैं कि टीबी की जांच और इलाज बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग डर जाते हैं और जांच कराने में देर करते हैं। क्या सच में इलाज इतना मुश्किल और खर्चीला है?
1: नहीं RJ जी, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, और मैं आज सभी श्रोताओं से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, टीबी की जांच और इलाज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में बलगम की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है, यानी कि उनके जांच में टीबी निकलता है, तो पूरी दवाइयां भी सरकार के द्वारा निशुल्क दी जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे बहुत खर्च होंगे, आपको जांच से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा।
0: मतलब मरीज को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल नहीं, यही कारण है कि हम

0: बार बार कहते हैं, लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर ना करें। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की चिंता की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए। और ये बात हर किसी तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपको लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाइए जो मुफ्त होगा, और अगर लक्षण दिखने के बाद, जांच करवाने के बाद टीबी निकलता है तो उसके बाद आगे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। डरिए मत, इलाज करवाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे।
1: लेकिन लोग अक्सर दवा कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टीबी का इलाज सामान्य बुखार या खांसी जैसा नहीं होता है। इसका इलाज कई महीनों तक लगातार चलता है, और सबसे जरूरी बात, दवा नियमित और पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो बीमारी दोबारा और बहुत गंभीर रूप में लौट सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद क्या होगा कि दवाइयाँ कम असर करने लगेगी और उसके बाद टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, और याद रखें कि पूरा इलाज ही टीबी को पूरी तरह से ठीक करता है।
1: तिकन देवी जी, आपने पहले बताया था कि सरकार सक्रिय रूप से लोगों की जांच भी करा रही है, ये जांच कहाँ कहाँ की जा रही है?
0: बहुत अच्छा सवाल। अब टीबी की पहचान सिर्फ अस्पताल वाले मरीजों तक सीमित नहीं है। सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सक्रिय खोज अभियान चला रही है, और अब जांच कई जगहों पर की जा रही है, जैसे कि एचआईवी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होती है, एनसीडी क्लिनिक में होती है जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियों के मरीज आते हैं, डायलिसिस केंद्र में भी मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर उपचार केंद्र में, वहीं तंबाकू निषेध क्लिनिक में भी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि इस समूह को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अस्पताल के ओपीडी में या फिर आईपीडी में, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही विभागों में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय खोज अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य साफ है, बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके ताकि संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके।
1: यानी अब सरकार मरीज के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद खोज रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, यही रणनीति टीबी खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जल्दी पहचान और तुरंत इलाज।
1: टीकन देवी जी, क्या इन प्रयासों से भारत में सच में कोई बदलाव दिख रहा है?
0: जी हाँ, ये बहुत उत्साहजनक खबर है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच हमने टीबी के रोकथाम में बहुत सफलता पाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में टीबी के मामलों में लगभग 18% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सबके प्रयासों का ही फल है कि हम वैश्विक औसत से भी तेज प्रगति कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जब सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव बहुत संभव हो जाता है।
1: ये सच में उम्मीद देने वाली बात है, यानी अगर लोग समय पर जांच और पूरा इलाज करवाएं तो टीबी को खत्म किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं से फिर कहना चाहूंगी, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, जांच और इलाज मुफ्त है, दवा नियमित लें और पूरा कोर्स करें, और लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर बिल्कुल ना करें।
1: दोस्तों, याद रखिए, जानकारी ही बचाव है और समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। एक सवाल जो अक्सर श्रोता पूछते हैं, इलाज तो ठीक है लेकिन टीबी मरीज कमजोर हो जाता है, ऐसे में सरकार या समाज उनकी क्या मदद कर सकता है?
0: बहुत जरूरी सवाल है ये। टीबी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही पोषण से भी ठीक होती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है तभी दवाइयां असर करती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होता है कि टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो पौष्टिक भोजन ले सके और इलाज के दौरान जो कमजोरी होती है उससे बच सके। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल भी चल रही है, जिसमें समाज के लोग, संस्थाएं और समुदाय आगे आकर मरीजों को पोषण, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी मरीजों को आप किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप उन्हें हौसला दे सकते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज पूरा कीजिए, और जो भी जरूरी सहायता आपसे संभव हो सके वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा समाज मरीज का सहारा बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान अकेला महसूस ना करे।
1: वाह, मतलब इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के सहयोग से पूरा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत सिर्फ सरकार अकेले नहीं बना सकती है ना, इसमें समाज की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जन भागीदारी का मतलब होता है हर व्यक्ति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सबसे पहले लोगों तक टीबी के लक्षणों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है, और जब जानकारी होगी तभी लोग जांच के लिए आगे आएंगे। दूसरा, हमें लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। कई लोग डर या शर्म की वजह से जांच नहीं करवाते, और ये सोच बदलनी होगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। आप जांच करवाइए और इलाज करवाइए। और लोग इसलिए भी डरते हैं, शर्माते हैं कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो। तो तीसरी सबसे जरूरी बात यही है कि भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। टीबी मरीज को अलग या कमजोर समझना बहुत गलत है, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मरीज को पूरा इलाज करवाने में मदद करना चाहिए। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि मरीज को पूरा इलाज के लिए आप प्रोत्साहित करें। और सबसे अहम बात कि मरीज को पोषण और मानसिक सहयोग देना होता है। जब समाज साथ खड़ा होता है तो मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि टीबी पर खुलकर बात करें, इसे छुपाएं नहीं।
1: सही कहा आपने, बीमारी छुपाने से नहीं, समझने और मिलकर लड़ने से खत्म होती है। टीकन देवी जी, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीबी छूने से फैलती है या मरीज के पास बैठने से बीमारी हो जाती है, क्या ये सच है?
0: नहीं, ये पूरी तरह गलत धारणा है आरजे बाबू। टीबी साथ बैठने से नहीं फैलती, ना ही खाना साझा करने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से तब फैलती है जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है या छींकता है और हवा में मौजूद जीवाणु उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी सावधानियां बहुत ही सरल है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें और घर या कमरे में ताजी हवा आने दें। जब सही जानकारी होगी तब डर और गलत फहमियां भी खत्म होगी आरजे।
1: यानी डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। टीकन देवी जी, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुद को टीबी से कैसे बचा सकता है?
0: देखिए, रोकथाम के तरीके बहुत आसान हैं और रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले खांसी शिष्टाचार, यानी कि जब भी खांसी आए तो अपने मुंह को ढकें, छींके तो भी अपने नाक को ढककर छींके। इससे क्या होगा कि संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है कि पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर लड़ पाता है ना। और तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और घर में अच्छा वेंटिलेशन रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। आप बंद कमरे में रहेंगे तो जो भी संक्रमण होगा वो कमरे में ही रहेगा, लेकिन जब साफ हवा कमरे के अंदर आएगी तो आप संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। और जिन लोगों में जोखिम ज़्यादा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जोखिम ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए।
1: छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, यही संदेश है।
0: और अंत में मैं सभी श्रोताओं से दिल से कहना चाहूंगी कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी जांच और इलाज दोनों मुफ्त है। बस सबसे जरूरी है कि पूरा इलाज करिए और मरीजों का साथ दीजिए, भेदभाव नहीं करिए। और याद रखिए, अभियान का संदेश यही है, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय इंडिया, पावर्ड बाय जन भागीदारी। यानी कि जन भागीदारी के साथ ही हम टीबी को खत्म कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता और आपका सहयोग ही बनाएगा टीबी मुक्त भारत। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी टीबी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। और अब समय है विदा लेने का, पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
3: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम, किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो तकनीकी के प्रयोग से कैसे पौधों में रोग निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे नैनो तकनीक क्या है और भी इसके बारे में बहुत सी बातें हम जानने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अभिषेक कुमार,

0: सर आप है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। मैं
0: सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर नैनो तकनीक है क्या?
1: यह बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली तकनीकी है, जो उन्नत वैज्ञानिक तरीका है जिसका प्रयोग पौधों के रोकथाम और बचाव के लिए बहुत बेहद उच्च प्रणाली के तरीका से किया जाता है, जिसे कि नैनो तकनीकी कहा जाता है।
0: और सर नैनो तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या है?
1: जी अभी किसान भाई को नैनो तकनीकी क्यों चाहिए, तो इससे पहले भी हमने बातें की थी, लेकिन फिर भी पुनः यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि यह जो तकनीकी है जो किसान भाइयों के लिए नया है और यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। जो हम पहले उपयोग करते थे उसके जो परंपरागत उपयोग करते थे उसके अपेक्षा यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है ना जो इसमें लागत है वह भी किसान भाई के लिए कम होते हैं और इसके अलावा भी जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं, यह क्योंकि इसमें किसी तरह की जैविक जो हम लोग परंपरागत जो रसायन यूज करते थे वैसा नहीं होते हैं यह, और इसमें अवशेष भी कम बचते हैं जिससे कि उसका जो प्रभाव जो बाद में होता है वह भी कम हो जाता है। और जो नैनो आधारित उत्पाद होते हैं जैसे, और इसका जो मिट्टी में जल में जो है ना प्रदूषण भी कम करते हैं, और इसके सहायता से नैनोकन की सहायता से नैनो तकनीकी की सहायता से जो दवा है या पोषक तत्व जो हम बनाते हैं नैनो तकनीकी से वह भी जो है ना पौधे को सीधे पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको मिलते हैं, तो इसमें जो है ना पौधे को बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना लाभ मिलता है, जिससे यह तकनीकी बहुत अच्छा माना जा रहा है।
0: यस सर। तो सर इस तकनीक के उपयोग से पौधों में रोग निवारण की भी आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन निवारण से पहले ज़रूरी है कि हम कारणों को समझें। तो सर आप ये बताइए कि पौधों में रोगों के होने का कारण क्या क्या होता है?
1: पौधों में रोग होने के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाई को जानना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि वे जो हमारे मिट्टी है उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की ही कमी हो जाती है, उसके कारण भी जो है ना आगे पौधे में बर्बाद कम हो जाती है। या क्या होता है कि कभी कभी जो है ना किसान भाई जो डेली का जो उसका खेत का जो सही ढंग से जुताई बुआई या सिंचाई नहीं कर पाते हैं, उसके कारण में भी रोग की जो है ना जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। तीसरा है कि कीट के भी द्वारा जो है ना पौधों में रोग आ सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं, कीट कहीं दूसरे जगह गए उसमें कहीं संक्रमित पौधे पे आए तो उसके थ्रू भी द्वारा भी पौधों में रोग होने की संभावना होती है। और कभी कभी क्या होते हैं या बहुत यात्रा में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से जीवाणु या विषाणु या फुफंदी भी पौधों में आ जाते हैं, जिससे कि जो है ना पौधों में रोग होने की जो है ना कारण और जो है ना मात्रा बढ़ जाते हैं।
0: सर कारणों के बारे में तो अब जान लिया, अब जरूरी है कि हम इसके रोकथाम की बात करें। रोकथाम कैसे किया जाए?
1: यहाँ पे मैं किसान भाई को एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा, और किसान भाई इस चीज़ को जानते भी हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जब हम किसी खेत में किसी पौधे को लगाने के बारे में सोचें या उसमें किसी तरह का खेती का कृषि का कार्य करने का हम प्रारंभ करें, तो सर्वप्रथम जो है ना समय पे जो है ना खेत की जुताई जरूर करें। जुताई करने से क्या होता है कि जो अंदर जो छिपे रहते हैं जीवाणु विषाणु बाहर आ जाते हैं, और बाहर में धूप और जो तापमान है उसके कारण जो है ना जीवाणु और विषाणुओं का प्रकोप कम होने लगता है, क्योंकि उसकी जो है ना ग्रोथ कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी पूर्णतः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और दूसरा है कि समय पे हम उसकी बुआई करें। कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई खेती तो करते हैं लेकिन समय पे उसकी बुआई नहीं कर पाते हैं, तो जब हम उसमें देरी करते हैं, लेट होता है, तो जो है ना तो स्वाभाविक है कि जो है ना पौधों में रोगों की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो वह भी समय पे करने का कोशिश करें। और तीसरा है कि जो है ना उसमें सिंचाई भी करें। सिंचाई भी करना चाहिए समय समय पर। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है जो किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि जिस खेत में हम कृषि कार्य करते हैं ना, उसमें हमेशा समय समय पर जो है ना, जो खाद है, जो अपना देसी खाद है, उर्वरक है, और जैसे कि जो अपना गाय का है या जो है ना जो उसका गोबर है, वह सब जो है ना प्रचुर मात्रा में डालना चाहिए। इससे भी जो है ना इसकी रोकथाम में सहायता मिलती है।
0: रोकथाम के बाद अब फिर भी अगर पौधों में रोग हो जाते हैं तो उन रोगों की पहचान कैसे करें?
1: अभी जो नैनो तकनीकी है उसमें जो है ना एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो नैनो संवेदक आया है, जिसको नैनो सेंसर बोलते हैं, और इसकी महत्ता बहुत हो जाती है कि इसके नैनो संवेदक के द्वारा हम जो है ना इसका जो है ना बहुत पहले ही, बहुत अर्ली स्टेज में जो है ना, प्रारंभिक अवस्था में ही हम जो है ना रोगों की पहचान कर सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी कर सकते हैं। तो नैनो संवेदक क्या है? यह एक जो है ना नैनो तकनीकी का सूक्ष्म उपकरण होते हैं जो कि नैनो स्केल पे काम करते हैं, और इसमें जो भी जीवाणु विषाणु और जो भी चीज़ होते हैं जिसको पता लगाना होता है, उसमें जो जैव रासायनिक चीज़ होते हैं या भौतिक गुणों के आधार पे बहुत आसान से नैनो संवेदक उसका पता कर लेते हैं कि यह आखिर क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, फुफंदी है, या किसके कारण, या पोषक तत्वों की कमी है, और या और अधिक और कोई चीज़ की कमी है, तो उसके आधार पर यह जो है ना नैनो संवेदक बहुत अच्छा से पता कर लेते हैं। और इसकी यह भी खासियत है कि यह छोटे आकार के होते हैं, कम मात्रा में रसायन अगर होते भी हैं, जीवाणु विषाणु कम भी होते हैं, तो पर भी वह उसका पता आसानी से कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कीटों की या तापमान के बदलाव के भी कारण कुछ अंतर होते हैं, तो वह भी जो है ना नैनो संवेदक आसानी से उसको पहचान कर लेते हैं।
0: सर, पहचान के बाद अब बात निवारण की, तो इन रोगों का निवारण कैसे करेंगे?
1: निवारण मुख्यतः तीन तरह से हम कर सकते हैं कि सर्वप्रथम हम यहाँ पे सलाह देंगे किसान भाई की को, किसान भाई बहनों को, कि पौधों में जो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावें, कुछ जो नैनोकण अभी मिलते हैं, जो नैनोकण बनाया जा रहा है, जैसे उसमें काइटोसोन नैनोकण होते हैं, यह पौधों के जो है ना प्रतिरोधक जो क्षमता होते हैं उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में बहुत कारगर उपाय, कारगर साबित हो रहे हैं, जिससे कि विभिन्न तरह के जो पौधों में संक्रमण होता है उससे यह बचाने में बहुत मदद करते हैं। फिर है कि जब यह हमको पता चल जाता है कि हम उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावें, तो दूसरा है कि कुछ जो नैनोकण होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से ही पोषक तत्व के तरह काम करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड नैनोकण है, तो उसमें हमसे उससे जब जिंक ऑक्साइड का हम प्रयोग करेंगे तो उससे जो है ना जिंक पोषक तत्व की उपलब्धता हो जाती है। उसी तरह जो है आयरन ऑक्साइड के भी नैनोकण मिलते हैं, उसमें जो है ना बहुत मात्रा में आयरन जो है ना पोषक तत्व के रूप में जो है ना पौधे मौजूद होते हैं, और पौधे बहुत आसानी से ले लेते हैं। अच्छा। और इसका प्रत्यक्ष उसका जो है ना लाभ मिल पाता है। तो इस तरह से जैसे नैनो फास्फोरस है, नैनो नाइट्रोजन है, तो इस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो उसका उपयोग हम करने से क्या होता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से उसमें लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा भी अगर रोग हो जाए तो बहुत तरह के जो है ना जैसे कीटनाशक भी होते हैं, फुफंदी नाशक होते हैं, जीवाणु नाशक नैनोकण होते हैं, या विषाणु नाशक नैनोकण होते हैं, तो उसका उपयोग किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे कॉपर नैनोकण है या फुफंदी नाशक होते हैं, फुफंदी तरह के अगर रोग आवे तो उसको आसानी से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह जिंक ऑक्साइड भी है, यह भी फुफंदी नाशक में काम करते हैं। सिल्वर नैनोकण है, यह भी बहुत आसानी से इसमें काम करते हैं। इसी तरह जो है ना और भी बहुत सारे नैनोकण हैं जो बहुत आसानी से जो है ना रोगों का निवारण करते हैं, क्योंकि यह जो है ना जो नैनोकण बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होता है जो बहुत आसानी से जीवाणु विषाणु या कीटों का जो उसका जो कोशिका झिल्ली होती है बहुत आसानी से अंदर जाके उसको जो है ना उसकी जो क्रियाएं हैं रोक देती है और उसको नष्ट कर देता है।
0: तो दोस्तों आज हमने बात की कि किस तरीके से नैनो तकनीकी के इस्तेमाल से पौधों में रोग निवारण किया जा सकता है, और इस बारे में आज हमें जानकारी दी डॉक्टर अभिषेक कुमार ने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों को आप अपना कर आप अपनी फसलों को स्वस्थ रखेंगे, और साथ ही जिस तरीके से सर ने बताया कि प्रबंधन बहुत जरूरी होता है और प्रबंधन से भी जरूरी है कि रोकथाम करें, तो रोकथाम करें और नैनो तकनीकी को अपनाएं। और कुछ खास बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खास बात ये कि अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
3: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
4: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें ताकि नरमंजर आने में 15 दिन का

0: इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
1: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्टोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
1: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
0: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की शुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
1: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
0: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं, और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये हमारे, अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फॉस्फोरस पोटास

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू।

0: अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक

आहार दे और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं धान की सीधी बुआई पर खास चर्चा, और इस विषय को हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर एके मौर्य, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान केवी के सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि धान की सीधी बुआई की ज़रूरत क्यों पड़ी?
1: धान की सीधी बुआई की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा का पानी और सिंचाई दोनों के जो है, सिंचाई के पानी भी कम हो रहा है, बरसात भी हमारी अनियमित हो रही है। इस वजह से हमें जो है धान की सीधी बुआई की आवश्यकता पड़ी। साथ साथ क्या है कि अगर हम रोपाई भी, इससे अगर हम धान के अगर उत्पादन करते हैं जिसको हम लोग यहाँ रोपनी बोलते हैं, तो 1 किलो चावल पैदा करने में लगभग जो है हमको 5,000 लीटर पानी खर्चा होता है, जबकि अगर हम धान की सीधी बुवाई से करते हैं तो उसमें 1200 से 1400 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल पैदा करने में। अगर एक शब्द में इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके रोपाई के समय कुल धान का जो पानी लगता है उसका 1/3 पानी जो है कि रोपाई में ही लग जाता है, और वो पानी को हम धान की सीधी बुवाई करके उसकी बचत कर सकते हैं। दूसरा क्या है, धान के रोपाई में जो हमारे लेबर लगते हैं, जो हमारे श्रमिक लगते हैं, उसकी भी हम जो आज श्रमिक जो कमी होती जा रही उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। साथ साथ उसमें जो हमारा डीजल जलता है और या बिजली कहीं जो है उसकी बिजली जो है की खपत है, इसकी भी हम कमी कर सकते हैं पानी की बचत के रूप में और जुताई या कादों के रूप में। उसके अलावा इसके में अगर हम बात करें तो इसके उत्पादन खर्च में भी हमारी कमी आती है। अगर हम इसको देखें तो चाहे वो पानी के रूप में हो या उसमें हमें लेबर के रूप में हो या उसमें डीजल के रूप में हो, ये सब को अगर देखते हैं तो उसमें हमारे उत्पादन खर्चा में कमी आती है। साथ साथ जो है इसमें जो मीथेन गैस है उसका इमिशन भी कम होता है धान की सीधी बुवाई में अगर तुलना की जाए तो रुपाई से। रुपाई विधि में इमिशन गैस की ज़्यादा इमिशन होता है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो इस तरह से हमें जो है धान की सीधी बुवाई पे ही आवश्यकता है कि हम लोग धान की सीधी बुवाई अब आजकल बढ़ चढ़ के आगे को बढ़ाएं।
0: जी, और ये तो बातें हुई कि क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इससे फ़ायदे हैं हमें, और धान की सीधी बुवाई के लिए खेत किस प्रकार होना चाहिए, भूमि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, कौन से प्रभेदों का चयन करना चाहिए, डॉक्टर साहब इसकी?
1: अच्छा, इस चीज़ जो एक उसमें और क्या आवश्यकता पड़ सकती है थोड़ा और बता दें। अगर हम धान की अगर सीधी बुवाई करते हैं तो हमारी जो है फसल रोपाई की तुलना में 7 से 10 दिन पहले कट जाएगी, जिससे हमें रबी फसल जो है हम टाइमली से लगा पाएंगे। और अगर बात करें इसकी भूमि की तैयारी तो या उसका किस तरह खेत होना चाहिए, पहले तो खेत जो है हमारा भुरभुरा होना चाहिए, खेत जुताई करके उसमें करें। दूसरा क्या, खेत समतल होना चाहिए। किसान भाई हमारे जो खेत तो समतल करते हैं लेकिन उसको जो है अगर मैनुअली अगर हम समतल करते हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए इस विधि के लिए अगर हम अच्छी खेती करना है तो लेजर लैंड लेवलर से खेती मतलब खेत समतल करके ही करें, ताकि जो है पानी का एक समुचित प्रयोग हो, एक समान पूरे खेत में पानी लगा रहे और उसके साथ साथ जो है हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा और एट लास्ट हमारी पैदावार अच्छी होगी और उसमें हमारा खाद का या अन्य चीज़ों का सही उपयोग हो पाएगा। इसीलिए जो है हमको खेत का समतलीकरण लेजर लेवल से करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें इसमें धान की सीधी बुवाई के लिए ऐसी प्रभेदों का चयन करना चाहिए जिसका शुरुआती दौर में बढ़वार अच्छी हो, उसका ओज अच्छा हो और उसमें खरपतवार प्रतिस्पर्धी हो और उसकी जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, ऐसी प्रभेदों का चयन करना चाहिए। अगर हम बात करें लंबी अवधि वाली प्रभेदों का तो उसमें अगर हम बात करें तो अभी सबौर संपन्न हमारे यहाँ अच्छी प्रजाति है, सबौर संपन्न लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है ये सांभा मंसूरी लगा सकते हैं, MT7023 लगा सकते हैं, राजेंद्र मंसूरी लगा सकते हैं और स्वर्णा सबौन लगा सकते हैं। ये लंबी वाली प्रभेद हैं। और उसके अलावा जो है हमारे जो कम अवधि वाले प्रभेद हैं उसमें राजेंद्र श्वेता लगा सकते हैं, उसके बाद MT1001 लगा सकते हैं, उसके अलावा जो है ये सब और श्री लगा सकते हैं, इन वराइटियों लगा सकते हैं। लेकिन कम अवधि वाले के लिए जो है हमारा सहभागी धान है, सब और हर्षित हो गया, उसके बाद सब और दीप हो गया, इन प्रभेदों का हम लोग चयन कर सकते हैं जिसका जो है हमारा शुरुआती दौर में बढ़वार उसका अच्छा हो। लगाने के समय में मुख्य रूप से हम लोग ध्यान ये देते हैं कि हमारा जो है मानसून आने से पहले इन फसलों की बुवाई हो जाए, इन मतलब कि धान की सीधी बुवाई की हम बुवाई कर ले जाएँ मानसून आने के पहले पहले। अगर मानसून आ गया है तो हम लोग सही ढंग से जो है धान की सीधी बुवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये लंबी अवधि का अगर है तो उसको हम 20 मई से बुवाई शुरू कर देते हैं और 20 जून तक उसकी बुवाई हमको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मानसून के पहले पहले। उसी तरह से अगर हमारा मध्यम अवधि वाले प्रभेद हैं जो हमारे 130 से 135 दिन वाले हैं, 1 जून से और 30 जून के बीच पूरा कर लेना है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मानसून आने के पहले हमको पूरा कर लेना है। अगर कम अवधि वाले हैं जो 115 से 120 दिन वाले हैं, वो भी जो है हमको जून के मध्य में से लास्ट तक जो है मौसम को देखते हुए उसकी में बुवाई कर लेना है। तो इस तरह हम अपने जो है समय पर बुवाई करके और अच्छी उपज ले सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, धान की सीधी बुवाई में विधियां कौन कौन सी आती हैं?
1: धान की सीधी बुवाई में मुख्य रूप से हम लोग 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो जैसे कि अगर सूखा विधि की बात करें तो उसमें 2 विधियाँ हैं, एक नमी विधि, दूसरा सूखा विधि। और अगर हम गीली विधि की बात करें जिसमें हम कादो करके अगर बरसात अगर शुरू हो गई, अगर हम इस शब्द में कहें कि अगर बरसात शुरू हो गई तो स्टिपनी के लिए भी एक दूसरी विधि रखी गई है जिसको हम लोग ड्रम सीडर से बुवाई करते हैं। तो नम विधि क्या है जिसको हम लोग बत्तर बोलते हैं। नम विधि में खेत की मतलब कि पहले सिंचाई कर लेंगे, उसकी तैयारी कर लें और जब हम बुवाई करें उस समय एक अच्छी नमी होना चाहिए ताकि जनरेशन एक अच्छा हो जाए, और बुवाई के लिए हम लोग मल्टी क्रॉप प्लांटर का प्रयोग करेंगे। और सूखी विधि में क्या है कि उस समय जो है खेत में नमी नहीं होती है, सूख हम बुवाई कर देते हैं उसके बाद में सिंचाई करते हैं या मौसम का इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो, तो बारिश के उपरांत जो है वो जम जाएगा। तो सूखा विधि यह है, सूखा विधि में जब भी बुवाई करेंगे उसमें नमी बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम सूखा हम करेंगे और बुवाई के बाद में हम सिंचाई करेंगे तब उसका जो है जमा होगा, उसमें जर्मिनेशन होगा। इस तरह से हम लोग अपने दोनों जो है सूखा विधि की 2 तरीका है, जिसमें नम विधि जिसको बत्तर बोलते हैं, दूसरा सूखा विधि कि जो एकदम सूखा बोते हैं उससे बुवाई का। लेकिन बेहतर होगा किसानों के लिए कि एक नम विधि जिसको बत्तर बोलते हैं उसी विधि का ही हम लोग प्रयोग करें, वो किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसीलिए कहा जाता है धान की सीधी बुवाई वहाँ करना चाहिए जहाँ पर 3 से 4 पानी सिंचाई की आवश्यकता के लिए पानी उपलब्ध हो, इसीलिए नम विधि ही अच्छी है बुवाई के लिए। अगर बरसात अगर शुरू हो गई है उस कंडीशन में अगर मानसून आ गया है हमको धान की सीधी बुवाई करना है तो जैसा कि हम बताएं कि एक स्टिपनी के रूप में हमको ड्रम सीडर से बुवाई करना चाहिए। ड्रम सीडर में क्या है कि एक जो है डिब्बा बना हुआ एक मशीन छोटी से बहुत छोटी मशीन है, वो आदमी एक किसान अपने आराम से हाथ से खींचते हुए चला जाएगा और औसतन 1 एकड़ बुवाई में 30 से 35 मिनट लगता है और बुवाई कर देंगे। उसमें क्या है बीज को हल्का सी स्प्राउटेड करके और हल्का कादो करके बुवाई कर देंगे, एक स्थान पे 3 से 4 बीज गिरते चला जाएगा और लाइन में बुवाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग उसमें कर लेंगे।
0: जी और इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, उर्वरक प्रबंधन की और सिंचाई कैसे करें, उसकी भी जानकारी दें डॉक्टर साहब।
1: धान की सीधी बुवाई में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है खरपतवार प्रबंधन। जिन किसानों ने अगर खरपतवार का अच्छे से अगर नियंत्रण कर लिया है तो उनको पैदावार लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें बहुत ही लाभ उनको मिलेगा। जो किसान कर भी रहे हैं वो ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। जैसा कि अब बहुत सारी परियोजनाओं के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सबौर ने इस तरह की जो है धान की सीधी बुवाई शुरू किया है, किसान उसका लाभ ले रहे हैं। इसमें धान की सीधी बुवाई के बाद अगर हम ये नम विधि से अगर लगाते हैं और मानसून आने के पहले अगर लगाते हैं तो बोने के तुरंत बाद तो हम पेंडीमेथ्रीन का जो है 1 हेक्टेयर में 1 किलो AI अगर 30% जैसे आ रहा है तो 1 हेक्टेयर में 3.25 लीटर का छिड़काव करेंगे बोने के तुरंत बाद। लेकिन ये मानसून आने के पहले पहले करने की आवश्यकता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर हम इस दवा का छिड़काव कर दिए हैं और मानसून आ गया या सिंचाई कर दिए हैं तो ये पेंडीमेथ्रीन जनरेशन पर बुरा असर डालेगा। इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि जो है धान की सीधी बुवाई में प्री इमरजेंस के रूप में हम खरपतवार नाशी का प्रयोग न करके, शाकनाशी का प्रयोग न करके, हम बुवाई के 15 से 18 दिन पर 2 दवाओं का प्रयोग करें। 2 हमारे जो हर्बिसाइड है उसका प्रयोग करें, एक है बिक्सपायरी बैग सोडियम, जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़े पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके लिए बिक्सपायरी बैग सोडियम जो बाज़ार में 10% उपलब्ध है 1 एकड़ में 100 ml का छिड़काव करें। अगर खेत में अगर मोथा है तो मोथा के लिए भी जो है हम एक आता है पारजो सल्फ्यूरान, बाजार में कई नाम से आते हैं, और उसको जो है ये भी 10% का आता है, एक एकड़ में 80 से 100 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। अगर चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले साथ में अगर मोथा ये सब घास अगर मिली हुई है तो दोनों दवा को बिस्पायरीबेग सोडियम और पायरेजो सल्फ्यूरान को एक ही पानी के टैंक में मिलाकर साथ में स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ड्रम सीडर्स भी लगाए हैं, ड्रम सीडर में तो बुवाई के समय कोई भी दवा बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर बुवाई के समय अगर पेंडामेथ्रिन या कोई गलती से इसमें दूसरी भी दवा का डालता फिर इमरजेंसी के रूप में तो जर्मिनेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें बुवाई के 15 से 18 दिन बाद ये बिस्पायरीबेग सोडियम और पायराजो सल्फ्यूरान खरपतवार के देखते हुए इसको छिड़काव कर देंगे 15 से 18 दिन पर, पानी अपनी आवश्यकता अनुसार। सिंचाई जैसा कि कहे धान की सीधी बुवाई में किसान के पास में 3 से 4 सिंचाई की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। एक तो बुवाई के पहले जो नम विधि जिसमें हम बत्तर बोलते हैं, बुवाई के पहले एक सिंचाई करके हम खेत की तैयारी कर लेंगे, फिर उचित नमी पर अच्छी नमी पर हम बुवाई करेंगे। उसके बाद जैसे जर्मिनेशन हो गया खेत को देखते हुए 8 से 10 दिन पर फिर दूसरी सिंचाई कर देंगे। इस तरह मौसम को देखते हुए हमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता शुरू में पड़ सकती है और उसके अलावा भी बाद में हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई देते जाएंगे। रही बात हम कितना खाद डालें, खाद में अगर हम ऊपरी ज़मीन वाले हैं और कम अवधि वाले प्रभेद हैं तो उसमें हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उस पर प्रयोग करेंगे। अगर हमारे उन्नतशील और अधिक उपज देने वाली प्रभेद है तो उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास का हम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। लेकिन जो हमारे सुगंधित धान है उसके लिए 80 किलोग्राम जो उसमें भी जो सुगंधित में जो बौनी वाले हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। उस और सुगंधित में जो लंबी किस्म वाले हैं उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम हमारा पर हेक्टेयर की दर से पोटास का व्यवहार करें। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि अगर हम धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं तो एनपीके के माध्यम से हम फर्टिलाइजर को देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम डीएपी से दे रहे हैं तो पोटास की मात्रा को जो रिकमेंडेड डोज है, जो अनुशंसित मात्रा है, उसको खेत की तैयारी के समय खेत में पहले मिला दें तब हम बुवाई करें। अगर बाद में पोटास मशीन से, क्योंकि वो मशीन में चिपक जाएगी और उससे बुवाई नहीं हो पाएगी, तो ये ध्यान रखें। बाकी खाद की हम जैसे और भी रुपाई की विधि में देते हैं उसी तरह से खाद देते रहेंगे। अच्छा, धान की सीधी बुवाई में कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो इसके लिए क्या है कि खेत का समतलीकरण होना बहुत ज़रूरी है, समय पर उसका बुवाई कर लें। बुवाई 20 मई से मानसून आने के पहले पहले हम उसकी बुवाई कर लें और उसमें खरपतवार नाशी का जो शाक नाशी है उसमें हम समय पर जो बिस्पायरीबेग सोडियम है, पायराजो सल्फ्यूरान है, उसको समय पर उचित मात्रा में उसको हम प्रयोग कर लें ताकि, और ये भी खरपतवार नाशी के समय ध्यान दें मौसम को देखते हुए कि ताकि जो है मौसम छिड़काव के 6 घंटे से 8 घंटे तक बरसात ना हो और उसमें खरपतवार भी पानी से डूबा ना हो, घास हमारी भीगी ना हो, उस कंडीशन पे हमको जो है छिड़काव करना है। ये नहीं कि हमारी घास जो खरपतवार बरसात होकर तुरंत निकला है पूरा पौधा पानी भीगा हुआ है, उस कंडीशन में उस दशा में अगर हम छिड़काव करेंगे तो खरपतवार अच्छे से नियंत्रण नहीं आएंगे। और अगर उसमें खरपतवार अगर पूरा पानी अगर डूबा हुआ है तो भी हमारी दवा जो है उसमें प्रयोग नहीं होगी, मतलब अच्छे से प्रयोग नहीं होगा। इस तरह करेंगे तो हमारी पैदावार जो है अच्छी होगी, साथ साथ एक एकड़ में 4 से 5 हज़ार रुपये जरूर नहीं 6 हज़ार रुपये की बचत होगी, मतलब की तुलना में रुपाई की अपेक्षा। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस विशेष जानकारी के लिए। और हमारे श्रोताओं से आशा करते हैं कि आप इस वार्ता को सुनकर इसका लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं कोदो मिलेट के बारे में। कोदो मिलेट जो कि काफी फायदेमंद होता है किसान भाई बहनों के लिए भी और जो उसका उपयोग करते हैं उनके लिए भी। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कोदो मिलेट की खेती की जाती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: सर, सबसे पहला सवाल कि क्या कोदो एक जलवायु अनुकूल फसल है?
8: ये कोदो बिल्कुल ही जलवायु अनुकूल C4 क्रॉप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्री अन्न फसलों में कोदो मिलेट्स भी एक महत्वपूर्ण श्री अन्न या पोषक अनाज अथवा मोटे अनाज की फसल है। ये सभी मोटे अनाज या कंदन फसलें या पोषक अनाज या फिर हम श्री अन्न की फसलें कहें, ये सभी के सभी जलवायु अनुकूल है, क्योंकि इन सबको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। सुखाड़ की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन दे जाती हैं और साथ ही साथ कम उर्वर जमीन में भी इनका उत्पादन मिल जाता है। उच्च तापमान पर भी ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक लेवल पर जल की कमी हो रही है, सुखाड़ की स्थिति आ रही है, तापमान का बढ़ना आप लोग जान ही रहे हैं, तो ऐसे ही समय में श्री अन्न फसलों का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों सिचुएशन साथ साथ रहता है। साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्वानुमान दिया गया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात विगत वर्षों की तुलना में कम हो रही है और अनुमान है कि इस वर्ष 40% तक बरसात में कमी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ये जो श्री यानी कि विभिन्न फसलें हैं सावा कोदो कौनी चीना ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और निश्चित तौर पे किसान भाइयों के लिए एक लाभ की लाभकारी फसल हैं।
7: जी सर, अगर हम अब बात करें कि कैसे कोदो मिलेट की खेती करनी चाहिए और कब करनी चाहिए।
8: देखिए कोदो मिलेट की खेती हमारे किसान भाई लोग बहुत परंपरागत तरीके से बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। हम 1960 के बाद ही गेहूं चावल पर निर्भरता डिपेंड किए हैं, तो ये कोई नई फसल नहीं है, ये प्राचीन फसल है। लेकिन चूंकि गेहूं और चावल की उत्पादकता ज़्यादा मिलने से ये सभी फसलें विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि बरसात में कमी हर जगह होने लगी है, हर रीजन में बरसात कमी होने लगी है, तो वहाँ इन फसलों का महत्व बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोदो मिलेट को अपने बिहार राज्य की बात करें तो जितने भी किसान भाइयों की ऊपरी ज़मीन है जहाँ जल जमाव नहीं हो पाता है ऊपरी और मध्य ज़मीन में, हम कोदो मिलेट को बरसात शुरू होने से या यो कहें कि 15 जून से लेकर के अगर हम 15 जुलाई के बीच में करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद खेती साबित होती है। इसके लिए हमें खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार 2 से 3 बार जुताई किया हुआ खेत ज़्यादा सही रहता है। हालांकि आजकल हम लोग इन सभी मिलेट फसलों को जीरो टिल विधि से भी बुआई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो किसान भाइयों के लिए अपना ऑप्शन है, जीरो टिल मशीन है तो जीरो टिल से भी बुआई कर सकते हैं। अदरवाइज 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाने के बाद खेत तैयार हो जाता है, उसमें खाद की मात्रा अभी जो हम बताएंगे उसको डाल करके इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी समय मिले कर लेना चाहिए। बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि जितने भी हमारी ये मिलेट की फसलें हैं इनको धान की कंपेयर में जस्ट आधी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। कोदो मिलेट को भी कहें तो किसान भाई लोग आप अपने खेत में जितना धान के खेत में खाद देते हैं उसका जस्ट आधा देना है इसमें, आधे खाद में और बिना सिंचाई के भी ये खरीफ में आराम से फसल आपको प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है कोदो मिलेट। तो अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत पड़ती है। अब जो किसान भाई लोग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एक हम मोटी मोटा बता दें कि आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बोरा यूरिया 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और एक बोरा DAP आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें, जबकि नाइट्रोजन यानी जिसको हम यूरिया के रूप में दे रहे हैं हमने बताया एक बोरा यूरिया पर्याप्त होता है जो 45 किलोग्राम की होती है, तो यूरिया की मात्रा 2 बार में देना है। पहला बुआई के 20 से 22 दिन पर जब इसमें कल्ले यानी टिलर निकलना शुरू करते हैं, दूसरा बुआई के करीब 55 से 60 दिन पर जब इसमें बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं। क्योंकि कोदो मिलेट जनरली 100 से 105 दिन की फसल है तो नाइट्रोजन को लगभग कम से कम 2 बार में देना आवश्यक हो जाता है जिससे कि नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो जितना आप अपने धान में खाद देते हैं उर्वरक देते हैं उसका लगभग आधा मात्रा ही इसमें देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसका बीज दर का, तो प्रति एकड़ की बात करें तो केवल 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है प्रति एकड़ के लिए। बुआई की विधि की बात किया जाए तो इसको कतारों में अगर बुआई किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कतार से कतार की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं अर्थात 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि बीज की गहराई उथली रहे, जैसे हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो 1 इंच से कम ही गहराई रखते हैं, मतलब गहराई किसी भी कंडीशन में 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा जमाव होता है। तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना होता है जब हम मशीन से बुआई करते हैं किसी कारणवश हमारा सीड ड्रिल 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बो रहा है तो दिक्कत होता है, उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि जब हम सीड ड्रिल से या जीरो ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हों तो हमारा 10% बीज जमीन पर दिखना चाहिए।
9: अब 10% बीज अगर जमीन पे इक्का दुक्का दिख रहा है तो इसका मतलब ही है कि आपका गहराई सही है। अगर कोई भी बीज जमीन पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप गहरा बो दिए हैं, फिर आपका जमाव नहीं होगा। तो इसलिए एक विशेष सावधानी देना है कि गहराई 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रखें, किसी भी कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न बोएं। अब बात आती है इसमें
7: उत्तम प्रजातियों की। जी सर,
9: क्योंकि हम अगर परंपरागत प्रजातियां लेते हैं तो उसका उत्पादन कम है। कोदो की अभी हमारी यूनिवर्सिटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय अभी हम लोग के पास कोई अपनी प्रजाति नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर की प्रजातियों को पिछले 3 वर्षों में यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें इंदिरा कोदो एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है। समझ लीजिए कि इंदिरा कोदो वन लगभग 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 12 कुंटल दाने आपको प्रति एकड़ मिल जाते हैं मात्र 105 दिनों में। दूसरी प्रजाति है जेके 155 भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रजाति है और लगभग यह भी 11 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है, करीब 105 से 110 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी प्रजाति है जेके 439 और अगला है जेके 65। इन सब प्रजातियों का भी उत्पादन करीब 10 कुंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं, इनका ही सिलेक्शन करें। तो इसमें इंदिरा कोदो एक अथवा जेके 155, जेके 65, इन प्रजातियों को का चयन कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी इच्छुक हैं, वो अभी हम 20 किसानों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क 2-2 केजी बीज डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर इंदिरा कोदो एक और जेके 155 का यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करा देंगे। आप इसको अपने खेतों पे लगाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करें।
7: जी सर, अगर अब हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार से किया जाए?
9: कोदो देखिए एक बहुत ही मतलब खरपतवार के प्रति सेंसिटिव फसल है। अगर हम बुआई के 15 से 35 दिन के बीच तक खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं, उत्पादन में 50-60% तक की गिरावट हो जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडी मिथिलीन का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडी मिथिलीन का प्रति हेक्टेयर 500 से 800 लीटर पानी में आवश्यकता अनुसार घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अब सक्रिय तत्व का मतलब है कि 30% का आता है, तो बाजार का प्रोडक्ट जो है 3.3 लीटर हो जाता है। तो आप किसान भाइयों के शब्दों में कहें तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन जो बाजार का प्रोडक्ट है वो पर्याप्त हो जाता है। आवश्यकता अनुसार आप 400 लीटर पानी में घोल करके, या आप पानी कम भी कर सकते हैं, 200 लीटर में भी घोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ड्रोन से करेंगे तो मात्र 50 लीटर पानी में ही हो जाएगा, लेकिन आपका दवा जो है प्रति एकड़ 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन पड़ना चाहिए बाजार का प्रोडक्ट। तो इसे बुआई करके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए खेत में, इसे अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D 58% का रसायन लिया जा सकता है, जिसका लगभग 25 ml दवा प्रति टंकी पानी में ले लिया जाए, या यूं कहे 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप व्यवहार करें तो आ जाता है करीब 24 से 25 ml प्रति टंकी। टंकी जो 15 लीटर की होती है उसे करिए, प्रति एकड़ लगभग आपको 10 टंकी पानी देना जरूरी हो जाता है। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं, फील्ड में अन्य प्रकार के खरपतवार जो बच जाते हैं उसको हाथों द्वारा निराई करके समाप्त किया जा सकता है।
7: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाई बहनों को 2 किलो बीज मुफ्त में दे रहे हैं,
9: जी
7: तो
9: हाँ।
7: इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए।
9: इसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। तो इस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के तहत हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें हम जो अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं का बीज किसान भाइयों को देंगे तो जो जेके 155 है उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, इंदिरा कोदो 1 का बीज भी उपलब्ध है, तो लगभग 20-25 किसानों को भी हम फ्री में जो पहले आएंगे पहले ले जाएंगे 2 किलो बीज हम दे देंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड किसान हैं वो बिहार सरकार के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी बीज प्राप्त कर लेंगे, वहां भी फ्री में बीज मिल जाएगा। और वहां एक सुविधा और है, बिहार सरकार मिलेट उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपया प्रति एकड़ उनके खाते में इनपुट के रूप में पैसा दे रही है और 2,000 रुपये का ऑलरेडी इनपुट दे देती है। तो इस प्रकार देखा जाता है बिहार सरकार प्रति एकड़ आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेट उगाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दे देती है, जिससे आपका इसके प्रति रुझान बढ़े, तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।
7: सर किसान भाई बहन क्या कैसे मतलब बीज प्राप्त कर सकते हैं वो डायरेक्ट यहाँ विश्वविद्यालय
9: में आकर के, मेरे यहाँ भी आकर के बात कर सकते हैं या डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म में जाकर के वहाँ से भी बीज ले सकते हैं।
7: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई कोदो मिलेट के बारे में। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
10: उन्नत कृषि
11: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
12: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा,

0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: भागीदारी का सुख। उस शाम जब असलम और उसका प्रिय मित्र अर्जुन स्कूल से वापस लौट रहे थे तब उनके चेहरों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उस दिन स्कूल में आई महिला के भाषण से वे बहुत प्रभावित हुए थे। जिस संस्था से वो महिला आई थी उसका नाम था चलता फिरता स्कूल। वे दोनों बड़े जोश के साथ उस महिला द्वारा कही गई बातों पर चर्चा कर रहे थे और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संगठन का स्वयंसेवक बनने की ठान ली।

0: महिला ने उनका ध्यान शहर में बसने वाले गरीबों के दुर्दशा की ओर दिलवाया था। वे ये भी जानना चाहती थी कि क्या उस पाठशाला के छात्र और छात्राएं गरीबों के कठिन जीवन से परिचित हैं। महिला ने शहर में काम कर रहे मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन किया। ये मजदूर विभिन्न नगरों से रोजी रोटी की खोज में शहर आए थे और दैनिक मजदूरी पर कार्य करते थे, जिसका परिणाम ये था कि अगर किसी दिन उनका स्वास्थ्य ठीक ना होता और वे काम पर ना जाते तो उन्हें मजदूरी ना मिलती। पुरुष प्रायः कारीगरी का काम करते थे, जैसे मिस्त्री, बढ़ईगिरी, लोहा जोड़ने, फिटिंग आदि का काम, जबकि स्त्रियां ईंटें, सीमेंट, मिट्टी आदि ढोने का काम करती थीं। उनके बच्चे उन्हीं के साथ एक जगह से दूसरी जगह सदा घूमते रहते थे। इस कारण उन्हें ठीक प्रकार की शिक्षा ना मिल पाती। वे आपस में खूब खेलते, झगड़ते और अपने माता पिता की सहायता भी करते। उस महिला ने बताया कि ये बड़े दुख की बात थी कि उन मासूम आंखों वाले बच्चों को पाठशाला जाने के बजाय मजदूरी ही करनी पड़ती, और इसी कारण कुछ व्यक्तियों ने आपस में मिलकर स्वयं सेवकों की सहायता से इन बच्चों के लिए एक मकान में कक्षाएं लगानी प्रारंभ की, और जो भी थोड़ी बहुत चीजें उनके पास थी उन्हीं से वे काम चलाने लगे। धीरे धीरे उनके माता पिता भी इन कक्षाओं में रुचि लेने लगे और उन्होंने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की मांग की, और इसी कारण ये महिला विभिन्न पाठशालाओं में जाकर शिक्षकों तथा छात्रों के बीच से स्वयं सेवक इकट्ठे कर रही थी। ये सब सुनने के बाद असलम तथा अर्जुन ने ये निश्चय किया कि वे अवश्य इस कार्य में हाथ बटाएंगे। अगले शनिवार को अपनी अपनी माँ से अनुमति लेकर स्कूल के बाद वे इस महिला से मिलने उसके निवास स्थान गए। वहां पहुंचकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने अपने भूगोल के अध्यापक श्री माधव को वहां पाया। उन्होंने वो काम चलाओ स्कूल देखा और उन दोनों को अपनी आंखों तथा कानों पर विश्वास ही ना हुआ। एक कमरे में 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे छोटे छोटे समूहों में जमीन पर बैठे थे। कुछ बच्चों के हाथों में स्लेटें और कुछ के हाथों में पुरानी कॉपियां थी। वे चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे और सीखने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ते थे। माधव साहब बहुत ही योग्य और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक थे। वे कुछ बच्चों को कक्षा से बाहर लेकर आए और चित्र बनाने में उनकी सहायता करने लगे। अर्जुन उनके साथ हो लिया। असलम ने एक कोने में कुछ लड़कों को जमा किया और उन्हें गणित सिखाने में लग गया। उन लोगों को पता ही ना चला कि कैसे 3 घंटे बीत गए। जब वे घर लौटे तो उनके चेहरे पर आत्मसंतोष की एक चमक थी। जीवन में पहली बार वे उन अभावग्रस्त बच्चों से मिले थे और जो कुछ भी उन्हें आता था उनके पास था, उसे बांटने में कितना अच्छा लगा था। अब वे हर शनिवार जाने लगे और जल्दी ही ये दिन उनके लिए सप्ताह के सब दिनों में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। उन बच्चों के जीवन के साथ उनके संबंध इतने अटूट हो गए कि वे उनके जीवन को हर तरह से सुंदर बनाने की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने अपने अध्यापक माधव साहब से अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा की और मुख्य अध्यापक से ये अनुमति मांगी कि वे पाठशाला के अन्य छात्रों को इन निर्धन बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में समझा सकें। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे पैसे और कपड़े एकत्र किए। इन पैसों से उन्होंने बच्चों के लिए मिठाइयाँ और छोटे छोटे उपहार खरीदे और 26 जनवरी के दिन ये सभी सामान ले जाकर बच्चों में बांट दिया। वे अपने साथ उस दिन कुछ बड़े बच्चों को भी लेकर गए थे, जिन्होंने उन्हें नए गाने और नए खेल भी सिखाए। बच्चों ने इससे भागीदारी का अर्थ समझा। इसका मतलब केवल जरूरतमंद बच्चों को पैसा, कपड़े, किताबें आदि देना ही नहीं था, अपितु अपना समय, अपनी शक्ति, अपना साथ और अपना स्नेह प्रदान करना भी था। बात कितनी विचित्र, किंतु सच है कि हम सिर्फ तभी एक तात्कालिकता की भावना से कार्य करते हैं जब कोई स्थिति या बात हमारे मर्म को छूती है। यद्यपि हम प्रतिदिन अपने चारों ओर गरीबों को देखते हैं, लेकिन शायद हम ये मान लेते हैं कि यही उनका भाग्य है। कभी कभी हम उनके दुखों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे मन में समाज के प्रति और उसकी समस्याओं के प्रति चिंता नहीं होती। क्या शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर, डिग्री हासिल कर, अपने चारों ओर के लोगों से पूरी तरह से कटकर नौकरी प्राप्त कर सिर्फ अपना जीवन संवारना ही है, अथवा इसमें हर व्यक्ति के प्रति आदर हो, भले ही वो व्यक्ति गरीब, दुखी, अपाहिज, भिखारी या अभावग्रस्त ही क्यों ना हो। इन बातों पर सोचो और ये जानने का प्रयत्न करो कि स्कूली शिक्षा में इन सब को कैसे लाया जा सकता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा अवसर मिला है कि तुम ऐसे लोगों की चिंता करो जो अभावग्रस्त हैं? क्या हम लोग उन तरीकों की चर्चा कर सकते हैं जिनके जरिए हम दूसरे लोगों की जिंदगी को समृद्ध करने में योगदान कर सकते हैं?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
1: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है एफएम ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज जब फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनीता मैम। मैं आपको बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं केवीके सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, मौसमी फल के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे बड़ी बात तो है, जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
0: जी।
1: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, और लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है, तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते हैं। फल का विविध तरह का परिरक्षित उत्पाद, जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है, और ग्रामीण महिलाएँ बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकती है। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूंकि मौसम में सस्ता होता है, वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं, और विभिन्न तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाजार में बेच करके उसका उपयोग करके फायदा ले सकती।
0: जी जी मैडम, अब बात आती है फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जाना, तो क्यों कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
1: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है, जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विविध तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए, और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, ये सब बनाने में किया जाता है। लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पर हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार, चटनी, सॉस, ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस, चटनी, स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आता है पोटासियम मेटाबासल्फाइट, इसका जो भी हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबासल्फाइट का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पर हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
0: कर सकते हैं। जी, तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत ज़रूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है इसके लिए जो हम जिसमें हम भंडारण इसका करेंगे, उस बोतल को उसको बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उन बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में, जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार, वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके और ढक्कन हटा कर उसमें ढक्कन डाल देते हैं और ढक्कन सहित उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं। फिर उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल शील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग एक इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में एक इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटावेसल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपका उत्पाद उसको बार बार ना खोलें और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली और सुखी रहना चाहिए। और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल करें।
0: जी मैम, अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के जेली भी बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी।
1: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं वो अमरूद की जेली है और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल, वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए। उसको थोड़ा सा काट के यदि हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं। फिर इसमें जो बर्तन में हम उसको उबाल रहे हैं उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीज जाता है पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
0: मतलब पेस्ट बन जाता है।
1: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें अच्छा। पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक। उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में
0: जी।
1: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए चाहिए कि रस जितने जितना देर लगे उतना देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
0: अच्छा,
1: वो जनरली से गांव में कुछ मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और जो कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमृत के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा। ठीक है, और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए। ठीक है, उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नापने की कितना रस है, यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए, उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्प्रिट डाल देते हैं, रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं, गिरा हुआ जो उसमें अवक्षेप देखेंगे, जो अवक्षेप बना है यदि अवक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं, यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसाती अमरूद का समय है तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500-600 ग्राम चीनी हम लोग 1 लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500-600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरुद कजेली सही जमेगा। ठीक है, इसके बाद आप हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस और एक थर्मामीटर मिलता है उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं, जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुँच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच गया है, तो 4-5 ग्राम सैट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106-107 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं, और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए, यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा तो इसका मतलब वो रेडी है, यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए तो भी हमारा जेली तैयार हो गया, तो इस तरह से हम लोग ये हम लोग जांच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जांच करें, दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब, उस वक्त और रस जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसको दबाए नहीं, ये 2 चीज़ का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है, और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे, मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है, मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं, इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है।
0: जी,
1: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो उसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा उस पल्प से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में ये बना सकते हैं, और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी, तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही मैडम ने बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो सुनो एक

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बहुत सारे दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में, तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर RN गुप्ता। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
5: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं, तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है, तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती ही है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
4: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा।
5: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए, कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं, और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो। अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व का जो प्रबंधन की समस्या हो, उससे ये कमी हो जाती है, तो ये भूमि समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है। इसलिए हमारा जो ज़मीन है, जो खेत है, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जमने की समस्या ये ना हो। तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें। दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
4: जी।
5: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना ज़रूरी है, ताकि जो है इसमें रोग की समस्या, कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है, तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
4: जी।
5: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं, गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 केजी प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं, जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
4: जी।
5: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणु या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजिम है जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है जो वीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर उसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुँचता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
4: जी।
5: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है 2 क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने के समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो 2 कम से कम आवश्यक रूप से करें ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने जो दाल बने उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है कुछ कुछ बीमारियां लगती है जो फली मक्खी है जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमीडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी जो अवस्था निगरानी करना जरूरी है और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरीपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाज़ार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं, और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणुजनित रोग होती है जैसे लीफ क्रिंकल रोग, जिसमें पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है और इसमें बहुत कम फलियां लगती है और यह पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होते हैं, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियां जो है फफूंद जनक होती है और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्राय सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन स्विंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियाँ कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं, पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सरकोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियां जो है समय से पहले ही झड़ जाती है, इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है, मार्केट में सांप के नाम से भी मिलती है। तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है, चूर्णी रोग बोलते हैं जिसको, पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है, ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
4: जी।
5: तो इस तरह का ये बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियां हैं जो पत्तियों पे होती हैं उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियां जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जेंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और कालांतर में पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
4: जी।
5: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं छिड़काव करते हैं तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं और 1 महीने 3 दिन के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
4: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्ध खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?

0: की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
1: तो मैम, खरीफ प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फुर पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 2 दिनों तक दक्षिण पश्चिम हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हैं, तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं।

0: इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्म सम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्म सम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे, तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी, तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था, उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है, तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। First.
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज।
1: क्या आप जानते हैं कि
3: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
2: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता

0: है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
8: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
11: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि।
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत, इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
13: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
14: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
13: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
14: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं, और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं। तो इसको कतारों में लगाते हैं, जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं। परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
13: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
14: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटेनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटेनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
13: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
14: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पर निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
13: मैम अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
14: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
13: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
14: धन्यवाद उमा।
13: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ाव लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
6: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40 रुपए 30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
6: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
5: अच्छा।
6: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है, तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैट इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूजर है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
5: जी।
6: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
5: परवल में,
6: हाँ, परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सबसे बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
5: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में, तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है, और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
6: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ, देखिए परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीना में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए, और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पे तैयार करिए या 2x1 मीटर पे तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी लेकर के आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डाल डालिए, 2 ग्राम एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है

0: लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
1: जी।
0: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए और हल्का सा उसमें फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का, ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कल्ले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है, और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको, तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा, और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोट्स उसमें 7-8 नोट आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए
1: जी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थीं यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई खेती के, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
0: देखिए परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियां तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियां इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्रॉप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है, तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियाँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है, तो इस तरह की ये प्रजातियां हैं, नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है, तो ये सब प्रजातियां हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
1: जी।
0: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं।

0: जी, तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब, कि किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
1: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके। 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है, हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे, और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
0: जी।
1: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है, आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो है नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है, और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है, फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
0: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं, और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
1: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है, और वह क्यों होती है किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पे आता है और मादा फूल अलग पौधे पे आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
0: जी,
1: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके से संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है तो वो, और मेल अट्रैक्टेंट होता है वो, तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
0: अच्छा,
1: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता वहीं वो मर जाता। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है
0: जी।
1: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें
0: जी। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है, यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: बिना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गाँव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्बा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
3: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
4: सबसे साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
5: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
4: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
5: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
4: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
5: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
4: कैसे बना हिमालय।
5: आज रिद्धि,
4: नव्या
5: और रिदित
4: सब बहुत खुश है
5: क्योंकि उनका परिवार
4: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
6: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
7: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
6: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
7: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
6: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
7: बहुत मजा आएगा।
5: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
4: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
5: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
4: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
5: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
4: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
6: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
5: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
6: क्या 20 करोड़ साल?
5: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
6: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
5: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
7: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
6: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
5: तुम बताओ।
6: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
5: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
6: टैथिस महासागर।
5: वाह,
6: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
5: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
6: अलग होकर खिसकने लगे?
5: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
6: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
5: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
7: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
6: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
5: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
7: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
6: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
5: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
6: जी।
5: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
6: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
5: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
6: अच्छा?
5: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
7: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
5: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
7: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
5: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
6: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
5: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
7: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
5: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
7: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
6: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
5: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
6: अच्छा, तो ये बात है।
5: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
6: माउंट एवरेस्ट।
5: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
6: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
5: भला वो क्या?
6: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
5: बिल्कुल सही बात।
4: तो तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा।

0: उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
1: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
1: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
2: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
0: दादी ने पूछा।
1: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
2: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
2: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
2: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
2: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
2: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
0: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
0: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
0: दादी ने बड़े विश्वास से कहा।

0: उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था, स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
2: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
0: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
2: अच्छा।
0: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
2: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि,
8: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम और इसमें बातें होती हैं खेती बाड़ी की और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज एक खास विषय हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे बिहार में इनकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएँ हैं। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
8: मैम। नींबू वर्गीय फलों के बारे में और हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो है नींबू वर्गीय इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं नहीं जानते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में भी बताएं।
9: सही कहा, नींबू वर्गीय फलों में खास करके मौसमी, संतरा, गागर नींबू, पूर्वी नींबू, कागजी नींबू इत्यादि प्रमुख है। लेकिन किसान भाई इसको लगाते हैं, किचन गार्डन के रूप में लगाते हैं, किचन में एक दो पौधा लगाते हैं, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी व्यावसायिक खेती उतना प्रचलन में नहीं है। जबकि नींबू की खेती के लिए बिहार का जलवायु काफ़ी उपयुक्त है, यहाँ अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो किसान भाई को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिहार में नींबू की खेती प्रचलित है, यहाँ संतरा और मौसमी की खेती की जा सकती है, जैसे कि पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में मौसमी होता है, पंजाब में किन्नू होता है जिसको संतरा बोलते हैं, तो यहाँ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इसके प्रति उतना अवेयर नहीं है, उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको अभी उतना व्यावसायिक तौर पे अपना नहीं रहे हैं
8: जी।
9: अब इसकी बात करें कि इससे क्या क्या बन सकता है, इसको हम लोग एक तो फ्रेश खाते हैं, जैसे संतरा कहें तो उसको छिलकर खाते हैं, नींबू कहें तो आपका दाल में गाड़ के खाते हैं, उसका सलाद में डाल के खाते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, चटनी बनता है, स्क्वाइस बनता है, आर्टियस बनता है। इसका छिलका जो है उसमें काफ़ी वाइल होता है, तेल होता है, तो इसको अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें तो फैक्ट्री वाले इसके छिलका को भी ले जाएंगे, वो अपना वाइल निकालेंगे। तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारी उपयोगिताएँ हैं।
8: तो यहाँ पर आपने नींबू वर्गीय फलों के बारे में जाना और ख़ास तौर पर मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल बिहार में जो लोग हैं इसे व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कम जानकारी है। तो मैम इसकी कौन कौन सी किस्में जो हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं?
9: इसकी जो है इसको हम वर्गीकरण इसका करना बहुत ही कठिन है। इस छोटा फल से लेके बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। छोटा फल कहें तो जैसे कि कागजी नींबू है, बहुत छोटा होता है, और बड़ा कहें तो आप देखते हैं चकोतरा है जिसको कि डावा नींबू कहते हैं, छठ पर्व में चढ़ता है। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है इसका वर्गीकरण। जैसे कि आम है तो आम ही है, लेकिन नींबू के केस में क्या है कि फल का जो साइज में भिन्नता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गीकरण थोड़ा कठिन होता है। अब संतरा की बात करें तो संतरा को हम लोग छील कर खाते हैं, यानी कि पौधा में ही फल पक जाता है, उसको तोड़ते हैं और छिलका छिलकर हम लोग खाते हैं। जैसे कि फरवरी में इसका मेन फसल आता है, हार्वेस्ट होता है, आप देखती होंगी कि ये होली के टाइम में बहुत अधिक संतरा रहता है बाजार में, और इतना रहता है कि 100 रुपीज में 3-4 केजी तक दे देता है रिटेलर। तो ये बहुत अधिक उपज देता है संतरा। संतरा में वेराइटी है, ये वर्ग हुआ संतरा, जैसे बोले कि वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन है, तो संतरा एक वर्ग हुआ। उसी तरह से एक नारंगी वर्ग होता है, कागजी नींबू वर्ग होता है, तो इसका वर्गीकरण बहुत है। तो संतरा में अगर हम वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट किस्म है, मुख्य है किन्नू, जो कि हम लोग यहाँ भी लगाए थे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी किन्नू हम लोग लगाए थे, 200 के करीब प्लांट हम लोग लगाए थे, और यहाँ भी अच्छा उपज दिया और दे रहा है अभी तो। बहुत 10 साल हो गया है तो पौधा करीब करीब डिक्लाइन के कंडीशन में है, लेकिन यहाँ उपज बहुत अधिक आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का जलवायु जो है संतरा के लिए उपयुक्त है। इसमें किस्में हैं, किन्नो है, कुर्ग है, नागपुर है,

0: कटा हुआ रहता है, वो इजीली अलग नहीं होता है, उसको चाकू से अलग करना पड़ता है। यही सब इसका, इसीलिए इसको वर्गीकरण किया गया। संतरा अलग है, हम छील के खाते हैं, लेकिन नारंगी में किस्म है, जैसे हेमलिन है, मौसमी है, ब्लड रेड है, जाफा है, बहुत सारी किस्में हैं, तो इसको हम लोग छील कर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइट स्किन, यानी कि वो सटा रहता है, गूदा से सटा हुआ रहता है। अच्छा। तो उसको चाकू से छिल करके फिर उसका जूस निकाल कर लोग पीते हैं, इसलिए कहता है कि मौसमी का जूस मार्केट में बहुत मिलता है जी। अब बात करें कागजी नींबू की, तो कागजी नींबू क्या है कि इसको हम लोग जैसे कि सलाद में डालकर खाते हैं, या चाय बनाकर पीते हैं, या दाल में डालकर खाते हैं, मतलब इसको हम लोग इसके रस को यूज करते हैं खाने में, और इसका अचार भी बना सकते हैं, कागजी नींबू का ही हम लोग अचार भी बनाते हैं। तो ये पुराना है, घर में लोग अचार बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही एपेटाइजर का काम करता है, इसको खाने से पेट का दर्द करता ठीक हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है, तो इसके फल से अचार, शरबत, साइट्रिक एसिड इत्यादि बनाया जा सकता है
1: जी। तो किसान भाई, यहाँ पर किस्मों की बात आपने यहाँ पर आपको बताई गई, जिसमें कि वर्गीकरण के बारे में मैम ने आपको बताया। मैम, पौध तैयार, जब खेती की ओर जाते हैं तो पौध तैयार की बात सबसे पहले की जाती है, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई?
0: हम पौध तैयार करने की का बहुत सारा विधि है, जैसे कि कलम विधि से भी कर सकते हैं। कलम विधि क्या है कि आप जो सूट होता है, जो तना होता है, परिपक्व तना, जैसे कि ब्राउन जिसको हो जाता है तना, उसको परिपक्व कहते हैं। अर्ध परिपक्व, जैसे कि हरा ही है तना और उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश भी आ गया है, तो उसको अर्ध परिपक्व कहते हैं। और तीसरा है मुलायम, कि हरा ही है तना, हरा है, तो तीनों का कटिंग करके हम इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। किसी इसमें क्या है कि 15 से 20 सेंटीमीटर काटते हैं, और तीन भाग को सॉइल में डालना है, मिट्टी में डालना है, एक भाग ऊपर रहेगा मिट्टी से ऊपर।
1: अच्छा।
0: और ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए इस कार्य को, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो जून जुलाई में वर्षा का सीजन है हम लोग के जगह यहाँ, तो जून जुलाई में करने से सक्सेस अच्छा होता है। किसान भाई इसको मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, जहाँ की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अगर कटिंग हम लगाते हैं तो फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, और सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें भी सक्सेस होता है। और है गुटी बांधना, आप देखेंगे कि गुटी पौधा में ही मिट्टी ले जाकर बांधते हैं और उसको पॉलीथीन से रैप करते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद उसमें जड़ आता है, उसको काट कर अलग कर लिया जाता है, और फिर पॉटिंग करके कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा हो। जब जड़ का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में लगाता है। और है चश्मा मेथड, चश्मा मेथड उसको बोलते हैं, बडिंग, यानी कि बडिंग मेथड से भी इसका प्रवर्धन करते हैं। ये भी अगस्त सितंबर में इसका अच्छा देखा गया है, और हम लोग के कंडीशन में दिसंबर में और फरवरी मार्च में इसका जो है चश्मा मेथड, या वेज ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने किया है, वेज ग्राफ्टिंग में भी ये अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, 80% सक्सेस आता है, और ये इसको हम लोग दिसंबर में और फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि मूल वृंत का जरूरत पड़ता है, मूल वृंत जिसको बोलते हैं कि नीचे का जो रूट स्टॉक बोलते हैं, जिस पर कि हम लोग ग्राफ्ट करते हैं पौधा को, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक, या मूल वृंत हिंदी में बोलते हैं। तो इसका अलग वेराइटी होता है। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मूल वृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है, तो वो बीमारी से बचाता है, वो जलवायु से बचाता है, एडवर्स सिचुएशन जो जलवायु का होता है, प्रतिकूल स्थिति जैसे हवा, वर्षा, आंधी, तूफान, उससे ये जो मूल वृंत है, रूट स्टॉक है, वो पौधा को बचाता है। इसलिए रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वेराइटी हैं, जंभीरी है, जट्टी खट्टी है, करना खट्टा है, बहुत सारा रूट स्टॉक है, उसको प्रयोग में लाने से पौधा का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है।
1: तो इस प्रकार किसान भाइयों, अभी आपने पौध तैयार की जो विधि है वो जानी, और मैम इसके बाद ज़रूरी है इसकी खेती में या फिर किसी भी फसल की खेती में कि खाद हम कितनी मात्रा में दें, कौन से खाद दें, सिंचाई कब करें, कटाई छटाई कब करें, पौध रोपण कब करें, कैसे करें,

0: ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू वर्गीय फलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को कैसे करना चाहिए?
1: हम जैसे पौधरोपण की बात करें तो जैसे सब फल वृक्ष का पौधरोपण करते हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, फिर गड्ढा बनाना, तो ये कार्य जो है अप्रैल मई में हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर अप्रैल मई में जुताई उसकी की जाए और जुताई कर 10-15 दिन छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कीड़े हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अप्रैल मई में ज़मीन की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद फिर पाटा चलाकर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढा हम देखिए नींबू का हम शुरू में ही बोले कि इसका वर्गीकरण अलग होता है, इसका पौधा का साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, अब डाभा नींबू लगा रहे हैं या कागजी नींबू लगा रहे हैं या संतरा लगा रहे हैं या मौसमी लगा, उस अनुसार से उसका लेआउट करना पड़ता है, यानी कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी हम लोग उसी अनुसार से रखते हैं जो हम लोगों ने सोचा है कि हमको ये लगाना है, उसी अनुसार से करते हैं। जैसे आप मौसमी के केस में 5 मीटर आप रख सकते हैं पौधा से पौधा और कतार से कतार। संतरा आप लगाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए 6 मीटर है, और महानींबू है उसके लिए 7 मीटर है। अब चकोतरा है जिसको कि डाभा नींबू को बोलते हैं, इसके लिए 8 मीटर, इसका पौधा और बड़ा होता है। तो इस अनुसार से हम लोग कहते हैं कि प्लांटिंग डिस्टेंस आप बना लीजिए और ले आउट कर लेना है। उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें 40 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो हड्डी का चूरा और 1 किलो राख 3 टोकरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। अब गड्ढा भरने के बाद एक बारिश कम से कम जरूर होना चाहिए, पौधा लगाने से पहले एक बारिश हो जाए जिससे कि गड्ढा का मिट्टी जो है जो हम भरे हैं वो अच्छी तरह बैठ जाए। फिर उसको लेआउट करके जहाँ बीच सेंटर पे जहाँ पौधा लगाने का जगह है वहाँ पर पौधों को लगा देना चाहिए। ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए, पौधे लगाने का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए जब बरसात शुरू हो जाता है
0: जी।
1: अब खाद की बात करें तो पहला वर्ष आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो अनुपात है 75 ग्राम 40 ग्राम और 75 ग्राम रखना चाहिए, और ये अनुपात हर एक साल बढ़ते जाएगा। जैसे 75 ग्राम पहली साल था नाइट्रोजन, तो दूसरे साल 150 ग्राम होगा, फिर तीसरे साल 225 ग्राम होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 10वें साल में नाइट्रोजन की मात्रा 750 ग्राम होगा और फास्फोरस की मात्रा 400 ग्राम होगा और पोटास की मात्रा 750 ग्राम होगा। ये 10वें वर्ष में देना है पौधा को, और यही जो खाद की मात्रा है यही हर एक वर्ष अब पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि पौधा मेरा मैच्योर हो गया है, अब उसको इतना ही भोजन हर एक वर्ष चाहिए। इसके अलावे हम लोग कहते हैं कि खाद FYM जो होता है सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो प्रति पौधा देते रहना चाहिए। अब सिंचाई की बात करें तो गर्मी के दिन में वीकली इंटरवल पर सिंचाई करना चाहिए, यानी सप्ताह में एक बार, और जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए
0: जी।
1: अब निकाई गुड़ाई की बात है तो वो तो बरसात के समय में घास बहुत निकल आता है, तो उसका बीच बीच में सफाई होते रहना चाहिए जिससे कि मेरा जो मेन क्रॉप है नींबू का वो अच्छा रहे। अगर अधिक घास रहेगा तो उससे बीमारी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कटाई छटाई की बात करें तो नीचे 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर कोई तना नहीं रखना चाहिए, जैसे पौधा हम लगाए तो 40 सेंटीमीटर मेरा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हम बाद में गड्ढा के चारों ओर खाद डालेंगे, वो सब कार्य करने में हमको आसानी होगा, निकाई गुड़ाई करेंगे तो वो सब कार्य करने में अगर नीचे से ही मिट्टी के सतह से ही अगर दूसरा सूट निकल जाएगा, तना निकल जाएगा, तो वो जो निकोनी गरोनी का जो कार्य है, खाद पानी देने का जो कार्य है वो बाधित होगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करनी चाहिए
0: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने पूरी जानकारी पाई कि कैसे आपको पौधरोपण करना है, खाद आपको कैसे देना है, सिंचाई, कटाई, छटाई, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। और अब अंत में बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। मैम तो ये भी बता दें कि क्या मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को उपज।
1: फलों को तोड़ना, जैसे कि अब जब फूल लगता है नींबू में, उसके 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा नींबू हमने लगाया है। तो इस तरह से, और जब फल सेट होता है, जब पकने की स्थिति में होती है, जब मैच्योर होने की स्थिति में होती है, तो कलर का, उसका फल का जो कलर है थोड़ा चेंज होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा किस्म है। सभी का फल जो है पीला पूरा नहीं होता है, तो किसी किसी में हरा ही रहता है, थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है, थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति, उसके जाति, किस्म, बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे से, माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है, प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरे, संतरा की बात करें तो 1000 से 150 फल प्रति पेड़ मिलता है। अब ग्रेपफ्रूट की बात करें कि 300 फल प्रति पेड़ मिलता है। लाइम, लाइम की बात करें तो 1000 फल प्रति पेड़ मिलता है। इस तरह से जो किस्म है, जो जाति है, उस अनुसार से उसका उपज प्राप्त होता है।
0: जी, तो किसान भाइयों इस प्रकार यहाँ पर बातें हुई नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में, और साथ ही बिहार में इसकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं उनकी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नींबू वर्गीय फलों के बारे में। और अगर आप व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि कितना उपज प्राप्त हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय को लेकर और हम हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम गौरव। सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजे बाबू, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अपने साथ मिलकर समझाना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप ही सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और यह समझे कि हर व्यक्ति को अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी भी अफवाह यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ले। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गाँव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और लोगों की जेब पर भी स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान अपना स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसान पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आजकल जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, जैसे वैक्सीन के नुकसान होते हैं या कुछ बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर के से सलाह लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलनी चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जाँच, इलाज और बाद की देखभाल भी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी यह है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोगों को उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। यह इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सही खान पान एवं व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है संक्रामक बीमारियाँ, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण या सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जैसे मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है। और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत के कारण बन चुकी है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन हर राज्य में समान ये नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गाँव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहाँ HHO होते हैं, जहाँ रोज़मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है। बहुत ही दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सी जांचें होती हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होती हैं। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोग सिस्टम पर भरोसा होगा तब वो समय पर इलाज करवाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वह जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता और सभी कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर आता है जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़ा अस्पताल जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है? इस स्थिति को कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वही जगह है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता, कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिन्हें सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत होती है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयां समय पर नहीं पहुंचती, जहां जांच की सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन सरकार लगातार इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों में पहले से ही धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता है, वे बिना कोशिश किए वहां जाना ही बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
0: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बड़े अस्पतालों में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है, जिसको दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहां और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहां सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जानकारी और सलाह भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
0: आजकल डिजिटल चीज़ों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
1: हाँ, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है, जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराना इलाज का रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UVN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिसका टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोग समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है।
0: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारियाँ बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
1: हाँ, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैलाई जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे ज़माने में टीका तो लगाया ही नहीं, फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं, बिना डॉक्टर से पूछे।
0: तो इन बातों का सच क्या है?
1: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे ज़माने की बात है, तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सकें।
0: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
1: सबसे पहले, किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछें, समझें, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
0: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहीं सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
0: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए खास विषय हर रोज की तरह लेकर आते हैं, तो आज भी बिल्कुल कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर मंकेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कतरनी धान के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताएं।
7: नमस्कार कृषक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप सब कतरनी धान की खेती, खासकर भागलपुर और बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आप कतरनी धान की खेती बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और जिस हिसाब से ये किसान आगे बढ़कर खेती कर रहे हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता शुरुआत करता हूँ। मैं डॉक्टर मंकेश कुमार हूँ, मैं पौधा प्रजनन विभाग में कनीय वैज्ञानिक हूँ, और मेरा काम विशेषकर सुगंधित चावल और खासकर कतरनी पर ही रहा है। तो कतरनी धान जो आप किसान बंधु जानते ही हैं, कतरनी धान जो है बिहार का एक गौरव है, खासकर भागलपुर ज़िले का एक पहचान इसे जाना जाता है। तो ये एक बहुत प्रचलित सुगंधित चावल है जो मध्यम पतला दाना होता है इसका, और एक नदी जो चानन नाम की नदी है बांका ज़िले में बहती है, उस नदी के आसपास के इलाकों में इसको लगाने के बाद इसमें एक विशेष तरह की खुशबू आती है। साथ ही साथ बांका के अलावा जैसे भागलपुर में दो प्रखंड हैं, जैसे आपका सुल्तानगंज है और आपका भागलपुर के दो प्रखंड, और मुंगेर के भी दो तीन प्रखंड हैं, और बांका के 4-5 प्रखंड हैं, इसमें कतरनी धान में अजीब एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता वाली कतरनी धान होती है, जिसके कारण इसको 2017 में एक भौगोलिक सूचकांक का टैग प्राप्त हुआ है। इस टैग के प्राप्त होने के बाद किसानों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, जो उसको उनको एक कतरनी धान उगाने के लिए एक अधिकार प्राप्त, एक पेटेंट की तरह एक अधिकार, स्पेशल अधिकार देती है, जिसके चलते उसको कमर्शियल लेवल पर भी ले जा सक करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
5: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं थोड़ा खेती की, तो कतरनी धान के बिचड़े लगाने की क्या विधि होगी?
7: किसान बंधु, कतरनी धान का बिचड़ा जैसे अन्य धान लगाया जाता है उसी प्रकार लगाते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि इसमें कतरनी धान जैसे लंबे दिनों की प्रजाति है, तो इसको किसान बंधु इसको जुलाई के दूसरे हफ्ता में इसको लगाएं, जिसका बीज दर लगभग 25-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। और बीज लगाने से पहले बीजोपचार अगर कर दे तो किसान बंधुओं को आगे कीट और व्याधियों की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। तो बीजोपचार के लिए बेबिस्टिन जो है पाउडर है 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम, या ट्राइकोडर्मा जो एक फंजाई होता है उसको बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसका 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ PSB कल्चर के साथ मिला करके, और एजेटोबैक्टर भी अगर चाहें तो एजेटोबैक्टर का कल्चर भी साथ में मिला करके बीज को ट्रीट करें, और उसके साथ ट्रीट करने के बाद उसको जूट गीले जूट बैग में उसको रखते हैं करीब 24 घंटे के लिए, और उसके बाद देखें कि बीज अगर अंकुरित हो रहा है, हल्का अंकुरित हो गया है, तो उसको एक उप जो बिचड़े लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपरी जमीन को ऊपर करके एक क्यारी बनाते हुए ऊपर उसके बीज को छिड़काव करें, और फिर आप देखेंगे कि बीज मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे रूप में और हेल्दी बीज का जो है जर्मिनेशन हो जाता है। तो आप बीज उपचार करें, उसके बाद बुआई का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बुआई जो है 15 से 25 जुलाई के बीच में करना चाहिए, या आप चाहेंगे कि पहले हम कर दें जून के माह में कर दें और हमारा फसल अच्छा आएगा उपज, तो ऐसा नहीं है। आपको ये, क्योंकि ये प्रकाश संवेदनशील प्रजाति है, तो पहले लगाएंगे आप तो इससे उसके उपज में असर पड़ेगा, उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा लेकिन उसका दाना कम बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको 15 से 25 जुलाई के बीच के समय में ही उसको लगाएं। और रोपने के लिए आप 20 से 25 दिन के बिचड़े को आप यूज कर सकते हैं, उसको आप क्यारी से अच्छे तरह से उखाड़े, उसको पानी उसका रहना चाहिए, जड़ नहीं टूटना चाहिए उखाड़ते समय, और प्रति खूंटा बिचड़ा जो है आपको 3 से 4 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब एक हिल पे या एक जगह 4 से 5 पौधे से ज़्यादा मत लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। रोपाई की दूरी आप चाहें तो 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे के बीच में और पंक्ति के बीच में रखें, तो ज़्यादा अच्छा आपका फसल होगा। जी
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिचड़े लगाने की विधि की, अब बात करते हैं थोड़ा सस्य क्रियाओं की, तो क्या कुछ सस्य क्रियाएं होंगी कतरनी धान में?
7: जी जी, ये कतरनी धान, जैसे किसान बंधु आपको कतरनी धान की जो खेती करते हैं उनको अनुभव होता ही होगा कि कतरनी धान में आप अन्य जैसे फसल धान की प्रजातियां हैं जैसे उसमें उर्वरक आप ज़्यादा डालते हैं, छिड़काव मतलब इंसेक्टिसाइड का या जो भी खरपतवार नाशक जो केमिकल है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का अनुभव ये बताता होगा कि कतरनी धान में ये सभी चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो इसका उल्टा ये परिणाम है कि अगर आप खाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे या ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो कतरनी का जो विशेष गुण है जिसके लिए वो जाना जाता है वो उसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कतरनी धान में जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है या जैविक खेती जो किया जाए उस पर ही आप ज़्यादा उस पर आप आगे बढ़ें। तो इसमें जो खाद हरे खाद का ऊपर अगर उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है। इसके लिए जो ढैंचा जो कहते हैं एक, वो उसको आप परती ज़मीन जैसे रवि का फसल कटने के बाद परती ज़मीन जो रहता है उसमें आप ढैंचा का प्रयोग करें, उसको आप बीज जो है आप जून माह के अंत में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में छिड़काव कर दें, और जब वो पौधा ढैंचा का 55 से 60 दिन का हो जाए जो जुलाई के अंत तक जब कतरनी को रोपने का जब समय आए तब उस ढैंचा को काट दें, उसको दबा दें उस खेत में और FIM का प्रयोग करें, तो ज़मीन जो है बहुत ही अच्छा कंडीशन में आ जाता है जिससे कतरनी का खेती बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो सामान्यतः एनपीके का 40, 30 और 20 का ये रेशियो होना चाहिए, और इससे ज़्यादा आप एनपीके का प्रयोग ना करें। जो है आप जिंक, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय दे दें, और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है पहले तो आप एक आधी मात्रा बुआई के समय करें, फिर एक तिहाई भाग 7 दिन पर और शेष एक तिहाई भाग कल्ले निकलने पर आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल दें। बासमती धान जो है उर्वरक की में उर्वरक की मांग कम होती है, इसलिए कार्बनिक खेती को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कार्बनिक खेती करने से पोषक तत्वों की आपूर्ति गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा जैसे मुर्गी पोल्ट्री का जो बीट है आदि स्रोतों से पूरी करनी चाहिए। तो कार्बनिक खादों को खेत के में रुपाई से 2 सप्ताह पहले मिला देना चाहिए, क्योंकि आप रुपाई करने के बाद डालेंगे तो कोई उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। और इसके लिए खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक संसाधनों का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो खरपतवार, जैसे आप कहते हैं कि खरीफ के फसल में खरपतवार का भी ज़्यादा समस्या होता है, तो खरपतवार के लिए आप रोपनी के 3 से 5 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC का प्रयोग करें। उसको 15 किलोग्राम 50 ब्यूटाक्लोर लेकर के 500 लीटर जल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, और उसके बाद रोपनी के 25 से 30 दिनों के बाद एक बिस्पायरीवेक सोडियम 10 ग्राम प्रतिशत जो है SC 25 ग्राम सक्रिय दवा को 500 लीटर प्रति हेक्टेयर जल के में घोल करके आप करें। तो ये आपका सस्य क्रियाएँ हैं कतरनी की, ये जो है जिसको आप अपना सकते हैं।
5: जी डॉक्टर साहब, अब अगर फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद भंडारण किस प्रकार से करें?
7: जी जी, जैसे कतरनी में आप मैंने कहा था कि कतरनी जो है लंबे दिन की प्रजाति है, और ये पकने की जो अवधि है इसकी 150 दिन से ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये जब ये पकता है तो हमारा जाड़ा का सीजन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो समस्या ये होती है कि उस टाइम धूप निकलना बंद हो जाता है और दाने में मच्छर का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसानों को इसका भंडारण में समस्या आती है। तो आप ये भंडारण के समय ये ध्यान रखें कि इसमें 14% तक नमी रहे ये भंडारण के समय, और इसको अच्छी तरह से सुखा लेने का कोशिश करें, और नई बोरी का प्रयोग करें, पुरानी बोरियों को ना यूज़ करें। अगर पुरानी जो बोरी है तो उसमें आप कोशिश करें कि दाना जो है पूरा पुराना धान का दाना उसमें ना रहे, उसको झड़वा दें, और गोदाम वाले भंडारण वाले गोदाम को अच्छी तरह से साफ कर 4 लीटर मालाथियन या DDVP का 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देना चाहिए। और कुछ लोग मटके में भी भंडारण करते हैं, तो उसमें भंडारण करने के लिए आप 500 ग्राम सूखी नीम की पत्तियों को डालकर धुआं करें तथा ऊपर से बंद करके वायु अवरोधी करें। किसान भाइयों, इसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि कतरनी जो एक सुगंधित धान है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जब छांव में इसको जब सुखाएंगे तो इसका जो सुगंध है ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। अगर तेज़ तीखे धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका सुगंध जो है थोड़ा कम हो जाता है, जैसा मेरा अनुभव है। तो जब खिली धूप हो और कहीं छांव में इसको सुखाएं तो इसका सुगंध जो है बहुत दिनों तक बरकरार रहता है।
5: जी जी डॉक्टर साहब, और कतरनी धान में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग, व्याधि और कीट भी लगते हैं, तो इसका उपचार कैसे करें?
7: जी जी, कतरनी धान एक सुगंधित प्रजाति होने के चलते ये जो कीटों के लिए बहुत आकर्षण का ये फसल होता है। जी
5: सुगंध की
7: जी, तो इसमें एक गंधी वर्ग एक कीड़ा होता है जो ज़्यादातर सुगंधित धानों में पाया ज़्यादा अटैक करता है, तो उसके लिए ये गंधी वर्ग जो है ये जब बालियाँ निकल जाती हैं तो इसके बालियों से रस चूस करके बालियों को सुखा देता है। तो इसके लिए आप मालाथियन या कार्बोरिल 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें, और इसमें एक येलो स्टेम बोरर का एक प्रॉब्लम है जो पीला तना छेदक कहा जाता है इसको। अच्छा। तो उसके लिए आपको आपको जैसे इसका प्रकोप नर्सरी के टाइम से ही शुरू हो जाता है, पीला तना छेदक उसमें अंडा देना शुरू कर देता है। तो जब आप रोपनी करते रहें करने जाएं तो आपको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका जो ऊपर का पत्ता का हिस्सा है उसको तोड़ दें, तो ऊपर के पत्ते के हिस्से में जो इसका अंडा है वो हट जाएगा और रोग मुक्त हो, ये कीड़ा के अंडे से रहित हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फसल लगने के बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए रोपनी के 3 हफ्ता के बाद आपको कार्बोफ्यूरॉन प्रति 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर एक कारटाप एक दवा आती है जिसकी 10 ग्राम प्रति 25 केजी ग्राम प्रति हेक्टेयर का एक बार प्रयोग करना चाहिए
8: जी।
7: और इसके बाद 20 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 cc जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में या क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा आती है जो 20 cc इसका स्ट्रेंथ होता है और 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर जैविक तरीके से अगर इसका नियंत्रण करना चाहें तो सबसे बेहतर है क्योंकि इससे इसका सुगंध बरकरार रहता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए रुपाई के 30 दिनों के बाद 10 दिनों के अंतराल पर एक ट्राइको कार्ड आता है जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये कई किसानों को दिया गया है और ये ट्राइको कार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। इसका प्रयोग करेंगे तो ये येलो स्टेम बोरर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है
5: जी। अब अंत में बात आती है उत्पादकता बढ़ाने की, तो क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि कतरनी धान की उत्पादकता को हम बढ़ा सकें?
7: जी जी, ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि कतरनी का जो उत्पादन है उत्पादकता जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है क्योंकि वो प्रजाति जो है लंबा होता है और अपने दाना के वजन से ये जो है जब पकता है तो ये गिर जाता है, इसके चलते इसमें जो है उपज बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ ये दिक्कत है ये कि जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबी है, तो जो किसान गेहूं लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं सकते हैं दिसंबर के माह में। तो उत्पादकता मतलब किसान जो है कतरनी की धान की खेती नहीं करना चाहते हैं, इसके चलते इसकी कम उत्पादकता भी जिम्मेदार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2013 या 12 के आसपास किसानों के यहाँ से शुद्ध कतरनी को ला करके उसमें एक ब्रीडिंग प्रोग्राम किया और बौना कतरनी को डेवलप किया है और वो अंतिम चरण के स्टेज में है। और उस बौने कतरनी के में ये खासियत है कि वो उसकी उत्पादकता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और उसके पकने की अवधि भी कतरनी से 15 से 20 दिनों की कम है। तो अगर ये बौने प्रजाति किसानों के बीच में आएगी तो इसकी उत्पादकता अधिक होने के चलते किसान भी इसको लगाएंगे और इसको लगाने के साथ साथ किसानों का जो है इससे आय भी वृद्धि हो सकता है
5: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में उत्सुकता रहती है, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं जिसका जवाब आपने दिया। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार क्षेत्र में, हमारे भागलपुर क्षेत्र में खास कतरनी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, बाज़ार में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है इसके खास विशेषताओं की वजह से। तो आज जो भी वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
9: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
10: खुद भी बचे देश भी बचाए।
11: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
12: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
13: कौन सी कहानी टीकी?
12: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
14: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
12: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके
4: तरीके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
0: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
15: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और जहां तक बात आती है हमारी मिट्टी की, तो जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमें स्वस्थ फसल प्राप्त होंगे, और मिट्टी रसायन मुक्त रहेगी तभी हमें जो पोषक तत्व हमारी फसलों से, हमारे अनाज से मिलने चाहिए वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखें और फसलों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो दलहनी फसलों में जब तक जैव उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो फसल है वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज इसके विषय में हम जानेंगे कि दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग क्यों और कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं मृदा विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर AK झा, जो आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सर स्वागत है आपका।
16: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सर सबसे पहले तो जैव उर्वरक क्या होता है?

0: जीवाणु है वह काम करता है। तो इसी तरह से कोई भी जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह काम करे, यानी पोषक तत्व तो प्रदान करने का काम करे पौधों को, उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं।
1: जी, ये कितने प्रकार के होते हैं सर, किस कितने तरह के होते हैं?
0: ऐसा है कि देखिए, जैव उर्वरक अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा पोषक तत्व तो प्रदान करता है। जैसे नाइट्रोजन यदि वो प्रदान करता है तो उसको नत्रजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं या जैव उर्वरक कहते हैं। अब जैसे इसमें हमने अभी बताया दलहनी की बात कहा, तो दलहनी फसलों में जो राइजोबियम है या ब्रेडी राइजोबियम है उसकी जड़ में गांठ बनाने का काम करता है, तो वह भी नत्रजन स्थिरीकारक ही है, लेकिन यह सहजीवी है। इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा राइजोबियम है, इस राइजोबियम को खाना और रहने का जगह यह प्रदान करता है पौधा, और उसके एवज में वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो यानी सहजीवी जीवाणु ये है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, तो दलहनी फसल नहीं है तो क्या वो उसमें नाइट्रोजन के लिए नहीं है कोई उपाय? बिल्कुल है जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि धान वगैरह बरब है उसमें एजोस्पाइरलम का प्रयोग कर सकते हैं। तो कई तरह के इस ढंग के नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं, लेकिन अब यहां पर केवल नाइट्रोजन से तो हमारी फसल नहीं बढ़ेगी, उसको फॉस्फोरस भी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जो फास्फोरस घुलनकर जीवाणु है उसके भी कल्चर आ गए हैं, वो भी जैव उर्वरक हैं। वास्तव में क्या है कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में काफी है, लेकिन वह फास्फोरस पौधे को मिल नहीं पाता है, क्योंकि वह फास्फोरस किसी दूसरे रूप में है। जैसे हम धान नहीं खाते हैं, उसको पहले हम चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं, तब खाते हैं, तो इसी तरह से वह जो फास्फोरस है वह फास्फोरस आपको नहीं मिल पा रहा है। तो फास्फोरस घुलनकर, जिसको फास्फेट सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो वह पीएसवी का भी कल्चर आ गया हुआ है, तो वह भी है। इसके अतिरिक्त आज के तारीख में बहुत सारी कंपनी जिंक मोबलाइजर बनाती हैं, जो जिंक को मोबलाइज करने का काम करता है। इसी तरह से पोटेशियम मोबलाइजर भी आ गया है, जो पोटेश को मोबलाइज करता है। इस तरह से बहुत सारे जो द्वितीयक या सूक्ष्मात्रिक तत्व हैं उसको भी करने की बात है, लेकिन उसके अभी कल्चर मार्केट में नहीं आए हैं। अभी मुख्य रूप से जो राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है, एजोस्पाइरलम है, पीएसबी है, ये सब मार्केट में आपको ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन कई और भी हैं जो शोध के स्तर पर हैं। तो कई तरह के आपके ये होते हैं
1: जी। इसके प्रयोग के फायदों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
0: अभी हमने इसमें ही आपको बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है वह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। अब देखिए दो बातें यहां पर है, एक है अमोनियम फिक्सेशन। तो अमोनिया फिक्सेशन जो है वो गड़बड़ चीज है। यह जो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में मिट्टी में स्थिरीकृत कर देता है, यानी जो उपलब्ध है उसको अनुपलब्ध रूप में आपने कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लगभग 78-79% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है जब तक कि उस नाइट्रोजन को आप परिवर्तित नहीं कर लेते हैं उसके उपलब्ध रूप में। अभी हमने आपको पीछे भी बताया है कि हम धान नहीं खाते हैं, हम भात खाते हैं, तो धान को भात में बदलने का काम यह सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि यह अपने आप में छोटा यूरिया की फैक्ट्री है। अब देखिएगा, यूरिया जहां पर बनता है वहां बड़ा हाई टेम्परेचर रहता है, और वहां पर फॉसिल फ्यूल जो नेफ्था नाम का हो सकता है या नेचुरल गैस है, उसकी उपस्थिति में आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में उसमें आप जो है बुश एंड हेबर प्रोसेस से आप यूरिया बनाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को बनाने का काम करते हैं। वही काम यह जो आपका राइजोबियम है वह जो समान आपका खेत का टेम्परेचर है उस पर करने का काम करता है। वास्तव में उसमें एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, और लेगोमोग्लोबिन होता है, तो इसकी उपस्थिति में यह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, यह सहजीवित नहीं है, लेकिन यह आपको एसोसिएटिव है। इसके जड़ से जो कुछ निकलता है रूट एग्जुडेट, उसी रूट एग्जुडेट को खा करके अब उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता है। तो यह उतना नहीं करता है जितना राइजोबियम करेगा, लेकिन यह भी काफी अच्छी मात्रा में करता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे ड्रक्सिया हो गया, बेजरिंकिया हो गया, या ब्लू ग्रीन अलगी जो नील हरित शैवाल कहते हैं। तो नील हरित शैवाल में कई प्रजातियां हैं, जो नस्टक, एनाबिना, एनाबिनप्सिस, एफेंजोमिना, एलोसिरा, प्लेक्टोनिमा, तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आपको ये वायुमंडल के नाइट्रोजन लेकर के और उसको स्थिरीकृत करते हैं, यानी पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह से हमने आपको बताया, जैसे फास्फोरस की बात कहा, तो फास्फोरस को घुला दिया, पौधे को उपलब्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कम भी फास्फोरस है। आज हमारी निर्भरता रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ज्यादा है, तो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हमारी निर्भरता न रहे, हमारी जो

0: बोलते देखिए ना, हमारी मिट्टी में खुद ब खुद था, क्योंकि हमारी मिट्टी में कार्बन काफी था, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी थी, तो हमारी मिट्टी में इसकी संख्या खुद ब खुद थी, अलग से आपको कल्चर डालने की जरूरत नहीं होती है। यदि बुजुर्ग लोगों से पूछें कि क्या आप राइजोबियम कल्चर डालते थे, क्या आपने पीएसबी डालते थे, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं डालते थे, क्योंकि हमारी मिट्टी में इसकी संख्या थी। जो भी कालक्रम में हमने जो रसायन, जहरीले रसायन प्रयोग किए, कार्बन की मात्रा घट गई। पहले आपको बताएं कि 70 वर्ष पहले हमारी मिट्टी में 1% से ज्यादा कार्बन था, और वो आज घट करके 0.3% के आसपास हो गया हुआ है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन आपके जल धारण क्षमता को भी प्रभावित करता है, तो इन सब कारणों से उसकी संख्या घट गई है, इसीलिए अलग से हम इसको कल्चर मिला करके देते हैं। इसी तरह से फास्फोरस का भी बताया, और दूसरे भी जैसे KMB बताया, पोटेशियम मोबिलाइजर या जिंक मोबिलाइजर, ये सभी प्रयोग करते हैं तो पोटेशियम को बढ़ाता है, जिंक मोबिलाइजर जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है, तो ये सब फायदे हैं हमारे।
1: जी हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करेंगे?
0: बहुत आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि किसान इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसलिए फायदा नहीं ले पाते हैं। जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल में मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो सहजीवी जीवाणु हैं, खास करके राइजोबियम या ब्रेडीराइजोबियम, उसका प्रयोग करता है। लेकिन हमारे किसान ये समझते हैं कि राइजोबियम कल्चर मतलब हर एक फसल में हर एक राइजोबियम डाल दो। जी नहीं साहब, इसमें इसके क्रॉस इनाकुलेशन ग्रुप होते हैं, यानी कि हर एक दलहन के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कई प्रजातियां हैं, वह अलग अलग प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, लेग्युमिनोसोरम, फेजोली, मेलिलोटी, कई तरह के प्रजातियां हैं। तो आप प्रयोग करने के पहले यह देख लें कि क्या जो हम दलहन प्रयोग करने जा रहे हैं उस दलहन के लिए उचित है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आप यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उपचारित अवश्य करें। अब उपचारित करने के लिए आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी में आपको ज्यादा मात्रा में लगेगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप बीज उपचार करें। अब बीज उपचार कैसे करेंगे भाई, कि आप जैसे क्या कीजिए कि थोड़ा सा 200-300 ग्राम आप ले लीजिए पानी, उसको हल्का गर्म कीजिए, उसमें गुड़ 50 ग्राम 100 ग्राम डाल दीजिए, वो जब घुल जाए तो उसको ठंडा कर दीजिए। ठंडा करके उसमें एक पैकेट, जिसमें कि मोटे तौर पर 200 ग्राम होता है, वो कल्चर उसमें ठंडा हो जाने पर मिला दीजिए, और उसके जो 10 किलो बीज हैं, जो आपके दलहन के 10 किलो बीज हैं, उस पर आप बढ़िया से हल्के हाथ उसको मिला दीजिए, जिसके ऊपर, इसके ऊपर एक परत उसकी बन जाए। अब इसके ऊपर यदि परत बन गई तो उसके बाद आप इसको छाया में रखें, और छाया में रख करके फिर छाया में ही इसकी बुआई कर दें। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान होते हैं जो पीएसवी भी डालना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर भी डालना चाहते हैं, वह कैप्टन थीराम से अपने या ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का उपचार भी करना चाहते हैं कीड़ा से या बीमारी से बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए, उसके घंटा दो घंटा के बाद इंसेक्टिसाइड से यानी कीटनाशी से उपचारित कीजिए, उसके बाद आप जो है फॉस्फेट सोलबलाइजिंग यानी PSV जिसको कहते हैं, तो PSV से उपचारित कीजिए, और सबसे अंत में आप जो नाइट्रोजन स्थिरी कारक जो आपके राइजोबियम है उससे उपचारित कीजिए, और तब उपचारित करके छाया में रखिए, और छाया में ही उसकी बुआई कर दीजिए। और तरीका वही रहेगा जो अभी हमने आपको राइजोबियम के लिए उपचार के लिए, बीज उपचार के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो मात्रा है, यदि आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए आपको इस ढंग से नहीं करना चाहिए। तो ये दलहनी फसल में आपको जो जैव उर्वरक है, उस जैव उर्वरक का उपचार करना चाहते हैं तो ये उसके तरीके हैं।
1: जी इसके प्रयोग के लिए बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्या कुछ वो सावधानियां हैं, उनके बारे में जानना चाहिए?
0: वो मैंने आपको इसी के क्रम में बता दिया। हमने इसके क्रम में ये बताया कि आप जब भी आप प्रयोग करते हैं तो एक तो पहली बात कि जो भी राइजोबियम कल्चर है ये सारी चीज़ें, उसको रसायन से दूर रखिए और छाए में रखिए। तीसरी बात हमने अभी आपको बताया कि जो जिस दलहनी में आप डालना चाहते हैं उसके लिए अलग तरह के राइजोबियम हैं, उस राइजोबियम का प्रयोग कीजिए। चौथी बात यह मैं बताना चाहता हूँ कि इसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो पैकेट पर यह भी देख लीजिए कि यह अभी एक्सपायर तो नहीं किया है, एक्सपायरी डेट के बाद आपको नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें है क्या, उसमें तो जीवाणु है, और उसमें जीवाणु में 1 ग्राम में लगभग 10^8 सेल्स, जो कैलोरी फॉर्मिंग यूनिट हम लोग CFU बोलते हैं, तो उसमें उतना होना चाहिए। तो यदि आप एक्सपायरी डेट के बाद प्रयोग करते हैं तो उसकी संख्या आपको काफ़ी जो है क्या कहते हैं घट जाएगी, तो उतना फायदा नहीं देगा, तो आपको एक्सपायरी डेट भी देखना है। और धूप में नहीं रखना है, धूप में ना इसका आपको प्रयोग करके बुआई करना है, तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, ये सावधानी आप करते हैं तो अच्छा। दूसरी बात, एक चीज और इस सावधानी बात करें कि आप अपने मिट्टी में थोड़ा कार्बन की मात्रा भाई बढ़ाइए। कार्बन नहीं बढ़ाइएगा तो खेत कल की तारीख में आपकी बड़ी समस्या हो जाएगी, खेती करने में बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए कार्बन की मात्रा यदि ठीक ठाक है तो आपके वैसे भी जो फायदे हैं वो ज्यादा होंगे। और कल हो सकता है यदि कार्बन की मात्रा अधिक है तो आपने राइजोबियम कल्चर प्रयोग किया है या पीएसबी प्रयोग किया है, हो सकता है आने वाले समय में पुनः आपको उसका प्रयोग न करना पड़े। अरे भाई क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी मिट्टी में उसकी संख्या नहीं है, इसीलिए ऊपर से डालना पड़ रहा है। यदि हम पुनः पुराने वाले वातावरण में चले जाएं, सारी व्यवस्था हो जाए, तो हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात हमको किसान भाइयों को समझाना है। ऐसा कीजिए, अपनी मिट्टी की सेहत ठीक कीजिए, अपनी उपज बढ़ाइए, और यदि ऐसा करते हैं तो आप भी खुश, वातावरण भी खुश, और जो आपके प्लानर हैं और सारे व्यवस्थापक हैं वो भी खुश, और आपके बच्चे भी खुश।
1: तो श्रोताओं, आज ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिली है। आशा करते हैं आप इन बातों को ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी मिट्टी, अपनी फसलों को आप स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIETNCERT presents audiobook Santoor, textbook of English for grade 5.
1: Page 91, chapter 8, The Decision of the Panchayat. There's a QR code at the top right side of the page. Scanning the QR code will take you to additional information about this chapter. Let us read. Once upon a time, there lived a farmer in a small village. He had two fields. He used to work very hard. When he prospered, he bought another field. There was a well next to it. Since the farmer needed a source of water for his fields, he bought the well from his neighbor. There is an image at the middle of the page, which depicts the scene of a farm. A hard-working farmer is standing and his lazy, cunning neighbor is sleeping on the cot beside the well. The neighbor was a cunning man. He thought of a plan to cheat the farmer. Page 92. The next day, when the farmer reached the well, he found the neighbor standing there. He refused to let the farmer take water from the well. On asking why, he replied, "I sold only the well to you, not the water. The water still belongs to me. You cannot take it." There is an image at the middle of the page where two of the farmers are arguing over the water standing beside the well. The worried farmer didn't know what to do. So he went to the village chief and told her about his case and said, "He's not letting me take the water." The village chief fixed a day for a meeting of the panchayat. The day came, and the members of the panchayat gathered under the banyan tree in the center of the village. Both the farmers and his neighbor were summoned. Most of the villagers were present. Page 93. The farmer explained the situation to the gathering. The chief asked the neighbor why he was not letting the farmer draw water from the well. The cunning man said the same thing again. "I sold only the well to him, not the water in it. The water still belongs to me, so he cannot take my water." The members of the panchayat, as well as the villagers, tried to reason with him, but he was adamant. Finally, the panchayat members discussed the matter among themselves. Then they stood up to give the judgment. The villagers also stood up. There is an image at the bottom of the page where the panchayat members are sitting under the banyan tree. Both the farmers are standing beside them and other villagers are sitting on the ground. Page 94. The village chief began, "After hearing both sides, we agree that it is correct to say that only the well was sold." The neighbor gave a satisfied smile. "However," continued the village chief, "if you have not sold the water and the water is yours, then you have no business keeping your water in his well. Remove the water or use it all up immediately. If not, the water will belong to the owner of the well." The farmer was relieved and gave a shout of joy. The cunning neighbor realized that cheating will not lead anywhere. He had to pay a fine as well as apologize to the farmer. The villagers praised the wisdom of the panchayat. There's an image at the bottom of the page where all the villagers and panchayat members are standing. The hard-working farmer got the money and he is looking happy. The villagers are cheering after the wise decision of the panchayat, and the cunning farmer is joining hands to apologize for his actions. New words: panchayat, adamant, cunning, apologize, wisdom. Page 95. Let us think. Part A. Answer the following questions. First, why did the farmer buy the well? Second, why did the farmer become upset? Third, how did the panchayat solve the problem? Fourth, what was the final judgment given by the panchayat? Part B. Think and discuss. First, do you think the decision of the panchayat was correct? Second, you have an extra painting box. which you wish to share with your friends in the class to complete an activity. Two of your best friends, Radha and Sita, fight for the box. How would you deal with the situation so that you are fair to both of them? Third, who said to whom? Part A, I sold only the well, not the water. Part B, remove the water or use it all up immediately. Part C, he is not letting me take the water. There is an image at the right side of the page where two of the farmers are standing. One of them is holding a bucket, the other one is passing a cunning smile. Page 96. Let us learn. Part A. Match the words with their meanings. There's a table on the page which is divided in two parts. Part 1 is of the words and part 2 is the list of different meanings. First word is prospered. Second, cunning. Third, worried. Fourth, summon. Fifth, adamant. Sixth, judgment. The meanings are as follows. A. Clever in a tricky way. B. Refusing to change one's mind. C. To order someone come to a particular place. D. A decision made by a group. E. Very upset. F. To grow wealthy. Part B. Fill in the blanks with the correct preposition. In, at, by, after, before, under, with, to, for. A preposition can be used more than once. First, the farmer went, blank space, the village chief to explain his problem. Second, the neighbor was standing, blank space, the well blocking the way. Third, the villagers tried to reason, blank space, the cunning man. Fourth, the decision was made, blank space, careful consideration of both sides. Fifth, there lived a farmer, blank space, the small village. Page 97. Sixth, the panchayat members listen to both the sides, blank space, coming to decision. Seventh, the villagers gathered the panchayat, blank space, the banyan tree. Eighth, the neighbor was punished, blank space, his dishonesty. Ninth, the chief listened carefully, blank space, both the farmer and the neighbor. Tenth, the villagers agreed to meet, blank space, a later time to discuss the issue. 11th, the farmer decided to buy a well, blank space, buying his third field, part C. Rearrange the events in the correct order. First, Sam sat by a small stream to rest and enjoy the peaceful sound of the water. Second, Sam felt grateful for the time he spent in nature. Third, Sam decided to go for a walk in the forest near his house. Fourth, Sam walked along the narrow path, listening to the sound of the birds chirping and leaves rustling. Fifth, after resting, Sam continued his walk, feeling refreshed. Blank space has been provided for students to write the correct order of each of the sentence. Note to the teacher. Ensure that the learners are rearranging the events in the correct order. Page 98. Let us speak. Observe the pictures. In the first image, a boy is playing outside his house with the top, while his neighbors are busy with their household work near the coconut tree. The second image, a coconut from the neighbor's tree falls onto the boy's top while he was playing. The boy is surprised and this action caught the neighbor's attention. Page 99. In the third image, the boy quickly picks up the coconut and runs towards his house. Page 99. In the third image, the boy quickly picks up the coconut and runs towards his place. The lady is looking at the boy from her yard and the man is running towards the door to take his coconut. In the fourth image, the boy carries the coconut inside his house while the neighbor's man and woman look on, wanting it back since the tree belongs to them. What do you think will happen next? Sit in small groups and discuss. One student from each group will narrate the ending to the whole class. Page 100. Let us write. Part A. Imagine you are the farmer. Write a letter to your friend about the incident and the decision of the panchayat. You may begin as follows. My dear friend, something happened last week which I want to tell you. I wanted to buy a well. Students have to complete rest of the letter. Part B. Read the following sentence. Water is priceless. The word less is underlined. Part B. Read the following sentence. Water is priceless. The word less is underlined. It means that water is valuable. It is so valuable that you cannot put a price on it. The less at the end of the word is a suffix. Complete the following by adding the suffix less to the given words. Words, use, suffix, less, new word. Blank space has been provided for students to write the new word. Care plus less, hope plus less, fear plus less, color plus less. Make sentences using the new words in your notebook. Note to the teacher. Help learners understand the concept of suffix. Page 101. Let us listen. Listen to your teacher read out this passage and answer the questions by choosing the correct option. Sri Ramakrishna Paramhamsa. A long time ago, in a small village of West Bengal, there lived a kind and wise man named Sri Ramakrishna Paramhamsa. He loved to talk to people about God and taught that all religions are like rivers. They may take different paths, but they all lead to the same ocean. He lived a simple life, wearing plain clothes and eating very little. But his smile and loving words made everyone feel special. One day, a curious young boy named Naren came to him. Ramakrishna saw something special in Naren and became his teacher. He taught Naren about courage, kindness, and how to find peace within. Naren later grew up to become the famous Swami Vivekanand, spreading his teacher's wisdom to the world. Even today, Ramakrishna's teachings inspire many people everywhere. First, where was Sri Ramakrishna Paramhamsa born? A. A colony in Kolkata. B. A small village in West Bengal. C. A mountain in the Himalayas. D. A forest in Kerala. Second, who was the curious boy that became Sri Ramakrishna's student? A. Mahatma Gandhi. B. Swami Vivekanand. Naren, mentioned in brackets. C. Rabindranath Tagore. D. Sri Aurobindo. Page 102. Third, what kind of life did Sri Ramakrishna live? A. A life full of luxury. B. A simple and loving life. C. A life of traveling. D. A secretive life. Fourth, what did Sri Ramakrishna compare religions to? A. Trees in a forest. B. Stars in the sky. C. Rivers flowing to the ocean. D. Books in a library. Fifth, what did Sri Ramakrishna teach Naren? A. To find a teacher. B. To become wealthy. C. To travel the world. D. To find peace. Did you know? The banyan tree is the national tree of India. It can live for over 200 years and grow to cover several acres of land. Its roots grow down from the branches and become new trunks, making it look like a forest all by itself. Page 103, let us do. Part A, read the passage carefully and answer the following questions. The neem tree. You must have heard of a neem tree near your house, or near the school, or beside the road. Almost everyone can recognize a neem tree. The neem is a magic medicine tree because almost every part of the tree is used for medicine. Sometimes, sick people are given neem juice to drink. People use the twigs of the neem tree as a toothbrush to clean their teeth. Burn some dry neem leaves inside the house and see the mosquitoes disappear. When you store winter clothing or blankets, keep dry neem leaves between them. This helps keep away insects. When you store rice, keep dry neem leaves at the bottom of the rice bin. This keeps pests away. Answer the following questions. First, where can you find neem trees? Second, why do you think neem is called a magic tree? Third, what happens when dry neem leaves are burnt? Fourth, why do people put neem leaves in clothes and rice containers? Fifth, how are neem twigs used? Sixth, find the meaning of the word disappear from the following options. A. Appear. B. Vanish. C. Grow. D. Fly. Seventh, find the word in the passage which means a short stick. A. Tree. B. Part. C. Twig. D. Leaf. Page 104, Part B. Point out differences in two pictures given. Work in pairs and write down the differences in your notebook. There are two images given on this page. In the first image, the sun is shining brightly. There's a tulsi plant with many branches in the yard. A lady is sitting on the staircase, having three stairs. She is holding a hand fan of blue and red color. In the first image, the lady is wearing a yellow sari with geometrical small prints which are pink in color. Blue sandals are kept on the doormat. The lady's hairdo is a bun with flicks on her forehead. There is a big window behind her. In the second image, the sun is shining. A tulsi plant with less branches is kept in the yard. Yellow footwear is kept on the doormat. A lady is sitting on the staircase having two stairs. She is holding a hand fan of yellow and red color. In the second image, the lady is wearing a yellow sari with floral big prints, blue in color. The lady's hair are neatly tied with less flicks and no bun. A small window is behind the lady. Chapter 8 ends here.
0: Santur, you were just listening to this audiobook. Textbook of English for Grade 5. Narration, Mansi Chauhan. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Kusum Lata. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 MHz पर। मैं हूँ RJ अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ़ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है। पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का। अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की, तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ऑयस्टर मशरूम के बारे में, और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
10: थैंक यू मैडम।
8: सबसे पहले तो ऑयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं?
10: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है
8: जी।
10: इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया, ऑयस्टर प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू, तो ये डजेमर भी एक वैरायटी है। तो ये तीन प्रजातियाँ बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में, उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर काजू की बात की जाए, तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में
8: जी। तो ये तो होगी प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, की अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है?
10: खास बात इसमें होती है, इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं, जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं। और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूम से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है, और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है
8: जी। मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
10: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
8: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
10: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस थजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
8: जी,
10: बिना कोई रुकावट किए हुए।
8: जी मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती?
10: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें है। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है, तो गेहूं को हम रोप प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं
8: जी। और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें हम?
10: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है, तो इसमें खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग में इसकी खेती की जाती है ऑयस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया तो गेहूं, मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
8: जी।
10: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल, जब हम सुखाने के बाद कितना हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 45x35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 45 सेंटीमीटर लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
8: जी।
10: और उसके बाद हम जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह, इस बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है, बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए, तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
8: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देखरेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती है?
10: अगर प्रबंधन की बात किया है तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के 1-2 मीटर तक चारों तरफ से 2-3 मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 लीटर ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 क्विंटल 100 लीटर पानी के लिए लगभग 80 ग्राम

0: बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मलिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसिलियम है वो नहीं आएगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर 3, जब हम बिजाई जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को हजारे के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे। नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़ एक एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबस्टीन का स्प्रे कर देंगे जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए, जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियां
1: तो ये कुछ सावधानियां है, प्रबंधन है जब आप ओयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: ना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा, थैंक यू, नमस्कार सभी को।
5: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
8: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है 1st week of July का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफी देर हो जाएगी, यानी अगस्त 1st week तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
5: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
8: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराए तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं, खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें, जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं हम अपने फील्ड के ऊपर, उसको

दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बन लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50

0: 60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम, पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम एमओपी यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, एसएसपी और एमओपी दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है यानी जब उसकी फलियां आती हैं तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है डीएसआर को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि डीएसआर जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर डीएसआर में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई डीएसआर होती है, वेट डीएसआर होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर डीएसआर के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डीएसआर आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये डीएसआर की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में, वो होती है कि वीडिंग, आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलीन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे, आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को, मतलब वीड्स को, खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम डीएसआर पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका पीएचबी 71 हो गया, पूसा आरएच 10 हो गया, ठीक है। और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पश्चिमी हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।
1: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
2: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही है।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
4: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
4: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। चलो यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है।
4: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
4: ठीक है,
3: चल हट, हट, उड़।
4: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
1: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को ठिठोली सूझती।
4: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी।
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
1: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
4: अरे अरे,
3: अरे
4: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
4: आराम से।
1: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
4: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
1: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
1: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
4: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
1: दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गौरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
4: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
4: सुनो तो। रुक जाओ।
1: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
1: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
5: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी चुन कर ये।
1: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
4: तुम्हारे बस की नहीं है।
5: फिर कोशिश करता।
1: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: अब देखो,
1: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
2: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
4: हाँ?
2: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
4: अरे हाँ बेटी।
1: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
4: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
1: और तभी गोरैया झट से उड़कर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
1: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में

दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
6: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
8: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
6: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
8: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी ढाई एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
6: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के
8: लिए? सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहाँ जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
6: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
8: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहें तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
6: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
8: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी ढाई एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
6: और बुआई की विधि क्या?
8: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
6: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
8: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हर एक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
6: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
8: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें, तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
6: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
8: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें, वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
6: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
8: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
6: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
8: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, उसमें आपको दो तीन चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
6: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
8: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
6: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद, धन्यवाद।
6: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पक्षियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
9: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास बातें होती हैं आपके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, जानते हैं खेती के बारे में और खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। फिलहाल आज का विषय है हमारा अरहर में लगने वाले कीटों का प्रबंधन। दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत, मतलब ये पौष्टिक से भरे हुए रहते हैं और हमारे शरीर को जो एक पौष्टिकता चाहिए वो मिलता है हमें इन दलहनी फसलों से। लेकिन जब हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं इन्हें उगाने में, इन फसलों को उगाने में, तो कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और वो वजह है कीटों का। जी हाँ, कीट पतंगे जो ये हमला कर देते हैं, तो नुकसान भी होता है फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को। तो आज हम बातें करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, यानी कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, और साथ ही मैं बता दूँ कि ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा विषय है मैम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अरहर फसलों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हो सकते हैं?
12: अरहर फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं फली छेदक कीट, दूसरा है प्लूम मॉथ, पॉड फ्लाई, पॉड बग, काला व्रिंग एवं दीमक। ये सभी कीट जो हैं अरहर को हानि पहुंचाते हैं।
11: तो हमने जाना कि कौन कौन से कीट हो सकते हैं जो अरहर को मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद मैम, अगर हमारे किसान भाई अगर इसे पहचान जाएंगे तो आई थिंक इसका जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इन कीटों को, जो अलग अलग कीटों के नाम आपने कहे, कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, साथ ही ये भी बताएं कि ये जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के कीटों के नाम कहे आपने, ये भी बताएं कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं।
12: जी, फली छेदक कीट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो है, इसका जो लार्वा है, ये लगभग 40-50% तक हानि पहुंचाता है। तो फली छेदक कीट, इसका वयस्क वो एक पतंगा है, यह पत्तियों पर, अरहर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर अंडे दे देते हैं, और इन अंडों से फुटकर फिर इल्लियां निकलती हैं, जिसे हम पिल्लू कहते हैं। पिल्लू शिशु, ये जो इनके पिल्लू हैं, वो फिर पत्तियों पर खाती हैं, और जब फिर जब ये फली लगती हैं तो फलियों में घुसकर खाती हैं। और ये पिल्लू जो हैं, शुरू में हरे रंग के होते हैं, बाद में धीरे धीरे भूरे हो जाते हैं, और ये इनके जो पिल्लू के

0: शरीर को फली के बाहर रखकर उसे खाता है। और ये जो प्लूम मॉथ है, प्लूम मॉथ जो ये, इसका भी वयस्क पतंगा ही होता है, और ये भी पत्तियों पर अंडे दे देती हैं, और इनसे भी फुट करके अंडों से वो पिल्लू निकलते हैं, और जिनके शरीर पर रोएं रहते हैं। और ये जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रकोप अधिक होता है, और शुरू में ये तो कलियों और फूलों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं, फिर जिससे कि फूल और फलियां भी झड़ जाते हैं, और जब फली बनती हैं तब फली में भी छेद कर ये हरे जो दाने होते हैं उनको खा जाते हैं। कभी कभी अधखाए जो दाने होते हैं उन पर सफ़ेद या काले फफूंद भी आ जाते हैं। और जो पॉड फ्लाई है जिसे फली मक्खी कहते हैं, ये काले रंग का और चमकीले पंखों वाली ये मक्खी होती है, और ये जो मादा की मक्खी होती है ये फली के अंदर अंडे देती हैं, और अंडों से सफ़ेद रंग का वो पिल्लू निकलता है जिसे मैगोट भी हम लोग कहते हैं। ये फली के अंदर ही विकसित होकर जो हरे दाने हैं उनको नष्ट कर खाता है, और जिस ये बारीक छेद कर, मतलब बारीक यानी बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद कर फलियों पर छेद बनाकर खाते हैं। और इन छेदों को देखकर जब छेद महीन महीन हो जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फली मक्खी का आक्रमण हो गया है।
1: अच्छा।
0: और पॉड बग ये जो है चूसक कीट है, ये भूरे रंग के होते हैं, और इसके वयस्क और जो निम्फ होते हैं, इसके जो शिशु होते हैं उसको निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ भी ये फलियों से रस चूस कर खाते हैं, जिससे फलियां सिकुड़ कर छोटी पतली हो जाती हैं। और काला भृंग यह भी एक कीट है जिसे एपियन भी कहते हैं। ये पत्तों एवं फूलों पर इनका ये खाते हैं, और जल्द मध्य एवं देर से पकने वाली सभी किस्मों पर जो है अरहर के जो किस्म हैं इन पर इसका प्रकोप होता है। काला भृंग बहुत ही छोटे आकार का होता है, और इसका आगे का मुंह जो वो नुकीला होता है। खरीफ मौसम में यह जो है उड़द और मूंग पर भी दिखाई पड़ता है, और जब अरहर के पत्ती फूल जब अरहर फसल लग जाते हैं तब ये अरहर के पत्तियों और फूलों को छेद कर खाते हैं। और इस तरह से जब फूल को छेद कर खाते हैं तो फूल सूखने लगते हैं। इसका शिशु जो है वो गंदे उजले रंग का होता है, उजला रंग होता है परंतु वो थोड़ा गंदा लिए हुए रंग का होता है, और इसका मुंह का रंग जो है ये मुंह का रंग वो गहरा भूरा होता है, और इसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे सी आकार में मुड़ जाता है उस तरह से इसका शरीर मुड़ा हुआ होता है, और यह फलियों में भी प्रवेश कर जो हरे दाने हैं उनको खाता है जी। और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप देखा गया है, सभी इलाकों में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में, जिसमें जिन मिट्टी में थोड़ा सा नमी अधिक होती है उसमें दीमक का भी प्रकोप देखा गया है। ये दीमक जो है जो नवजात जो पौधे होते हैं उनके जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि ये कौन कौन से कीट हैं, किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं, और इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनका प्रबंधन करें इनके पहचानने के बाद, ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें। तो मैम अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में
0: जी। हम शुरू करते हैं फली छेदक कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो फली छेदक कीट का प्रबंधन जो है वो जैसे ही वो चना ये सॉरी अरहर जो हम लगाते हैं वैसे ही फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप जो है इसका फली छेदक जो है ये फली छेदक चना को भी हानि पहुंचाता है, और

0: जब अरहर के फूल आते हैं तो उसमें खेतों में चना भी होता है, तो चना में भी यह कीट जो है आक्रमण करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे चना में हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उस तरह से अरहर में भी फेरोमोन ट्रैप, कम से कम जब अरहर में फूल आने लगे, फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य लगा देना चाहिए, और 3 सप्ताह के अंतराल पर जो फेरोमोन का ल्यूर होता है उसे बदल देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए 3-3 सप्ताह के अंतराल पर। और अगर रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना है तो रासायनिक कीटनाशियों में प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% जब फूल आ जाए तब करना चाहिए, एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां जब लग जाएं तब करना चाहिए। दूसरा कीटनाशी है स्पिनोसैड, स्पिनोसैड दवा कीटनाशी जो है उसका 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही नीम आधारित दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित दवा में निम्बिसिडी, नीमार, नीमा जल, इन कीटनाशियों में इन कीटनाशियों का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्लूम मॉथ कीट के लिए प्रोफेनोफॉस जो कीटनाशी है उस दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है, प्रोफेनोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर, इसे भी फूल आने 50% फूल आने के पहले 50% फूल आ जाए तो पहला छिड़काव एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां लग जाएं तब करना चाहिए। और पॉड फ्लाई का नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पॉड फ्लाई का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है पॉड बग। पॉड बग कीट का प्रबंधन के लिए, चूंकि यह चूसक दवा है इसलिए इस कीट का नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। नीम आधारित दवाओं में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमा जल, अचूक या नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर नीम का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद फिर इसका इसी कीटनाशी का यानी इमिडाक्लोप्रिड से छिड़काव करना चाहिए। जो मैंने बताया काला भृंग एपियन, इसके नियंत्रण के लिए भी इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC दवा का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का भी प्रकोप जिन एरिया में इनका प्रकोप होता है तो इसके लिए बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर और इसमें 15 ml पानी मिलाकर तब बीज को उपचारित कर लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कीट के प्रकार को जाना, अपने साथ ही ये भी जाना कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी बात था प्रबंधन इनका, तो ये भी आपने जाना कि हम कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थी स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि अगर आपके अरहर के फसलों में कीट लग चुके हैं या कुछ ऐसे आपको पहचान दिख रहे हैं, तो जल्द से जल्द उसका प्रबंधन करें ताकि आप अपने फसलों को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें करूंगी मैं और लेकर आऊंगी एक और भी अलग विषय को। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
0: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
1: हाँ, बिल्कुल। जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल की तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
0: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
1: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई, उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से। ठीक है, उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
0: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
1: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो, गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तीला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज्यादा से ज्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नजर आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको अपने पौधों पे नजर आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
0: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैम अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तीला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तीला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है, जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तीले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तीला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तीले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है, वो भी हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
0: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है, तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
0: जी मैम तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
1: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी, जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया, तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी, फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति M2U75 लगा रहे थे और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जाकर के हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया खरीफ में, तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है, काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल के अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था, मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2-3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा,
2: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
1: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
2: जी मैम, तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
1: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
2: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा।
2: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
11: धन्यवाद उमा।
0: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
11: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं। बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
0: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
11: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण

0: प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं। इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की पहली किश्त मिलती है, और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2 लाख की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं उस वहां पे जा कर के या फिर खुद ही इंटरनेट पर इसे इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है वो है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
1: जी,
0: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, और फिर इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50% से 80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना। फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है, जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आए, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
1: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और अंत में आप महिला किसान खास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है, उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सकें।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी
1: मैम
0: कि कृषि सखी सरकार द्वारा एक पहल चल रही है, कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र, जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं, वहाँ जा कर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जा कर के, या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पर जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: लेडीज फर्स्ट।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है, तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से

एक बच्ची गुजरती है, फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है, और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारे परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उससे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है, और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास

0: शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना ज़रूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है, हर पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।

0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 2 दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता,
इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्व उत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती,
कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे। फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि।
7: हेलो नमस्कार, मैं आरजेनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें, और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
8: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
7: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जाना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में बताएं।
8: मक्के में बहुत ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
7: मैग्नीशियम
8: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है, और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है।
7: जी,
8: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित जो पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है। और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पैटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को, तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं, तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह के बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं, और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है।
7: जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
8: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स, जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पर भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लेक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का यदि पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं, और ये समय जो है चार घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान, उसको सुखा लेंगे। जब ताप उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है, मीन्स उसमें जो नमी है 16-24% आ जाए, तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16-24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है, तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है, और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16-20% के लगभग में रखना होता है, और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, जिससे कि हम लोग मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है, और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है, और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स कनेक्ट मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपका उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं, और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं।
7: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
8: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद।
8: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
9: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो सीफ क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चीना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहां पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
8: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चीना मिलेट की खेती की जाती है?
9: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेन्स हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में, तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत, मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके ज़मीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया हैं, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार हो गया, 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
8: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
9: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2 से 3 बार जुताई करके पट्टा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं, नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा, जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
8: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
9: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं, तो चीना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये तमिलनाडु की, हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151 TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं, इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7 जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7, इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है, हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है, 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है, आप श्री अन्न की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
8: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
9: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं, बुआई के 15

0: रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलिन का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलिन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलिन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलिन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है, क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इसमें 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलिन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलिन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलिन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 240 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 240 दवा नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 240 हम लेकर के, जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 240 जो 58% इसी का आता है उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें, और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता है, बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों, जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों, आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2 भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा। जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए 1 बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद, और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा,
1: जी, जा रहा है, जी, जी, जी। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी

0: जमा टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात

तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: 90.8 FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12

गुना 12 मीटर की दूरी रखे अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखे और गला घोटू और लंगड़ी से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दे और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाए। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराए और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाए। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो।

0: जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूमिन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

FM Green और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ उमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्री छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है, और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्री छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन TV यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबा कर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है, यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, रेडियो रिवीजन जो कि आपकी परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होता है, आप सभी जब से एग्जाम शुरू हुआ है आप सुनते आ रहे हैं, और अब अगला जो एग्जाम है आपका वो है AEE 1:1, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इस कोर्स के रिवीजन के लिए आपके प्रोफेसर्स मधुमिता मैम और नेहा पांडे मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में। तो शुरुआत करते हैं मधुमिता मैम के पोर्शन के साथ, का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: थैंक यू
7: मैम, रेडियो रिवीजन शुरू कीजिए।
9: हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को पूरा कोर्स पढ़ा दिया गया है, इसका क्विक रिवीजन जो है इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मोटिवेशन से शुरू करते हैं। मोटिव इज एन इनर अर्ज डिजायर टू अचीव समथिंग, वाइल

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं।

0: नहीं हो पाती हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा वेबस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की

0: रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान

0: बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 2 दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60×20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है।

और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और ख़ुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए, जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएँ क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं। और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियां थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है। और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे, तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं, तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी, तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा?
लैंगिक समानता अगर

0: में बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए जरूरी होता है कि महिलाएं भी कमाएं। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएं समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं, तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। Ladies first.
1: Zero के आगे zero, zero के पीछे zero, आगे zero पीछे zero. टिको, क्यों है इतने zero?
2: Zero नहीं, बल्कि मैं उन zero dose बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो pentavalent के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के

0: दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
10: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
11: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
10: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
11: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
10: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
11: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
10: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
11: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज़ में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
10: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
11: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
10: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
11: धन्यवाद उमा।
10: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये है हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
6: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में, उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
7: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40-30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
6: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
7: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
6: अच्छा।
7: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है, तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैट इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूजर है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जियों और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
6: जी।
7: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से, कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
6: परवल में,
7: हाँ, परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
6: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में, तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है, और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
7: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ, देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीना में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए, और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पे तैयार करिए या 2x1 मीटर पे तैयार करिए। 2x2 होगा दो मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डाल डालिए, 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहे तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोगत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
6: जी।
7: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए और हल्का सा उस पर फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का, ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है, और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको, तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा, और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो, या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के लिए चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोड्स है उसमें 7-8 नोड, आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोड उसमें थे, तो जितने नोड से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ दें तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए।
6: जी, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो हैं इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
7: देखिए, परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियाँ हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है। तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियाँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है। तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं, नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है। तो ये सब प्रजातियाँ हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
6: जी।
7: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
6: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, किस प्रकार की खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
7: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट्स देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
6: जी।
7: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो है नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए जाके उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
6: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
7: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है। किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है। जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
6: जी,
7: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है एक संबंधित दस जरूर रखिए। जब तक आप एक संबंधित दस, मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो दस पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है एक एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
6: अच्छा।
7: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता, वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है
6: जी।
7: तो इस चीज़ का ध्यान, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
6: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
8: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
9: खुद भी बचे देश भी बचाए।
10: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
11: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
12: कौन सी कहानी टीकी?
11: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
13: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
11: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
12: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
11: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
14: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गाँव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्बा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
3: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
4: सर्वप्रथम साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
5: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
4: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
5: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
4: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की

0: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे।
1: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
0: बहुत मजा आएगा।
2: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
3: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
2: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
3: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
2: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
3: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
1: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
0: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
1: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
0: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
0: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो

0: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
0: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
0: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
0: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
4: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
4: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
3: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
4: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
3: अरे नहीं नहीं,
4: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
4: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
4: राजम उनके साथ था, अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
3: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
4: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
3: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
4: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
3: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
4: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
3: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
4: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
3: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम और इसमें बातें होती हैं खेती बाड़ी की और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज एक खास विषय हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे बिहार में इनकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएँ हैं। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: मैम। नींबू वर्गीय फलों के बारे में और हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो है नींबू वर्गीय इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं नहीं जानते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में भी बताएं।
10: सही कहा, नींबू वर्गीय फलों में खास करके मौसमी, संतरा, गागर नींबू, पूर्वी नींबू, कागजी नींबू इत्यादि प्रमुख है। लेकिन किसान भाई इसको लगाते हैं, किचन गार्डन के रूप में लगाते हैं, किचन में एक दो पौधा लगाते हैं, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी व्यावसायिक खेती उतना प्रचलन में नहीं है। जबकि नींबू की खेती के लिए बिहार का जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो किसान भाई को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिहार में नींबू की खेती प्रचलित है, यहाँ संतरा और मौसमी की खेती की जा सकती है, जैसे कि पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में मौसमी होता है, पंजाब में किन्नू होता है जिसको संतरा बोलते हैं, तो यहाँ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इसके प्रति उतना अवेयर नहीं है, उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको अभी उतना व्यावसायिक तौर पे अपना नहीं रहे हैं
9: जी।
10: अब इसकी बात करें कि इससे क्या क्या बन सकता है, इसको हम लोग एक तो फ्रेश खाते हैं, संतरा कहें तो उसको छिलकर खाते हैं, नींबू कहें तो आपका दाल में गाड़ के खाते हैं, उसका सलाद में डाल के खाते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, चटनी बनता है, स्क्वाश बनता है, आर्टियस बनता है। इसका छिलका जो है उसमें काफ़ी वाइल होता है, तेल होता है, तो इसको अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें तो फैक्ट्री वाले इसके छिलका को भी ले जाएंगे, वो अपना वाइल निकालेंगे। तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारी उपयोगिताएं हैं।
9: तो यहाँ पर आपने नींबू वर्गीय फलों के बारे में जाना और ख़ास तौर पर मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल बिहार में जो लोग हैं इसे व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कम जानकारी है। तो मैम इसकी कौन कौन सी किस्में जो हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं?
10: इसकी जो है इसको हम वर्गीकरण इसका करना बहुत ही कठिन है। इस छोटा फल से लेके बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। छोटा फल कहें तो जैसे कि कागजी नींबू है, बहुत छोटा होता है, और बड़ा कहें तो आप देखते हैं चकोतरा है जिसको कि डावा नींबू कहते हैं, छठ पर्व में चढ़ता है। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है इसका वर्गीकरण। जैसे कि आम है तो आम ही है, लेकिन नींबू के केस में क्या है कि फल का जो साइज में भिन्नता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गीकरण थोड़ा कठिन होता है। अब संतरा की बात करें तो संतरा को हम लोग छिल कर खाते हैं, यानी कि पौधा में ही फल पक जाता है, उसको तोड़ते हैं और छिलका छिलकर हम लोग खाते हैं। जैसे कि फरवरी में इसका मेन फसल आता है, हार्वेस्ट होता है, आप देखती होंगी कि ये होली के टाइम में बहुत अधिक संतरा रहता है बाजार में, और इतना रहता है कि 100 रुपीज़ में 3-4 केजी तक दे देता है रिटेलर। तो ये बहुत अधिक उपज देता है संतरा। संतरा में वेराइटी है, ये वर्ग हुआ संतरा, जैसे बोले ना कि वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन है, तो संतरा एक वर्ग हुआ। उसी तरह से एक नारंगी वर्ग होता है, कागजी नींबू वर्ग होता है, तो इसका वर्गीकरण बहुत है। तो संतरा में अगर हम वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट किस्म है, मुख्य है किन्नो, जो कि हम लोग यहाँ भी लगाए थे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी किन्नो हम लोग लगाए थे, 200 के करीब प्लांट हम लोग लगाए थे, और यहाँ भी अच्छा उपज दिया और दे रहा है। अभी तो बहुत 10 साल हो गया है, तो पौधा करीब करीब डिक्लाइन के कंडीशन में है, लेकिन यहाँ उपज बहुत अधिक आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का जलवायु जो है संतरा के लिए उपयुक्त है। इसमें किस्में हैं, किन्नो है, कुर्ग है, नागपुर है, खांसी है, लेकिन किन्नो में बहुत अधिक उपज आता है। अब नारंगी की बात करें तो इसमें सभी किसान भाई जानते हैं कि बाजार में मौसमी बहुत बिकता है, सभी लोग, बच्चे बड़े आदमी सभी लोग जानते हैं मौसमी, और इसका जूस खास करके इसका हम लोग जूस निकाल कर पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? क्योंकि इसका छिलका जो होता है आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं, छिलका काफ़ी उसका जो जूसी पार्ट रहता है अंदर में वो उससे सटा हुआ रहता है, वो इजीली अलग नहीं होता है, उसको चाकू से अलग करना पड़ता है। यही सब इसका, इसीलिए इसको वर्गीकरण किया गया। संतरा अलग है, हम छिल के खाते हैं, लेकिन नारंगी में किस्म है जैसे हेमलिन है, मौसमी है, ब्लड रेड है, जाफा है, बहुत सारी किस्में हैं, तो इसको हम लोग छिल कर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइट स्किन, यानी कि वो सटा रहता है, गूदा से सटा हुआ रहता है। अच्छा। तो उसको चाकू से छिल करके फिर उसका जूस निकाल कर लोग पीते हैं, इसलिए कहता है कि मौसमी का जूस मार्केट में बहुत मिलता है जी। अब बात करें कागजी नींबू की, तो कागजी नींबू क्या है कि इसको हम लोग जैसे कि सलाद में डाल कर खाते हैं, या चाय बना कर पीते हैं, या दाल में डालकर खाते हैं, मतलब इसको हम लोग इसका रस को यूज़ करते हैं खाने में, और इसका अचार भी बना सकते हैं, कागजी नींबू का ही हम लोग अचार भी बनाते हैं। तो ये पुराना है, घर में लोग अचार बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही एपेटाइजर का काम करता है, इसको खाने से पेट का दर्द कहता ठीक हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है। तो इसके फल से अचार, शरबत, साइट्रिक एसिड इत्यादि बनाया जा सकता है
9: जी। तो किसान भाई यहाँ पर किस्मों की बात आपने यहाँ पर आपको बताएगी, जिसमें कि वर्गीकरण के बारे में मैम ने आपको बताया। मैम पौध तैयार, जब खेती की ओर जाते हैं तो पौध तैयार की बात सबसे पहले की जाती है, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई?
10: हम पौध तैयार करने की का बहुत सारा विधि है, जैसे कि कलम विधि से भी कर सकते हैं। कलम विधि क्या है कि आप जो सूट होता है, जो तना होता है, परिपक्व तना, जैसे कि ब्राउन जिसको हो जाता है तना, उसको परिपक्व कहते हैं। अर्ध परिपक्व, जैसे कि हरा ही है तना और उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश भी आ गया है, तो उसको अर्ध परिपक्व कहते हैं। और तीसरा है मुलायम, कि हरा ही है तना, हरा है। तो तीनों का कटिंग करके हम इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। किसी इसमें क्या है कि 15 से 20 सेंटीमीटर काटते हैं और तीन भाग को सॉइल में डालना है, मिट्टी में डालना है, एक भाग ऊपर रहेगा मिट्टी से ऊपर।
11: अच्छा।
10: और ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए इस कार्य को, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जून जुलाई में वर्षा का सीजन है हम लोग के जगह यहाँ, तो जून जुलाई में करने से सक्सेस अच्छा होता है। किसान भाई इसको मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, जहाँ की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अगर कटिंग हम लगाते हैं तो फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं और सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें भी सक्सेस होता है। और है गुटी बांधना, आप देखेंगे कि गुटी पौधा में ही मिट्टी ले जाकर बांधते हैं और उसको पॉलीथीन से रैप करते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद उसमें जड़ आता है, उसको काटकर अलग कर लिया जाता है और फिर पॉटिंग करके कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा हो। जब जड़ का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में लगाता है। और है चश्मा मेथड, चश्मा मेथड उसको बोलते हैं, बडिंग, यानी कि बडिंग मेथड से भी इसका प्रवर्धन करते हैं। ये भी अगस्त सितंबर में इसका अच्छा देखा गया है, और हम लोग के कंडीशन में दिसंबर में और फरवरी मार्च में इसका जो है चश्मा मेथड या वेज ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने किया है। वेज ग्राफ्टिंग में भी ये अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, 80% सक्सेस आता है, और ये इसको हम लोग दिसंबर में और फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि मूल वृंत का जरूरत पड़ता है, मूल वृंत जिसको बोलते हैं कि नीचे का जो रूट स्टॉक बोलते हैं, जिस पर कि हम लोग ग्राफ्ट करते हैं पौधा को, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक या मूल वृंत हिंदी में बोलते हैं। तो इसका अलग वेराइटी होता है। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मूल वृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है, तो वो बीमारी से बचाता है, वो जलवायु से बचाता है, एडवर्स सिचुएशन जो जलवायु का होता है, प्रतिकूल स्थिति जैसे हवा, वर्षा, आंधी, तूफान, उससे ये जो मूल वृंत है, रूट स्टॉक है, वो पौधा को बचाता है। इसलिए रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वेराइटी हैं, जंभीरी है, जट्टी खट्टी है, करना खट्टा है, बहुत सारा रूट स्टॉक है, उसको प्रयोग में लाने से पौधा का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है।
11: तो इस प्रकार किसान भाइयों, अभी आपने पौध तैयार की जो विधि है वो जानी, और मैम इसके बाद ज़रूरी है इसकी खेती में या फिर किसी भी फसल की खेती में कि खाद हम कितनी मात्रा में दें, कौन से खाद दें, सिंचाई कब करें, कटाई छटाई कब करें, पौध रोपण कब करें, कैसे करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू वर्गीय फलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को कैसे करना चाहिए?
10: हम जैसे पौधरोपण की बात करें तो जैसे सब फल वृक्ष का पौधरोपण करते हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, फिर गड्ढा बनाना, तो ये कार्य जो है अप्रैल मई में हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर अप्रैल मई में जुताई उसकी की जाए और जुताई कर 10-15 दिन छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कीड़े हैं, जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अप्रैल मई में ज़मीन की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद फिर पाटा चलाकर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढा हम देखिए, नींबू का हम शुरू में ही बोले कि इसका वर्गीकरण अलग होता है, इसका पौधा का साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, अब डवा नींबू लगा रहे हैं या कागजी नींबू लगा रहे हैं या संतरा लगा रहे हैं या मौसमी लगा, उस अनुसार से उसका लेआउट करना पड़ता है, यानी कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी हम लोग उसी अनुसार से रखते हैं जो हम लोगों ने सोचा है कि हमको ये लगाना है, उसी अनुसार से करते हैं। जैसे आप मौसमी के केस में 5 मीटर आप रख सकते हैं पौधा से पौधा और कतार से कतार, संतरा आप लगाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए 6 मीटर है, और महानींबू है उसके लिए 7 मीटर है, अब चकोतरा है जिसको कि डाभा नींबू को बोलते हैं, इसके लिए 8 मीटर, इसका पौधा और बड़ा होता है। तो इस अनुसार से हम लोग कहते हैं कि प्लांटिंग डिस्टेंस आप बना लीजिए और ले आउट कर लेना है। उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें 40 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो हड्डी का चूरा और 1 किलो राख 3 टोकरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। अब गड्ढा भरने के बाद एक बारिश कम से कम जरूर होना चाहिए, पौधा लगाने से पहले एक बारिश हो जाए जिससे कि गड्ढा का मिट्टी जो है जो हम भरे हैं वो अच्छी तरह बैठ जाए। फिर उसको ले आउट करके जहाँ बीच सेंटर पे जहाँ पौधा लगाने का जगह है वहाँ पर पौधों को लगा देना चाहिए। ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए, पौधे लगाने का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए जब बरसात शुरू हो जाता है
11: जी।
10: अब खाद की बात करें तो पहला वर्ष आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो अनुपात है 75 ग्राम 40 ग्राम और 75 ग्राम रखना चाहिए, और ये अनुपात हर एक साल बढ़ते जाएगा। जैसे 75 ग्राम पहली साल था नाइट्रोजन, तो दूसरे साल 150 ग्राम होगा, फिर तीसरे साल 225 ग्राम होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 10वें साल में नाइट्रोजन की मात्रा 750 ग्राम होगा और फॉस्फोरस की मात्रा 400 ग्राम होगा और पोटास की मात्रा 750 ग्राम होगा। ये 10वें वर्ष में देना है पौधा को, और यही जो खाद की मात्रा है यही हर एक वर्ष अब पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि पौधा मेरा मैच्योर हो गया है, अब उसको इतना ही भोजन हर एक वर्ष चाहिए। इसके अलावे हम लोग कहते हैं कि खाद FYM जो होता है सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो प्रति पौधा देते रहना चाहिए। अब सिंचाई की बात करें तो गर्मी के दिन में वीकली इंटरवल पर सिंचाई करना चाहिए, यानी सप्ताह में एक बार, और जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए
11: जी।
10: अब निकाई गुड़ाई की बात है तो वो तो बरसात के समय में घास बहुत निकल आता है, तो उसका बीच बीच में सफाई होते रहना चाहिए जिससे कि मेरा जो मेन क्रॉप है नींबू का वो अच्छा रहे। अगर अधिक घास रहेगा तो उससे बीमारी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कटाई छटाई की बात करें तो नीचे 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर कोई तना नहीं रखना चाहिए। जैसे पौधा हम लगाए तो 40 सेंटीमीटर मेरा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हम बाद में गड्ढा के चारों ओर खाद डालेंगे, वो सब कार्य करने में हमको आसानी होगा, निकाई गुड़ाई करेंगे तो वो सब कार्य करने में अगर नीचे से ही मिट्टी के सतह से ही अगर दूसरा सूट निकल जाएगा, तना निकल जाएगा, तो वो जो निकोनी गरोनी का जो कार्य है, खाद पानी देने का जो कार्य है वो बाधित होगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करनी चाहिए
11: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने पूरी जानकारी पाई कि कैसे आपको पौधरोपण करना है, खाद आपको कैसे देना है, सिंचाई कटाई छटाई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। और अब अंत में बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। मैम तो ये भी बता दें कि क्या मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को उपज।
10: फलों को तोड़ना जैसे कि अब जब फूल लगता है नींबू में उसके 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा नींबू हमने लगाया है। तो इस तरह से, और जब फल सेट होता है, जब पकने की स्थिति में होती है, जब मैच्योर होने की स्थिति में होती है, तो कलर का, उसका फल का जो कलर है थोड़ा चेंज होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा किस्म है। सभी का फल जो है पीला पूरा नहीं होता है, तो किसी किसी में हरा ही रहता है, थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है, थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति, उसके जाति, किस्म, बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे से, माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है, प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरे, संतरा की बात करें तो 1000 से 150 फल प्रति पेड़ मिलता है। अब ग्रेप फ्रूट की बात करें तो 300 फल प्रति पेड़ मिलता है। लाइम, लाइम की बात करें तो 1000 फल प्रति पेड़ मिलता है। इस तरह से जो किस्म है, जो जाति है, उस अनुसार से उसका उपज प्राप्त होता है।
11: जी, तो किसान भाइयों, इस प्रकार यहाँ पर बातें हुई नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में, और साथ ही बिहार में इसकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं उनकी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नींबू वर्गीय फलों के बारे में, और अगर आप व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि कितना उपज प्राप्त हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय को लेकर और हम हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम गौरव। सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजे बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अपने साथ मिलकर समझाना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप ही सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और यह समझे कि हर व्यक्ति को अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी भी अफवाह यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ले। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गाँव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और लोगों की जेब पर भी स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान अपना स्वास्थ्य सिर्फ और उसके शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसान पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आजकल जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, जैसे वैक्सीन के नुकसान होते हैं या कुछ बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर के से सलाह लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलनी चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जाँच, इलाज और बाद की देखभाल भी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी यह है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोगों को उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। यह इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सही खान पान एवं व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है सांक्रामक बीमारियाँ, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण या सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जैसे मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है। और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत के कारण बन चुकी है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन हर राज्य में समान ये नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर होता है।

0: साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोग सिस्टम पर भरोसा होगा तब वो समय पर इलाज करवाएंगे।
1: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे समझा जाए?
0: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वह जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और सभी कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहां थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर आता है जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़ा अस्पताल जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है? इस स्थिति को कैसे समझा जाए?
0: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वही जगह है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता, कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहां थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिन्हें सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत होती है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती जहाँ जांच की सुविधाएँ सीमित होती हैं, लेकिन सरकार लगातार इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों में पहले से ही धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता है, वे बिना कोशिश किए वहाँ जाना ही बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
1: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बड़े अस्पतालों में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है जिसको दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएँ जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जानकारी और सलाह भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीज़ों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराना इलाज का रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UVN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिसका टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोग समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारियाँ बहुत फैलती हैं, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैलाई जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे ज़माने में टीका तो लगाया ही नहीं, फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए

0: इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है, तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सके।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
0: सबसे पहले, किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछे, समझे, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहीं सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए खास विषय हर रोज की तरह लेकर आते हैं, तो आज भी बिल्कुल कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर मंकेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कतरनी धान के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताएं।
7: नमस्कार कृषक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप सब कतरनी धान की खेती, खासकर भागलपुर और बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आप कतरनी धान की खेती बहुत बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं, और जिस हिसाब से ये किसान आगे बढ़कर खेती कर रहे हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता शुरुआत करता हूं। मैं डॉक्टर मंकेश कुमार हूं, मैं पौधा प्रजनन विभाग में कनीय वैज्ञानिक हूं, और मेरा काम विशेषकर सुगंधित चावल और खासकर कतरनी पर ही रहा है। तो कतरनी धान जो आप किसान बंधु जानते ही हैं, कतरनी धान जो है बिहार का एक गौरव है, खासकर भागलपुर ज़िले का एक पहचान इसी जाना जाता है। तो ये एक बहुत प्रचलित सुगंधित चावल है जो मध्यम पतला दाना होता है इसका, और एक नदी जो चानन नाम की नदी है जो बांका ज़िले में बहती है, उस नदी के आसपास के इलाकों में इसको लगाने के बाद इसमें एक विशेष तरह की खुशबू आती है। साथ ही साथ बांका के अलावा जैसे भागलपुर में दो प्रखंड हैं, जैसे आपका सुल्तानगंज है और आपका भागलपुर के दो प्रखंड, और मुंगेर के भी दो तीन प्रखंड हैं, और बांका के 4-5 प्रखंड हैं, इसमें कतरनी धान में एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता वाली कतरनी धान होती है, जिसके कारण इसको 2017 में एक भौगोलिक सूचकांक का टैग प्राप्त हुआ है। इस टैग के प्राप्त होने के बाद किसानों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, जो उसको उनको एक कतरनी धान उगाने के लिए एक अधिकार प्राप्त, एक पेटेंट की तरह एक अधिकार, स्पेशल अधिकार देती है, जिसके चलते उसको कमर्शियल लेवल पर भी ले जा सक करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
5: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं थोड़ा खेती की, तो कतरनी धान के बिचड़े लगाने की क्या विधि है?
7: किसान बंधु, कतरनी धान का बिचड़ा जैसे अन्य धान लगाया जाता है उसी प्रकार लगाते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि इसमें कतरनी धान जैसे लंबे दिनों की प्रजाति है, तो इसको किसान बंधु इसको जुलाई के दूसरे हफ्ता में इसको लगाएं, जिसका बीज दर लगभग 25-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। और बीज लगाने से पहले बीजोपचार अगर कर दे तो किसान बंधुओं को आगे कीट और व्याधियों की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। तो बीजोपचार के लिए बेविस्टिन जो है पाउडर है 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम, या ट्राइकोडर्मा जो एक फंजाई होता है उसको बाजार में उपलब्ध होता है, उसका 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ PSB कल्चर के साथ मिला करके, और एजेटोबैक्टर भी अगर चाहें तो एजेटोबैक्टर का कल्चर भी साथ में मिला करके बीज को ट्रीट करें, और उसके साथ ट्रीट करने के बाद उसको जूट गीले जूट बैग में उसको रखते हैं करीब 24 घंटे के लिए, और उसके बाद देखें कि बीज अगर अंकुरित हो रहा है, हल्का अंकुरित हो गया है, तो उसको एक जो बिचड़े लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपरी जमीन को ऊपर करके एक क्यारी बनाते हुए ऊपर उसके बीज को छिड़काव करें, और फिर आप देखेंगे कि बीज मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे रूप में और हेल्दी बीज का जो है जर्मिनेशन हो जाता है। तो आप बीज उपचार करें, उसके बाद बुआई का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बुआई जो है 15 से 25 जुलाई के बीच में करना चाहिए, या आप चाहेंगे कि पहले हम कर दें जून के माह में कर दें और हमारा फसल अच्छा आएगा उपज, तो ऐसा नहीं है। आपको ये, क्योंकि ये प्रकाश संवेदनशील प्रजाति है, तो पहले लगाएंगे आप तो इससे उसके उपज में असर पड़ेगा, उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा लेकिन उसका दाना कम बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको 15 से 25 जुलाई के बीच के समय में ही उसको लगाएं। और रोपने के लिए आप 20 से 25 दिन के बिचड़े को आप यूज कर सकते हैं, उसको आप क्यारी से अच्छे तरह से उखाड़े, उसको पानी उसका रहना चाहिए, जड़ नहीं टूटना चाहिए उखाड़ते समय, और प्रति खूंटा बिचड़ा जो है आपको 3 से 4 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब एक हिल पे या एक जगह 4 से 5 पौधे से ज़्यादा मत लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। रोपाई की दूरी आप चाहें तो 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे के बीच में और पंक्ति के बीच में रखे तो ज़्यादा अच्छा आपका फसल होगा। जी
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिचड़े लगाने की विधि की, अब बात करते हैं थोड़ा सस्य क्रियाओं की, तो क्या कुछ सस्य क्रियाएं होंगी कतरनी धान में?
7: जी जी, ये कतरनी धान, जैसे किसान बंधु आपको कतरनी धान की जो खेती करते हैं उनको अनुभव होता ही होगा कि कतरनी धान में आप अन्य जैसे फसल धान की प्रजातियाँ हैं जैसे उसमें उर्वरक आप ज़्यादा डालते हैं, छिड़काव मतलब इंसेक्टिसाइड का या जो भी खरपतवार नाशी जो केमिकल है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का अनुभव ये बताता होगा कि कतरनी धान में ये सभी चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो इसका उल्टा ये परिणाम है कि अगर आप खाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे या ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो कतरनी का जो विशेष गुण है जिसके लिए वो जाना जाता है वो उसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कतरनी धान में जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है या जैविक खेती जो किया जाए उस पर ही आप ज़्यादा उस पर आप आगे बढ़ें। तो इसमें जो खाद हरे खाद का अगर उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है। इसके लिए जो ढैंचा जो कहते हैं एक, वो उसको आप प्रति ज़मीन जैसे रवि का फसल कटने के बाद प्रति ज़मीन जो रहता है उसमें आप ढैंचा का प्रयोग करें, उसको आप बीज जो है आप जून माह के अंत में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में छिड़काव कर दें, और जब वो पौधा ढैंचा का 55 से 60 दिन का हो जाए जो जुलाई के अंत तक जब कतरनी को रोपने का जब समय आए तब उस ढैंचा को काट दें, उसको दबा दें उस खेत में और FIM का प्रयोग करें, तो ज़मीन जो है बहुत ही अच्छा कंडीशन में आ जाता है जिससे कतरनी का खेती बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो सामान्यतः एनपीके का 40, 30 और 20 का ये रेशियो होना चाहिए, और इससे ज़्यादा आप एनपीके का प्रयोग ना करें। जो है आप जिंक, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय दे दें, और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है पहले तो आप एक आधी मात्रा बुआई के समय करें, फिर एक तिहाई भाग 7 दिन पर और शेष एक तिहाई भाग कल्ले निकलने पर आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल दें। बासमती धान जो है उर्वरक की मांग कम होती है, इसलिए कार्बनिक खेती को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कार्बनिक खेती करने से पोषक तत्वों की आपूर्ति गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा जैसे मुर्गी पोल्ट्री का जो बीट है आदि स्रोतों से पूरी करनी चाहिए। तो कार्बनिक खादों को खेत के में रुपाई से 2 सप्ताह पहले मिला देना चाहिए, क्योंकि आप रुपाई करने के बाद डालेंगे तो कोई उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। और इसके लिए खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक संसाधनों का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो खरपतवार, जैसे आप कहते हैं कि खरीफ के फसल में खरपतवार का भी ज़्यादा समस्या होता है, तो खरपतवार के लिए आप रोपनी के 3 से 5 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC का प्रयोग करें। उसको 15 किलोग्राम 50 ब्यूटाक्लोर लेकर के 500 लीटर जल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, और उसके बाद रोपनी के 25 से 30 दिनों के बाद एक बिस्पारी वेक सोडियम 10 ग्राम प्रतिशत जो है SC 25 ग्राम सक्रिय दवा को 500 लीटर प्रति हेक्टेयर जल के में घोल करके आप करें। तो ये आपका सस्य क्रियाएं है, कतरनी की ये जो है जिसको आप अपना सकते हैं।
5: जी डॉक्टर साहब, अब अगर फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद भंडारण किस प्रकार से करें?
7: जी जी, जैसे कतरनी में आप मैंने कहा था कि कतरनी जो है लंबे दिन की प्रजाति है, और ये पकने की जो अवधि है इसकी 150 दिन से ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये जब ये पकता है तो हमारा जाड़ा का सीजन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो समस्या ये होती है कि उस टाइम धूप निकलना बंद हो जाता है और दाने में मॉइस्चर का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसानों को इसका भंडारण में समस्या आती है। तो आप ये भंडारण के समय ये ध्यान रखें कि इसमें 14% तक नमी रहे ये भंडारण के समय, और इसको अच्छी तरह से सुखा लेने का कोशिश करें, और नई बोरी का प्रयोग करें, पुरानी बोरियों को ना यूज़ करें। अगर पुरानी जो बोरी है तो उसमें आप कोशिश करें कि दाना जो है पुराना धान का दाना उसमें ना रहे, उसको झड़वा दें, और गोदाम वाले भंडारण वाले गोदाम को अच्छी तरह से साफ कर 4 लीटर मलाथियन या DDVP का 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देना चाहिए। और कुछ लोग मटके में भी भंडारण करते हैं, तो उसमें भंडारण करने के लिए आप 500 ग्राम सूखी नीम की पत्तियों को डालकर धुआं करें तथा ऊपर से बंद करके वायु अवरोधी करें। किसान भाइयों, इसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि कतरनी जो एक सुगंधित धान है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जब छाँव में इसको जब सुखाएंगे तो इसका जो सुगंध है ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। अगर तेज़ तीखे धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका सुगंध जो है थोड़ा कम हो जाता है, जैसा मेरा अनुभव है। तो जब खिली धूप हो और कहीं छाँव में इसको सुखाएं तो इसका सुगंध जो है बहुत दिनों तक बरकरार रहता है।
5: जी डॉक्टर साहब, और कतरनी धान में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग, व्याधि और कीट भी लगते हैं, तो इसका उपचार कैसे करें?
7: जी जी, कतरनी धान एक सुगंधित प्रजाति होने के चलते ये जो कीटों के लिए बहुत आकर्षण का ये फसल होता है। जी
5: सुगंध की।
7: जी, तो इसमें एक गंधी वर्ग एक कीड़ा होता है जो ज़्यादातर सुगंधित धानों में पाया ज़्यादा अटैक करता है, तो उसके लिए ये गंधी वर्ग जो है ये जब बालियाँ निकल जाती हैं तो इसके बालियों से रस चूस करके बालियों को सुखा देता है। तो इसके लिए आप मालाथियन या कार्बोरिल 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें, और इसमें एक येलो स्टेम बोरर का एक प्रॉब्लम है जो पीला तना छेदक कहा जाता है इसको, तो उसके लिए आपको आपको जैसे इसका प्रकोप नर्सरी के टाइम से ही शुरू हो जाता है, पीला तना छेदक उसमें अंडा देना शुरू कर देता है। तो जब आप रोपनी करते रहें करने जाएं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका जो ऊपर का पत्ता का हिस्सा है उसको तोड़ दें, तो ऊपर के पत्ते के हिस्से में जो इसका अंडा है वो हट जाएगा और रोग मुक्त हो, ये कीड़ा के अंडे से रहित हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फसल लगने के बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए रोपनी के 3 हफ्ता के बाद आपको कार्बोफ्यूरॉन प्रति 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 4-8-10-10 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर एक कारटाप एक दवा आती है जिसकी 10 ग्राम प्रति 25 केजी ग्राम प्रति हेक्टेयर का एक बार प्रयोग करना चाहिए
5: जी।
7: और इसके बाद 20 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 cc जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में या क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा आती है जो 20 cc इसका स्ट्रेंथ होता है और 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर जैविक तरीके से अगर इसका नियंत्रण करना चाहें तो सबसे बेहतर है क्योंकि इससे इसका सुगंध बरकरार रहता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए रुपाई के 30 दिनों के बाद 10 दिनों के अंतराल पर एक ट्राइको कार्ड आता है जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये कई किसानों को दिया गया है और ये ट्राइको कार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। इसका प्रयोग करेंगे तो ये येलो स्टेम बोरर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है
5: जी। अब अंत में बात आती है उत्पादकता बढ़ाने की, तो क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि कतरनी धान की उत्पादकता को हम बढ़ा सकें?
7: जी जी, ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि कतरनी का जो उत्पादन है उत्पादकता जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है क्योंकि वो प्रजाति जो है लंबा होता है और अपने दाना के वजन से ये जो है जब पकता है तो ये गिर जाता है, इसके चलते इसमें जो है उपज बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ ये दिक्कत है ये कि जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबी है, तो जो किसान गेहूं लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं सकते हैं दिसंबर के माह में। तो उत्पादकता मतलब किसान जो है कतरनी की धान की खेती नहीं करना चाहते हैं, इसके चलते इसकी कम उत्पादकता भी जिम्मेदार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2013 या 12 के आसपास किसानों के यहाँ से शुद्ध कतरनी को ला करके उसमें एक ब्रीडिंग प्रोग्राम किया और बौना कतरनी को डेवलप किया है और वो अंतिम चरण के स्टेज में है। और उस बौने कतरनी के में ये खासियत है कि वो उसकी उत्पादकता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और उसके पकने की अवधि भी कतरनी से 15 से 20 दिनों की कम है। तो अगर ये बौने प्रजाति किसानों के बीच में आएगी तो इसकी उत्पादकता अधिक होने के चलते किसान भी इसको लगाएंगे और इसको लगाने के साथ साथ किसानों का जो है इससे आय भी वृद्धि हो सकता है
5: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में उत्सुकता रहती है, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं जिसका जवाब आपने दिया। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार क्षेत्र में, हमारे भागलपुर क्षेत्र में खास कतरनी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, बाज़ार में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है इसके खास विशेषताओं की वजह से। तो आज जो भी वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
8: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
9: खुद भी बचे देश भी बचाए।
10: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
11: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
12: कौन सी कहानी टीकी?
11: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
13: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
11: एक था बड़ा शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
11: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
13: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
14: उन्नत कृषि।
5: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और जहां तक बात आती है हमारी मिट्टी की, तो जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमें स्वस्थ फसल प्राप्त होंगे, और मिट्टी रसायन मुक्त रहेगी तभी हमें जो पोषक तत्व हमारी फसलों से, हमारे अनाज से मिलने चाहिए वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखें और फसलों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो दलहनी फसलों में जब तक जैव उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो फसल है वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज इसके विषय में हम जानेंगे कि दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग क्यों और कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं मृदा विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर AK झा, जो आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सर स्वागत है आपका।
15: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सर सबसे पहले तो जैव उर्वरक क्या होता है इसकी जानकारी दें।
15: बड़ा आपने शमशीन प्रश्न पूछा। जैव उर्वरक का मतलब होता है वह जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह प्रयोग किया जा सके। अब जीवित पदार्थ का मैंने कहा तो उसमें देखिए बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, एक्टोमाइसिट्स, ये सब भी क्या है? जीवित पदार्थ ही हैं। और उर्वरक का काम क्या होता है? पोषक तत्व प्रदान करना। तो वह जीवित पदार्थ यानी जैसे आप राइजोबियम की बात करती हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, तो वो प्रयोग में आता है। इसी तरह से एजोटोबैक्टर है तो वहां पर एजोटोबैक्टर नाम का जो जीवाणु है वह काम करता है। तो इसी तरह से कोई भी जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह काम करे यानी पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे पौधों को, उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं।
5: जी, ये कितने प्रकार के होते हैं सर, कितने तरह के होते हैं?
15: ऐसा है कि देखिए जैव उर्वरक, अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे नाइट्रोजन यदि वो प्रदान करता है तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं या जैव उर्वरक कहते हैं। अब जैसे इसमें हमने अभी बताया दलहनी की बात कहा, तो दलहनी फसलों में जो राइजोबियम है या ब्रेडी राइजोबियम है उसकी जड़ में गांठ बनाने का काम करता है, तो वह भी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ही है लेकिन यह सहजीवी है। इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा राइजोबियम है, इस राइजोबियम को खाना और रहने का जगह यह प्रदान करता है पौधा, और उसके एवज में वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यानी सहजीवी जीवाणु ये है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, तो दलहनी फसल नहीं है तो क्या वो उसमें नाइट्रोजन के लिए नहीं है कोई उपाय? बिल्कुल है जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं जो एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि धान वगैरह बरम है उसमें एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो कई तरह के इस ढंग के नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं, लेकिन अब यहां पर केवल नाइट्रोजन से तो हमारी फसल नहीं बढ़ेगी, उसको फॉस्फोरस भी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं जो फास्फोरस घुलनकर जीवाणु है उसके भी कल्चर आ गए हैं, वो भी जैव उर्वरक हैं। वास्तव में क्या है कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में काफी है लेकिन वह फास्फोरस पौधे को मिल नहीं पाता है, क्योंकि वह फास्फोरस किसी दूसरे रूप में है। जैसे हम धान नहीं खाते हैं उसको, पहले हम चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, तो इसी तरह से वह जो फास्फोरस है वह फास्फोरस आपको नहीं मिल पा रहा है। तो फास्फोरस घुलनकर जिसको फास्फेट सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो वह PSV का भी कल्चर आ गया हुआ है, तो वह भी है। इसके अतिरिक्त आज के तारीख में बहुत सारी कंपनी जिंक मोबिलाइजर बनाती हैं जो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करता है। इसी तरह से पोटेशियम मोबिलाइजर भी आ गया है जो पोटेश को मोबिलाइज करता है। इस तरह से बहुत सारे जो द्वितीयक या सूक्ष्मात्रिक तत्व हैं उसको भी करने की बात है, लेकिन उसके अभी कल्चर मार्केट में नहीं आए हैं। अभी मुख्य रूप से जो राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है, एजो स्पायरलम है, पीएसबी है, ये सब मार्केट में आपको ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन कई और भी हैं जो शोध के स्तर पर हैं। तो कई तरह के आपके ये होते हैं
5: जी। इसके प्रयोग के फायदों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
15: अभी हमने इसमें ही आपको बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है वह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। अब देखिए दो बातें यहां पर है, एक है अमोनियम फिक्सेशन। तो अमोनिया फिक्सेशन जो है वो गड़बड़ चीज है। यह जो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में मिट्टी में स्थिरीकृत कर देता है, यानी जो उपलब्ध है उसको अनुपलब्ध रूप में आपने कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लगभग 78-79% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। जब तक कि उस नाइट्रोजन को आप परिवर्तित नहीं कर लेते हैं उसके उपलब्ध रूप में। अभी हमने आपको पीछे भी बताया है कि हम धान नहीं खाते हैं, हम भात खाते हैं, तो धान को भात में बदलने का काम यह सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि यह अपने आप में एक छोटा यूरिया की फैक्ट्री है। अब देखिएगा, यूरिया जहां पर बनता है वहां पर हाई टेम्परेचर रहता है, और वहां पर फॉसिल फ्यूल जो नेफ्था नाम का हो सकता है या नेचुरल गैस है, उसकी उपस्थिति में आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में उसमें आप जो है बुश एंड हैबर प्रोसेस से आप यूरिया बनाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को बनाने का काम करते हैं। वही काम यह जो आपका राइजोबियम है वह जो समान आपका खेत का टेम्परेचर है उस पर करने का काम करता है। वास्तव में उसमें एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, और लेग होमोग्लोबिन होता है, तो इसकी उपस्थिति में यह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो एजोटोबैक्टर है, एजो स्पायरलम है, यह सहजीवित नहीं है, लेकिन यह आपको एसोसिएटिव है। इसके जड़ से जो कुछ निकलता है रूट एक्जुडेट, उसी रूट एक्जुडेट को खा करके और उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता है। तो यह उतना नहीं करता है जितना राइजोबियम करेगा, लेकिन यह भी काफी अच्छी मात्रा में करता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे ड्रक्सिया हो गया, बेजरिंकिया हो गया, या ब्लू ग्रीन अलगी जो नील हरित शैवाल कहते हैं। तो नील हरित शैवाल में कई प्रजातियां हैं, जो नस्टक, एनाबिना, एनाबिनप्सिस, एफेंजोमिना, एलोसिरा, प्लेक्टोनिमा, तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आपको ये वायुमंडल के नाइट्रोजन लेकर के और उसको स्थिरीकृत करते हैं, यानी पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह से हमने आपको बताया, जैसे फास्फोरस की बात कहा, तो फास्फोरस को घुला दिया, पौधे को उपलब्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कम भी फास्फोरस है। आज हमारी निर्भरता रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ज़्यादा है, तो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हमारी निर्भरता न रहे। हमारी जो पहले देखिए ना, हमारी मिट्टी में खुद ब खुद था, क्योंकि हमारी मिट्टी में कार्बन काफ़ी था, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी थी, तो हमारी मिट्टी में इसकी संख्या खुद ब खुद थी, अलग से आपको कल्चर डालने की जरूरत नहीं होती है। यदि बुजुर्ग लोगों से पूछें कि क्या आप राइजोबियम कल्चर डालते थे, क्या आपने पीएसबी डालते थे, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं डालते थे, क्योंकि हमारी मिट्टी में इसकी संख्या थी। जो भी कालक्रम में हमने जो रसायन, जहरीले रसायन प्रयोग किए, कार्बन की मात्रा घट गई। पहले आपको बताएं कि 70 वर्ष पहले हमारी मिट्टी में 1% से ज्यादा कार्बन था, और वो आज घट करके 0.3% के आसपास हो गया हुआ है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन आपके जल धारण क्षमता को भी प्रभावित करता है, तो इन सब कारणों से उसकी संख्या घट गई है, इसीलिए अलग से हम इसको कल्चर मिला करके देते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस का भी बताया, और दूसरे भी जैसे KM भी बताया, पोटेशियम मोबिलाइजर या जिंक मोबिलाइजर, ये सभी प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम को बढ़ाता है, जिंक मोबिलाइजर जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है, तो ये सब फायदे हैं हमारे
5: जी। हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करेंगे?
15: बहुत आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि किसान इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसलिए फायदा नहीं ले पाते हैं। जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल में मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो सहजीवी जीवाणु है, खास करके राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, उसका प्रयोग करता है। लेकिन हमारे किसान ये समझते हैं कि राइजोबियम कल्चर मतलब हर एक फसल में हर एक राइजोबियम डाल दो। जी नहीं साहब, इसमें इसके क्रॉस इनाकुलेशन ग्रुप होते हैं, यानी कि हर एक दलहन के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कई प्रजातियां हैं, वह अलग अलग प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, लेग्युमिनोसोरम, फेजोली, मेलिलोटी, कई तरह के प्रजातियां हैं। तो आप प्रयोग करने के पहले यह देख लें कि क्या जो हम दलहन प्रयोग करने जा रहे हैं उस दलहन के लिए उचित है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आप यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उपचारित अवश्य करें। अब उपचारित करने के लिए आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी में आपको ज्यादा मात्रा में लगेगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप बीज उपचार करें। अब बीज उपचार कैसे करेंगे भाई, कि आप जैसे क्या कीजिए कि थोड़ा सा 200-300 ग्राम आप ले लीजिए पानी, उसको हल्का गर्म कीजिए, उसी में गुड़ 50-100 ग्राम डाल दीजिए, वो जब घुल जाए तो उसको ठंडा कर दीजिए। ठंडा करके उसमें एक पैकेट जिसमें कि मोटे तौर पर 200 ग्राम होता है, वो कल्चर उसमें ठंडा हो जाने पर मिला दीजिए, और उसके जो 10 किलो बीज हैं, जो आपके दलहन के 10 किलो बीज हैं, उस पर आप बढ़िया से हल्के हाथ उसको मिला दीजिए, जिसके ऊपर इसके ऊपर एक परत उसकी बन जाए। अब इसके ऊपर यदि परत बन गई तो उसके बाद आप इसको छाया में रखें, और छाया में रख करके फिर छाया में ही इसकी बुआई कर दें। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान होते हैं जो पीएसवी भी डालना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर भी डालना चाहते हैं, वह कैप्टन थीराम से अपने या ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का उपचार भी करना चाहते हैं कीड़ा से या बीमारी से बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए, उसके घंटा दो घंटा के बाद इंसेक्टिसाइड से यानी कीटनाशी से उपचारित कीजिए, उसके बाद आप जो है फॉस्फेट सोलबलाइजिंग यानी PSV जिसको कहते हैं, तो PSV से उपचारित कीजिए, और सबसे अंत में आप जो नाइट्रोजन स्थिरी कारक जो आपके राइजोबियम है उससे उपचारित कीजिए, और तब उपचारित करके छाया में रखिए, और छाया में ही उसकी बुआई कर दीजिए। और तरीका वही रहेगा जो अभी हमने आपको राइजोबियम के लिए उपचार के लिए बीज उपचार के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो मात्रा है, यदि आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए आपको इस ढंग से नहीं करना चाहिए। तो ये दलहनी फसल में आपको जो जैव उर्वरक है उस जैव उर्वरक का उपचार करना चाहते हैं तो ये उसके तरीके हैं
16: जी। इसके प्रयोग के लिए बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में जानना चाहिए?
15: वो मैंने आपको इसी के क्रम में बता दिया। हमने इसके क्रम में ये बताया कि आप जब भी आप प्रयोग करते हैं तो एक तो पहली बात कि जो भी राइजोबियम कल्चर है ये सारी चीजें उसको रसायन से दूर रखिए और छाए में रखिए। तीसरी बात हमने अभी आपको बताया कि जो जिस दलहनी में आप डालना चाहते हैं उसके लिए अलग तरह के राइजोबियम हैं, उस राइजोबियम का प्रयोग कीजिए। चौथी बात यह मैं बताना चाहता हूं कि इसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो पैकेट पर यह भी देख लीजिए कि यह अभी एक्सपायर तो नहीं किया है, एक्सपायरी डेट के बाद आपको नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें है क्या, उसमें तो जीवाणु है, और उसमें जीवाणु में 1 ग्राम में लगभग 10^8 सेल्स जो कैलोरी फॉर्मिंग यूनिट हम लोग CFU बोलते हैं, तो उसमें उतना होना चाहिए। तो यदि आप एक्सपायरी डेट के बाद प्रयोग करते हैं तो उसकी संख्या आपको काफी जो है क्या कहते हैं घट जाएगी, तो उतना फायदा नहीं देगा, तो आपको एक्सपायरी डेट भी देखना है। और धूप में नहीं रखना है, धूप में ना इसका आपको प्रयोग करके बुआई करना है। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, ये सावधानी आप करते हैं तो अच्छा। दूसरी बात, एक चीज़ और, एक सावधानी बात करें कि आप अपनी मिट्टी में थोड़ा कार्बन की मात्रा भाई बढ़ाइए। कार्बन नहीं बढ़ाइएगा तो खेत कल की तारीख में आपकी बड़ी समस्या हो जाएगी, खेती करने में बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए कार्बन की मात्रा यदि ठीक ठाक है तो आपके वैसे भी जो फायदे हैं वो ज़्यादा होंगे, और कल हो सकता है यदि कार्बन की मात्रा अधिक है तो आपने राइजोबियम कल्चर प्रयोग किया है या PSV प्रयोग किया है, हो सकता है आने वाले समय में पुनः आपको उसका प्रयोग न करना पड़े। अरे भाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मिट्टी में उसकी संख्या नहीं है इसीलिए ऊपर से डालना पड़ रहा है। यदि हम पुनः पुराने वाले वातावरण में चले जाएं, सारी व्यवस्था हो जाए, तो हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात हमको किसान भाइयों को समझाना है, ऐसा कीजिए, अपनी मिट्टी की सेहत ठीक कीजिए, अपनी उपज बढ़ाइए, और यदि ऐसा करते हैं तो आप भी खुश, वातावरण भी खुश, और जो आपके प्लानर हैं और सारे व्यवस्थापक हैं वो भी खुश, और आपके बच्चे भी खुश।
16: तो श्रोताओं, आज ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिली है, आशा करते हैं आप इन बातों को ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर फॉलो करेंगे, और अपनी मिट्टी अपनी फसलों को आप स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: Savon? A. A colony in Kolkata. B. A small village in West Bengal. C. A mountain in the Himalayas. D. A forest in Kerala. Second, who was the curious boy that became Sri Ramakrishna's student? A. Mahatma Gandhi. B. Swami Vivekanand. Naren, mentioned in brackets. C. Rabindranath Tagore. D. Sri Aurobindo. Page 102. Third, what kind of life did Sri Ramakrishna live? A. A life full of luxury. B. A simple and loving life. C. A life of traveling. D. A secretive life. Fourth, what did Sri Ramakrishna compare religions to? A. Trees in a forest. B. Stars in the sky. C. Rivers flowing to the ocean. D. Books in a library. Fifth, what did Sri Ramakrishna teach Naren? A. To find a teacher. B. To become wealthy. C. To travel the world. D. To find peace. Did you know? The banyan tree is the national tree of India. It can live for over 200 years and grow to cover several acres of land. Its roots grow down from the branches and become new trunks, making it look like a forest all by itself. Page 103, Letters 2. Part A. Read the passage carefully and answer the following questions. The neem tree. You must have heard of a neem tree near your house or near the school or beside the road. Almost everyone can recognize a neem tree. The neem is a magic medicine tree because almost every part of the tree is used for medicine. Sometimes, sick people are given neem juice to drink. People use the twigs of the neem tree as a toothbrush to clean their teeth. Burn some dry neem leaves inside the house and see the mosquitoes disappear. When you store winter clothing or blankets, keep dry neem leaves between them. This helps keep away insects. When you store rice, keep dry neem leaves at the bottom of the rice bin. This keeps pests away. Answer the following questions. First, where can you find neem trees? Second, why do you think neem is called a magic tree? Third, what happens when dry neem leaves are burnt? Fourth, why do people put neem leaves in clothes and rice containers? Fifth, how are neem twigs used? Sixth, find the meaning of the word disappear from the following options. A. Appear. B. Vanish. C. Grow. D. Fly. Seventh, find the word in the passage which means a short stick. A. Tree. B. Part. C. Twig. D. Leaf. Page 104, Part B. Point out differences in two pictures given. Work in pairs and write down the differences in your notebook. There are two images given on this page. In the first image, the sun is shining brightly. There is a tulsi plant with many branches in the yard. A lady is sitting on the staircase having three stairs. She is holding a hand fan of blue and red color. In the first image, the lady is wearing a yellow sari with geometrical small prints which are pink in color. Blue sandals are kept on the doormat. The lady's hairdo is a bun with flicks on her forehead. There is a big window behind her. In the second image, the sun is shining. A tulsi plant with less branches is kept in the yard. Yellow footwear is kept on the doormat. A lady is sitting on the staircase having two stairs. She is holding a hand fan of yellow and red color. In the second image, the lady is wearing a yellow sari with floral big prints, blue in color. The lady's hair are neatly tied with less flicks and no bun. A small window is behind the lady. Chapter 8 ends here.
1: Santoor, you were just listening to this audiobook. Textbook of English for Grade 5. Narration, Mansi Chauhan. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Kusum Lata. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल. लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी. एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है. टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
6: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन. टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो. टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान. घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे. खांसी खोखो खांसी. बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो. रहे न टीबी, नाम मिटा दो. खांसी खोखो खांसी. टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए.
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर.
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर.
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक.
9: उन्नत कृषि. नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ. दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ़ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है. पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं. तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का. अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं. तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ओयस्टर मशरूम के बारे में. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार. मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में. डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका.
11: थैंक यू मैडम.
9: सबसे पहले तो ओयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं?
11: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है
9: जी.
11: इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया, ओयस्टर प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू. तो ये डजेमर भी एक वैरायटी है। तो ये तीन प्रजातियां बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्रोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्रोरोटस सजोर कॉजी की बात की जाए तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उसमें प्रोरोटस सजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ओस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में।
9: जी, तो ये तो होगी प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब की अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है ये?
11: खास बात इसमें होती है इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं। और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूम से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है। और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है।
9: जी, मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
11: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
9: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
11: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस सजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
9: जी,
11: बिना कोई रुकावट किए हुए।
9: जी मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती?
11: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें है। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है तो गेहूं को हम रोप प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं।
9: जी, और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें हम?
11: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है तो इसमें खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग में इसकी खेती की जाती है ओस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया तो गेहूं, मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
9: जी।
11: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल, जब हम सुखाने के बाद कितना के हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 45x35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 45 सेंटीमीटर लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
9: जी।
11: और उसके बाद हम जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह, इस बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
9: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देख रेख की जरूरत होती है, सावधानियों की जरूरत होती है।
11: अगर प्रबंधन की बात किया है तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के एक दो मीटर तक, चारों तरफ से दो तीन मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम दो केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए एक कुंटल, अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 liter ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम एक कुंटल, एक 100 liter पानी के लिए लगभग 80 gram बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए, जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसिलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर तीन, जब हम बिजाई, जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को हजारे के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगे समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे, नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा, और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके, जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़, एक एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे, तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबस्टीन का ही स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए, जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियाँ,
9: तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, प्रबंधन है जब आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा, थैंक यू। नमस्कार सभी को।
5: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है, वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
8: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है 1st week of July का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त 1st week तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
5: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
8: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं, खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, मैंने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में जरूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन, 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज हो गई। तो पहली चीज मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज कीजिए जो आप अच्छे से एस्टैब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज ये कि बीजोपचार आपको जरूर करना है। तीसरी चीज, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 into, मतलब 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप जरूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है। यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम 3 हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफी ज्यादा यूज करते हैं, पर डीएसआर में आपको पानी बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई डीएसआर होती है, वेट डीएसआर होती है, इसका मतलब कि जमीन जो है आपका बहुत ज्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांट प्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर डीएसआर के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफी होती है यहाँ पे तो सिंचाई नहीं देने की जरूरत पड़ती है, तो आप डीएसआर आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये डीएसआर की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का वो ये है कि इसमें खरपतवार काफी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलीन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरह से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम डीएसआर पे ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
5: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
8: अभी हम जो धान की बुआई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका पीएचबी 71 हो गया, पूसा आरएच 10 हो गया, ठीक है। और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
5: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
9: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
10: खुद भी बचे देश भी बचाए।
11: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
12: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
13: कौन सी कहानी टीकी?
12: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
14: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
14: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूले। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।
1: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगूं संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
2: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही है।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
4: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देती तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
4: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है।
4: चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
4: ठीक है,
3: चल हट, हट,
4: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
1: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को ठिठोली सूझती।
4: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी।
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
1: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
4: अरे अरे,
3: अरे
4: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
4: आराम से।
1: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
4: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
1: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
1: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
4: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
1: दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गौरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
4: अरे सुनो सुनो, देखो जी, इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
4: सुनो तो। अरे रुक जाओ।
1: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
5: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी ये
1: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
4: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
1: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
5: अब देखो,
1: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
2: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
4: हाँ?
2: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
4: अरे हाँ बेटी।
1: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
4: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
1: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
1: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।

संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
5: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
7: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान

0: देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल। और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
1: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
0: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है। लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
0: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहाँ जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी ढाई एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पछिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
0: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें, तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा एक एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए। और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफला टॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: बाद मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास बातें होती हैं आपके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। जानते हैं खेती के बारे में और खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। फिलहाल आज का विषय है हमारा अरहर में लगने वाले कीटों का प्रबंधन। दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत, मतलब ये पौष्टिक से भरे हुए रहते हैं और हमारे शरीर को जो एक पौष्टिकता चाहिए वो मिलता है हमें इन दलहनी फसलों से। लेकिन जब हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं इन्हें उगाने में, इन फसलों को उगाने में, तो कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और वो वजह है कीटों का। जी हाँ, कीट पतंगे जो ये हमला कर देते हैं, तो नुकसान भी होता है फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को। तो आज हम बातें करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, यानी कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, और साथ ही मैं बता दूँ कि ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा विषय है मैम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अरहर फसलों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हो सकते हैं?
10: अरहर फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं फली छेदक कीट, दूसरा है प्लूम मॉथ, पॉड फ्लाई, पॉड बग, काला भृंग एवं दीमक। ये सभी कीट जो हैं अरहर को हानि पहुंचाते हैं।
9: तो हमने जाना कि कौन कौन से कीट हो सकते हैं जो अरहर को मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद मैम, अगर हमारे किसान भाई अगर इसे पहचान जाएंगे तो आई थिंक इसका जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इन कीटों को, जो अलग अलग कीटों के नाम आपने कहे, कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, साथ ही ये भी बताएं कि ये जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के कीटों के नाम कहे आपने, ये भी बताएं कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं।
10: जी, फली छेदक कीट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो है इसका जो लार्वा है ये लगभग 40-50% तक हानि पहुंचाता है। तो फली छेदक कीट, इसका वयस्क वो एक पतंगा है, यह पत्तियों पर, अरहर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर अंडे दे देते हैं, और इन अंडों से फुटकर फिर इल्लियां निकलती हैं जिसे हम पिल्लू कहते हैं। पिल्लू शिशु, ये जो इनके पिल्लू हैं वो फिर पत्तियों पर खाती हैं, और जब फिर जब ये फली लगती हैं तो फलियों में घुसकर खाती हैं। और ये पिल्लू जो है शुरू में हरे रंग के होते हैं, बाद में धीरे धीरे भूरे हो जाते हैं, और ये इनके जो पिल्लू के जो शरीर है उस शरीर पर उनके शरीर के बगल में साइड जिसको बोलते हैं साइड में तीन तीन धारियां होती हैं, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यह जो है फली छेदक कीट का लार्वा है, या जिसे पिल्लू कहते हैं। और यह जब फली लगता है तो फली में घुसकर खाता है। जब जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने आधे शरीर को फली के अंदर घुसा देता है और आधे शरीर को फली के बाहर रखकर उसे खाता है। और ये जो प्लूम मॉथ है, प्लूम मॉथ जो ये, इसका भी वयस्क पतंगा ही होता है, और ये भी पत्तियों पर अंडे दे देती हैं, और इनसे भी फुट करके अंडों से वो पिल्लू निकलते हैं, और जिनके शरीर पर रोएं रहते हैं। और ये जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रकोप अधिक होता है, और शुरू में ये तो कलियों और फूलों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं, फिर जिससे कि फूल और फलियां भी झड़ जाते हैं, और जब फली बनती हैं तब फली में भी छेद कर ये हरे जो दाने होते हैं उनको खा जाते हैं। कभी कभी अधखाए जो दाने होते हैं उन पर सफ़ेद या काले फफूंद भी आ जाते हैं। और जो पॉड फ्लाई है जिसे फली मक्खी कहते हैं, ये काले रंग का और चमकीले पंखों वाली ये मक्खी होती है, और ये जो मादा की मक्खी होती है ये फली के अंदर अंडे देती हैं, और अंडों से सफ़ेद रंग का वो पिल्लू निकलता है जिसे मैगोट भी हम लोग कहते हैं। ये फली के अंदर ही विकसित होकर जो हरे दाने हैं उनको नष्ट कर खाता है, और जिस ये बारीक छेद कर, मतलब बारीक यानी बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद कर फलियों पर छेद बनाकर खाते हैं। और इन छेदों को देखकर जब छेद महीन महीन हो जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फली मक्खी का आक्रमण हो गया है।
9: अच्छा,
10: और पॉड बग ये जो है चूसक कीट है, ये भूरे रंग के होते हैं, और इसके वयस्क और जो निम्फ होते हैं, इसके जो शिशु होते हैं उसको निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ भी ये फलियों से रस चूसकर खाते हैं, जिससे फलियां सिकुड़कर छोटी पतली हो जाती हैं। और काला भृंग, यह भी एक कीट है जिसे एपियन भी कहते हैं। ये पत्तों एवं फूलों पर इनका ये खाते हैं, और जल्द मध्य एवं देर से पकने वाली सभी किस्मों पर जो है अरहर के जो किस्म हैं इन पर इसका प्रकोप होता है। काला भृंग बहुत ही छोटे आकार का होता है, और इसका आगे का मुंह जो वो नुकीला होता है। खरीफ मौसम में यह जो है उड़द और मूंग पर भी दिखाई पड़ता है, और जब अरहर के पत्ती फूल जब अरहर फसल लग जाते हैं तब ये अरहर के पत्तियों और फूलों को छेद कर खाते हैं, और इस तरह से जब फूल को छेद कर खाते हैं तो फूल सूखने लगते हैं। इसका शिशु जो है वो गंदे उजले रंग का होता है, उजला रंग होता है परंतु वो थोड़ा गंदा लिए हुए रंग का होता है। और इसका मुंह का रंग जो है ये मुंह का रंग वो गहरा भूरा होता है और इसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे सी आकार में मुड़ जाता है उस तरह से इसका शरीर मुड़ा हुआ होता है। और यह फलियों में भी प्रवेश कर जो हरे दाने हैं उनको खाता है जी। और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप देखा गया है, सभी इलाकों में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में जिसमें जिन मिट्टी में थोड़ा सा नमी अधिक होती है उसमें दीमक का भी प्रकोप देखा गया है। ये दीमक जो है जो नवजात जो पौधे होते हैं उनके जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं
9: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि ये कौन कौन से कीट हैं, किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं और इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनका प्रबंधन करें इनके पहचानने के बाद ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें। तो मैम अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में
10: जी। हम शुरू करते हैं फली छेदक कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो फली छेदक कीट का प्रबंधन जो है वो जैसे ही वो चना ये सॉरी अरहर जो हम लगाते हैं वैसे ही फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप जो है इसका फली छेदक जो है ये फली छेदक चना को भी हानि पहुंचाता है। और जब अरहर के फूल आते हैं तो उसमें खेतों में चना भी होता है तो चना में भी यह कीट जो है आक्रमण करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे चना में हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं उस तरह से अरहर में भी फेरोमोन ट्रैप, कम से कम जब अरहर में फूल आने लगे फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य लगा देना चाहिए और 3 सप्ताह के अंतराल पर जो फेरोमोन का ल्यूर होता है उसे बदल देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए 3-3 सप्ताह के अंतराल पर। और अगर रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना है तो रासायनिक कीटनाशियों में प्रोफेनोफॉस 50 ईसी दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% जब फूल आ जाए तब करना चाहिए एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां जब लग जाएं तब करना चाहिए। दूसरा कीटनाशी है स्पिनोसाइड, स्पिनोसाइड दवा कीटनाशी जो है उसका 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही नीम आधारित दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित दवा में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमाजल इन कीटनाशियों का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्लूम मॉथ कीट के लिए प्रोफेनोफॉस जो कीटनाशी है उस दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। प्रोफेनोफॉस दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसे भी फूल 50% फूल आने के पहले 50% फूल आ जाए तो पहला छिड़काव एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां लग जाएं तब करना चाहिए। और पॉड फ्लाई का नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि पॉड फ्लाई का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है पॉड बग कीट का प्रबंधन के लिए चूंकि यह चूसक दवा है इसलिए इस कीट का नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। नीम आधारित दवाओं में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमाजल अचूक या नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर नीम का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद फिर इसका इसी कीटनाशी का यानी इमिडाक्लोप्रिड से छिड़काव करना चाहिए। जो मैंने बताया काला भरिंग एपियन, इसके नियंत्रण के लिए भी इंडोक्साकार्ब 14.5 SC दवा का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का भी प्रकोप जिन एरिया में इनका प्रकोप होता है तो इसके लिए बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर और इसमें 15 ml पानी मिलाकर तब बीज को उपचारित कर लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
9: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कीट के प्रकार को जाना, अपने साथ ही ये भी जाना कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी बात था प्रबंधन इनका, तो ये भी आपने जाना कि हम कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थी स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी मैम और ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि अगर आपके अरहर के फसलों में कीट लग चुके हैं या कुछ ऐसे आपको पहचान दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द उसका प्रबंधन करें ताकि आप अपने फसलों को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें करूंगी मैं और लेकर आऊंगी एक और भी अलग विषय को। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: पिता कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है. लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है. इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है. दोस्तों आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा. मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार.
0: मैम जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है. लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में. ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये.
0: तो मैम ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
1: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है. जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से. ठीक है, उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा. तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता. उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है. तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है.
0: मैम जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं. साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
1: हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का. जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है. तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तीला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीज़न की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको अपने पौधों पे नजर आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
0: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैम अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तीला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तीला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है, जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जा करके देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तीले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तीला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर ले करके आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तीले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय

0: महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है, तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है
1: जी। मैम तिल दो तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
0: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही हैं किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया, तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी, फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे, और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है, काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था, इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था, मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा,
1: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
0: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है
1: जी। मैम तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
0: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण

0: को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधु मित्ता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: धन्यवाद उमा।
7: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
9: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं, बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
7: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
9: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1,00,000 रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5,00,000 का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसके जिसे हम जान सकते हैं, इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त मिलती है। और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2,00,000 की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं उस वहां पे जा करके या फिर खुद ही इंटरनेट पर इसे इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है वह है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
7: जी,
9: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है, जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। और फिर इसमें 5,00,000 रुपए का अनुदान और 5,00,000 का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50-80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना, फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है, जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आएं, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
7: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और अंत में आप महिला किसान, खास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगी?
9: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है, उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सकें।
7: जी मैम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं, और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी
7: मैम
9: कि कृषि सखी, सरकार द्वारा एक पहल चल रही है कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र, जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं, वहाँ जा कर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जा कर के, या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पर जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
7: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
10: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: लेडीज फर्स्ट।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है, तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है, और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है, हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारे परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
7: लेडीज फर्स्ट।
9: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
10: खुद भी बचे देश भी बचाए।
11: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
12: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
13: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल, चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। एचपीवी टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 2 दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दे और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाए। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराए और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता,
इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्व उत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है।

नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे। फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
8: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें। और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।

0: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में बताएं।
0: मक्के में बहुत ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
1: मैग्नीशियम
0: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
1: जी।
0: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है, और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
1: जी।
0: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है, और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पैटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह के बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं, और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
0: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पर भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन

0: ये बहुत ही फायदे, अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्नफ्लैक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्नफ्लैक्स होते हैं, ये जो होते हैं, इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्नफ्लैक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है। वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, जा रहे हैं, और वो और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाज़ार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई, उसको मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं, और ये समय जो है चार घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान, उसको सुखा लेंगे। जब ताप उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मीन्स उसमें जो नमी है 16 से 24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16 से 24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लैक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है, और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लैक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लैक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16 से 20% के लगभग में रखना होता है, और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं जिससे कि हम लोग वो मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है, उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है, और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है, और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप
1: डिफरेंट
0: डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को रिड्यू कम कर लेते हैं, देन आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं, और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
8: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन हरिया।

0: खुशी से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
1: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्य की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है?
1: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत, मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया है, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार होगा। 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
0: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
1: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2 से 3 बार जुताई करके पटा लगा कर खेत तैयार कर लिया। उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज़्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा। जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
0: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
1: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चीना की बात कर रहे हैं, तो चीना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये तमिलनाडु की, हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं, इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7 जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7, इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम में, खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है, हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को, जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं

0: इनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्य की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडी मिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडी मिथिलीन का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडी मिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडी मिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडी मिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो उस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडी मिथिलीन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडी मिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडी मिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,4-D नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D हम लेकर के, जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,4-D जो 58% इसी का आता है, उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें, और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता है। बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2 भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए 1 बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद, और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से

0: खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा,
1: दिया
0: जी
1: जा रहा है जी,
0: जी जी
1: तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सकें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी

ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्री छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्री छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है पर उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत

0: कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है, और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
0: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
1: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
0: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
1: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
0: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
1: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
1: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
0: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 2 दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और ख़ुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: 90.8 FM बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत, इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म हैं, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म हैं।
10: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
11: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
10: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
11: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं।